मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 37 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर एक्टों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे।

0: दोनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं समूह स्वर में मातृवंदना से। रजकण जिसके बहाल पर सजा हर वीर चित्कारा था, तरेरी जिसने भौवे अपनी हर उसी उठीन आंखों को ललकारा था, मर मिटने पर कभी ना मन घबराया था, जिस पर वारा तन मन धन सारा भारत देश वो प्यारा था।

समहो स्वर में देशगान के बाद अब सुनिए हरि ओम शरण और नंदिनी शरण के स्वर में ये आरती।

कार्यक्रम के अंत में प्रस्तुत है अनूप जलोटा के स्वर में भजन, तुम धैर्य मन का विश्वास बनना, तुम जीवन मधुर एहसास बनना, ओ कान्हा ओ मरना मन ही मन मेरे, मेरे कण कण में रमना, कतरा कतरा डूबो तुम में और उबर जाऊं तुम में।

0: कृष्णमयी इस भक्ति पद के साथ आज की वंदना संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: अपने समीपवर्ती अन्य व्यक्तियों की तुलना में अपने आप को असाधारण, विशिष्ट और उच्च स्तर का मान लेने की मान्यता बना लेने से अहंकार की उत्पत्ति होती है। बलिष्ठता, सुंदरता, संपन्नता, पद, अधिकार, ज्ञान, कला कौशल आदि संपदाओं और विशेषताओं पर इतराने वाले व्यक्ति अहंकारी कहे जाते हैं। जीवन में अहंकार का संचार होते ही व्यक्ति की क्रियाएं एवं चेष्टाएं बदल जाती है। वह नशाग्रस्त व्यक्ति के समान असंतुलित व्यवहार एवं अव्यवस्थित कार्य करने लगता है। युद्ध, कलह, राग द्वेष और अशांति यहीं से जन्म लेते हैं। अहंकारी व्यक्ति सदैव बड़ा बनने की साध संजोए रहता है। अहंकार बढ़ जाने पर व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है और जड़ मूल से नष्ट कर देता है। अहंकार ग्रस्त व्यक्ति प्रशंसा प्रिय हो जाता है। वह हमेशा चाटुकारों और मिथ्यावादियों से घिरा रहता है। थोड़ी सी प्रशंसा कर देने पर झुक जाता है और उसी पर विश्वास करने लगता है। अहंकार अनेक दुर्गुणों का जनक है। यह व्यक्ति को क्रूरता, शोषण, अनाचार की ओर प्रेरित करता है। व्यक्ति का विकास रुक जाता है। प्रगति की सभी संभावनाएं धूमिल पड़ जाती है। यह मनुष्य के वांछित लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बड़ा बाधक है। अपने जीवन में उन्नति, समृद्धि और सफलता की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति यह अनुभव

0: करता है कि उपलब्धियों के कारण वह दूसरों से बड़ा हो गया है, उसकी तुलना में सभी तुच्छ हैं। संपदा के आधार पर अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करने हेतु अपने वैभव, पराक्रम और बुद्धिमत्ता की चर्चा बात बात में करता है। अपना तनिक सा अपमान हो जाने पर चोट खाए सर्प की तरह दूसरों पर टूट पड़ता है। वैभव का अहंकार प्रदर्शन में ईर्ष्या, द्वेष, विरोध, विद्रोह और ठगे जाने का खतरा अधिक रहता है। अहंकारी व्यक्ति के प्रति सर्वसाधारण सहयोग करना तो दूर, उनसे संपर्क करने वाले भी यह चाहते हैं कि इस बला से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है। अहंकारी व्यक्ति का न कोई हितैषी रहता है और न ही घनिष्ठ, केवल चापलूस ही उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसे उल्लू बनाते हैं तथा अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। संसार के प्रत्येक वस्तु एवं संपत्ति अस्थिर है, उनका आना जाना पानी की लहरों की तरह बना रहता है। आयु बढ़ जाने के साथ साथ यौवन ही नहीं, विद्या बुद्धि भी घटने लगती है। धन तब तक अपना है जब तक उस पर अपना नियंत्रण है। बेटे पोतों के हाथ में सत्ता चले जाने पर धनी समझे जाने वाला वृद्ध पुरुष को भी अनाथ और निर्धन जैसा दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। विद्या का अभिमानी विद्यार्थी का अध्ययन क्रमशः कम हो जाता है और वह अन्य छात्रों से पिछड़ जाता है। घर में पुत्र व्यसनी, आलसी और कुमार्गामी निकल जाए तो संपत्ति देर तक ठहरती नहीं, भले ही वह कितनी ही अधिक क्यों न हो। गुणों का सम्मान हो, गुणवान को दूसरे लोग सम्मान दें, प्रशंसा करें, यह उचित ही नहीं आवश्यक भी है। लेकिन व्यक्ति को जब कर्तापन का अहंकार हो जाए तब वह अपने सहयोगियों की भी उपेक्षा करता है और भविष्य की सतर्कता को त्याग देने पर उसका पतन होने लगता है। बड़ा ही बनाना है तो सत्कार्यों में, पुण्य प्रवृत्तियों में शक्ति और सामर्थ्य का व्यय करना चाहिए। भले बुरे सभी तरीके अपनाकर धनवान बनने की अपेक्षा परोपकारी सेवाभावी बनना अधिक सहज और लाभदायक है। गीतांजलि काव्य की रचना कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रशंसा, प्रसिद्धि और अहंकार के लिए नहीं की थी। गौतम बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमण, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने प्रशंसा और प्रसिद्धि की हमेशा उपेक्षा की एवं अहंकार के जहर से अपने आप को मुक्त रखा, तभी वे जनता जनार्दन को सही मार्गदर्शन दिखाने में समर्थ हो सके। दर्पण को देखकर अपने चेहरे की गंदगी साफ कर ली जाती है, उसी प्रकार आत्मनिरीक्षण करके हमें अपने चिंतन और व्यवहार का निरीक्षण परीक्षण कर यह देखना चाहिए कि हमारे स्वभाव में अहंकार के दुर्गुण का समावेश तो नहीं होने लगा है। नम्रता, शिष्टता और सज्जनता का स्तर घट जाने पर प्रदर्शन करने की ललक शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति आने के पूर्व ही समय रहते इसे सुधार कर लेना उचित है। रावण, हिरण्यकश्यप से लेकर नेपोलियन, मुसोलिनी, सिकंदर आदि ने अहंकार के कारण ही संसार को तबाह करने का प्रयास किया, किंतु अपनी मूर्खता के कारण दुखद परिस्थिति के भागी बने। हम इस दुरावस्था से बचना चाहते हैं तो अहंकार से दूर रहने का अभ्यास करें।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख और स्वर था लेखराम साहू का। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन पाठ।

0: अभ्यास करें।
1: ये था आज का चिंतन। आलेख और स्वर था लेखराम साहू का। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:25 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का गायन पाठ।
2: पार्वती से विवाह करने की भगवान शिव की सहमति पाकर देवगण पर्वतराज हिमाचल के पास पहुंचे। महादेव के प्रताप का प्रभाव विचार कर अति प्रफुल्लित मन से उन्होंने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला भेजा और शुभ दिन, नक्षत्र तथा शुभ घड़ी आदि विचार कर विवाह लग्न निश्चित करने की विनती की। लग्न पत्रिका तैयार हुई तो उसे सप्त ऋषियों के हाथ ब्रह्मा को भिजवाई, जिसे पढ़कर ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर शिव की बारात में जाने के लिए देवतागण अपने भांति भांति के विमान सजाने लगे।

सर्पों का यज्ञोपवीत, गले में विष तथा छाती पर नरमुंडों की माला, ऐसा भयावह और अशुभ दिखने वाला वेश था मंगलकारी महादेव का।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन पाठ। स्वर था मिताली सिंह का। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामयिकी बीड़ा खड़ा चुकोट।
1: गांवकारी खेतियार भाई बहन मन अपन मन तो जानसा ची की आम चो माई मूर कमानी बोलो ने खेती बाड़ी हो से। खेती कमानी करते का जे बोले कई प्रकार चो फसल मन हो से, जे चो कमानी करून फसल आम उपजन धरू से। फसल मांदाने गोटक फसल हो से सेमी। सेमी चो फसल कमानी आम चो भारत देश संगे संगे बस्तर ने बोले सपाय बाटे हो से। सेमी के दाल बनाउन खाद लेने आम चो बल बपू जीनस जे की आम प्रोटीन बोलू से उन आगर ले आगर एताल मीरे से। और ए चो संगे संगे सेमी चो साग खाद लेने हमके जितलो बले आम चो दे पाँचो रोग राई होए से उन बले नी होए। खेतियार भाई बहन मन सेमी चो कई किसम मन होए से, हाले एक किसम मन के जानू। सेमी चो किसम मन चो नाम में सांगे से पूसा अर्ली, प्रोपेलिक, HDI, HD26, रजनी, HA3, DBI, DB18, JDL53, JDL85, पूसा सेम 3, पूसा सेम 2, कल्याणपुर टाइप 1, कल्याणपुर टाइप 2 असन किसम मन चो कमानी कर लो ने फसल उपजन आगर होक लाए सके दे। सेमी के शीतकार समय ने लगा लो ने नंगत होक लाए सके। ये चो काजे 15-22 डिग्री तापमान नंगत रुवाए। सेमी चो कमानी 2 मटिया भूई ने नंगत रुवाए। 2 मटिया भूई ने पानी सोख तो क्षमता आगर रुवाए। बीचा लगा पहल माटी के 2-3 आर नांगर ले अच्छा जोतून बातिन पाटा लगड़ा चढ़ाउन जितरो बोले ढेला हो सबके फुटाउन फिर लाटा बूटा

0: सकलून असन करून बाती माटी के तैयार करत राय। एदा जानू बीचा लगातो समया बुई निमलो पाचे सेमी चो अंगेती फसल के फरवरी नाल मार्च ने जून और जुलाई ने चमास भेरा चो फसल के लगात राय। और अगस्त महीना ने आम के रजनी नाम चो जून किसम चो फसल हो से सेमी चो फसल हुनके आम के उपजन धरुकलाई सकू। सेमी फसल का जे अड़ी एकड़ चो हिसाब ने 6 किलो बीजा लगालो ने नगत हो सके। और सेमी बीजा के लगा तो जुन दूरिया हो से लापी हो से 3 सेंटीमीटर खोदरा कोरून बाती लगात रहा। अड़ी एकड़ चो हिसाब ने 45 से 50 किलोग्राम गोबर चो खत 20 किलोग्राम नीम चो पाना और 50 किलोग्राम अरंडी बोलो ने जाड़ा चो जोन पेंडा हो से उनके मिलन बेड़ा ने देतो रहा। उनचो लकाय नागर जोपतो रहा तेबे का जिन ये होकत मन में जोन के नाम सांग ले उन मन अच्छा ले मिले दे। बीचा के मंडालो एक महीना पाचे गौमूत्र और नीम चो पाना के मिलन फसल ने देतो रहा। असन कर लो ने फसल ने जितरो बल कीड़ी और रोग राई मन हो सोत हुन कंडी कम होक लाई सके। किसान भाई बहन मन हेदा जानू की रासायनिक खत के कसन देतो राय। बूटा मंडालोर एक महीना पहल भूई ने अड़ी एकड़ चो हिसाब ने 45 से 50 किलोग्राम डीएपी 50 किलोग्राम क्यूरेट ऑफ पोटास के मिलात राय। बूटा मंडालो 25 दिन पाचे नत्रजन 30 किलो और यूरिया के 30 किलो के उपज देते राय। फिर फूल एतो बेरा यही जोन खत हो से जो जो मैं नाम पहल सांगले जैसन की नत्रजन 30 किलो और यूरिया 30 किलो के फिर फूले तो बराबर एक हार फेर ले देते रहे। सेमी फसल कर तो काजे वर्षा समय ने तो सिंचाई करूक लाई नहीं पड़े मानतर जोन फसल के हमी फरवरी और मार्च ने करूँ से तो हुन फसल काजे हम के का 30 दिन से भीतर ने 2 से 3 हार सिंचाई करूक लाई पड़े दे और आम के लाटा बूटा के तो दकुन बाती सकूक लाई पड़े दे छे। एदा जानू रोग राई सबले पहले जानू चेपा। चेपा ना चो कीड़ा सेमी चो पाना के नाल फूल के चूरुआत और फर के बले नुकसान करुआत। एचोले बचा तो काजे नीम चो पाना और गौमूत्र ने माइक्रोजाइम मिलान भाती उनके 250 ग्राम चो मात्रा ने पानी ने घोरून भाती फसल ने देता रहे। दूसरा है बीन बीटल। ये कीड़ा बले सेमी चो पाना और फर के नुकसान करुआत और बूटा के मोरुआत। तो एचो बचात काज बले नीम चो पाना गौमूत्र ने माइक्रोजाइम मिलान भाती उनके 250 ग्राम जो मात्रा ने पानी ने घोरून भाती फिर छींचते जाता रहे। तीसरा है चूर्णी फफूंदी। ये रोग होली जाले सेमी चो जो पाना है हरा रंग ले जोन हरदिया रंग हो जाए से और पाना मरून जाए से। ये चो बचत काजे हम के 15 लीटर गौमूत्र के तामा चो बर्तन ने 45 से 50 दिन तक का संगौन रहते रहे। उनचो पाचे गौमूत्र ने 5 किलो दतुरा चो पाना और दतुरा चो डांडी के मिलान फिर उनके उगड़ाते रहे और बाचलो बीती के नी सीतर करून बाती 2 से 3 लीटर के हमी फसल ने देव कलाई सकू। सेमी फसल ने फूल निकल लो 3 से 4 सप्ताह बल्लो ने 15 से 25 दिन भीतरे फर हो से। सेमी चोपर के टूटात का जाम के बेर निकर तराय कसन बल्लो ने सेमी चोपर झटके आम के जुड़ते जाए से। अड़ी एकड़ चो हिसाब ने 60 से 90 क्विंटल सेमी चो उपज आम के मिरुक लाए सके। किसान दादा दीदी मन असन उटले कमानी कर लेने आम के आगर ले आगर आमदनी मिरुक लाए सके।
1: बेड़ा खाड़ा चुगोट अभ्यास कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। हुलोली में लीजे सुनिए परदेसिन माता पाड़। वादन है भारत और साथियों का।

हुलहुली में अभी आप सुन रहे थे परदेसिन मातापाड़। कलाकार थे भारत और साथी। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे इनसे मिलिए। इसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर होगा कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसमें आज आप सुनेंगे आज के अतिथि। इसमें स्नेक रेस्क्यू विषय पर अनंत भोयर और उकेश्वर भारद्वाज से बातचीत करेंगे शशांक श्रीधर शंडे। साथी होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 9:00 लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी सुना जा सकेगा। संपादन होगा बलबीर सिंह कच्छ का। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रोजाना सुबह 9:30 पर। आज की फिल्म होगी कर्ज। गुलशन के अंतर्गत मेरी पसंद में आनंद लीजिएगा उद्घोषक की पसंद के गीतों का सुबह 10:00। सुबह 10:30 पर रुसरुसा में आप सुनेंगे लोक गाथा सुलोचना सोसी सेना का दूसरा भाग। गायिका होंगी बेलमती नाग और रेमी। दिन के 11:00 पेश करेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज इसमें सुनिएगा गीतकार असद भोपाली पर केंद्रित कार्यक्रम। गुड़दुम में सुनवाएंगे हल्बी गीत सुबह 11:30 पर। स्वर होगा बुद्री और साथियों का। दिन के 12:00 होगा कार्यक्रम कला और कलाकार। दोपहर 12:30 पर प्रस्तुत करेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। दिन के 1:05 पर हम करते हैं कृषि समय की बीड़ा खड़ा चगोट का पुनः प्रसारण। श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम श्रोता सुमन में सुनिएगा फिल्मी नगमे दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

अब लिए चलते हैं आपको सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों की जानकारी की ओर। आज शाम 5:05 पर आप सुनेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में युववाणी। ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे हल्बी बोली में शाम 5:10 पर। गोंडी लोकगीत सुनेगा शाम 6:35 पर। स्वर होगा गोविंद और साथियों का। शाम 7:00 प्रस्तुत करेंगे बस्तर के स्वर। आमचोगांव ग्रामीण भाइयों का ये कार्यक्रम होगा शाम 7:21 पर। रात 8:00 घलर में हल्बी गीत सुना जा सकेगा। कलाकार होंगे सोना दई और साथी। पीला मन काजे गोट ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रात 8:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले। प्रस्तुति होगी यशपाल सिंह ठाकुर की। रात 9:15 पर नंजर में सुनिएगा कामदेव बघेल से भरत कुमार गंगादित्य की भेंट वार्ता। खेल पत्रिका आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। और रात 10:00 आनंद लीजिएगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरस में। प्रस्तुति होगी जयराम कवासी की। संपादन होगा चंद्र ऋषि ठाकुर का।

0: पुनः आपको स्मरण करा दें, आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से में फिल्म कर्ज के गीत। दिन के 11 बजे सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित होगा गीतकार असद भोपाली पर। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले दिन भर के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत 12 वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् ऑस्ट्रेलिया भ्रमणं हैट्रिक इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत ऑस्ट्रेलिया संबद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीस अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर नेतृभ्यां मेलबर्न नगरे तृतीये भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमण्डलस्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिन्द प्रशांत क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
1: वार्ताहरान संबोधयन प्रधानमंत्री न्यगादीत यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जाग्रतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वाइब्रेंट विलेजेस इत्यस्य क्रांतिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमा प्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कुशल नेतृत्वे केन्द्र प्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिक रीत्या 400% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्च स्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआरटी केन्द्राणाम् अथ युग्मकोशानां नियन्त्रक तन्त्राणां प्रासंगिक विधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्त राज्य अमेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेनाद्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि

0: संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रूपये प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अच्छी बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें सुन रहे हैं FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

हैं चाय की चुस्कियाँ या निकल पड़े हैं सुबह की सैर में, हैं व्यस्त घर के कामों में या हो रही है काम पर जाने की तैयारी। इस पल आपसे बस इतनी दरख्वास्त, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम लेकर आ गए हैं नमस्कार जगदलपुर। आज के अतिथि और मधुरिमा से सजेगी आज की ये यात्रा। आप सभी को रूपाली सेठिया का नमस्कार।

श्रोताओं, कहते हैं किसी चीज का महत्व हमें तब समझ आता है जब वो हमारे पास ना हो। जरा सोचिए, अगर सुबह उठते ही बिजली चली जाए, मोबाइल की बैटरी खत्म मिले, रसोई में गैस ना हो, पानी की मोटर ना चले और सड़क पर एक भी वाहन ना दिखाई दे, सोचकर ही लगने लगा ना जैसे जीवन वहीं कहीं ठहर गया। हमने जितनी घटनाओं की बातें की वो जुड़ी हैं ऊर्जा से। ऊर्जा, ये शब्द हम रोज सुनते हैं। सरल भाषा में कहें तो किसी भी कार्य को करने की क्षमता ही ऊर्जा है। हमारे शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है, पौधों को सूर्य से, मशीनों को बिजली से और उद्योगों को ऊर्जा मिलती है ईंधन से या बिजली से। यानी प्रकृति से लेकर हमारे दैनिक जीवन तक हर गतिविधि ऊर्जा पर आधारित है। श्रोताओं, सदियों से हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन ये ऊर्जा स्रोत सीमित हैं। इन्हें बचाने में, इन्हें बनाने में लाखों वर्ष लगते हैं। इन्हें एक बार समाप्त हो जाने पर तुरंत वापस पाया नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। इसके विपरीत हर दिन सूरज उगता है, हवा लगातार बहती है, हमारे पास अविरल बहती नदियां हैं, जैविक अपशिष्ट है जो बायोगैस बनाने में मददगार है। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जो सहज उपलब्ध तो हैं ही, साथ ही पर्यावरण को अपेक्षाकृत कम नुकसान पहुंचाते हैं। आज पूरी दुनिया ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत भी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। घरों की छतों पर सोलर पैनल लगे मिलते हैं, खेतों में उपयोग किया जा रहा है सौर पंप, एलईडी बल्ब से जगमगाता है हमारा घर। ऊर्जा दक्ष उपकरण हो या इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ये केवल नई तकनीक नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। याद कीजिए श्रोताओं, खाड़ी देश में शुरू हुआ युद्ध किस तरह हमें प्रभावित कर रहा है। पेट्रोल पंप में लगी लंबी कतारें, रसोई गैस की किल्लत से बंद हुए छोटे होटलों ने चिंता की लकीर उकेर दी और हम सभी देश की सरकार की तरफ बड़ी उम्मीद से देखने लगे हैं। क्या ऊर्जा संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं, इसकी शुरुआत हमारे घर से होती है, हमसे होती है। जो साधन सीमित हैं उनका उपयोग हम देख समझ के करें। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दें तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां हमें दुआएं देंगी और वो सुरक्षित स्वच्छ वातावरण में जी सकेंगी। श्रोताओं, आज है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। आइए अपने छोटे छोटे प्रयासों से स्वदेश में उपलब्ध ऊर्जा विकल्पों को अपनाएं, ऊर्जा संरक्षण की आदत डालकर आयातित ईंधन पर कम निर्भर बने और इस जागरूकता दिवस को साकार करते हुए ये गुनगुनाएं।

0: जी श्रोताओं, क्यों ना करें हम इनसे प्यार। ये सौर ऊर्जा के जो भी साधन हैं उनको अपनाएंगे और देश की उन्नति में सहायक बनेंगे, यही उम्मीद आपसे और हमें खुद से भी। ये गीत था फिल्म जिंदगी मिलेगी ना दोबारा से, जावेद अख्तर का लिखा ये गीत था। धुन बनाई थी शंकर एहसान लॉय ने, आवाजें थी डोमिनिक सेरेजो और क्लिंटन सेरेजो की। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
4: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
5: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666।

0: फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: नमस्कार, जगदलपुर में अब आपको लिए चलते हैं आज के अतिथि की ओर। इसमें लेते हैं स्नेक रेस्क्यू विषय पर जानकारी अनंत भोयर और उकेश्वर भारद्वाज से। बातचीत कर रहे हैं शशांक श्रीधर शिंदे।
2: श्रोताओं नमस्कार, आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर के आया हूँ जो आप सबके रुचि का तो है ही, लेकिन पौराणिक जो हमारे संबंध हैं, जो वेदों में और पुराण में जो वर्णन है उसमें एक

0: से सामंजस्य कैसे बिठाएं तो सांपों का जीवन भी बचे, अपना भी जीवन बचे, साथ ही जो सांप हमारे लिए और भी क्या क्या कर सकते हैं, क्यों लाभदायक है सांप, इन सब विषयों की चर्चा हम आज करेंगे। तो स्टूडियो में हमारे साथ हैं आज अनंत भोयर जी और उकेश्वर भारद्वाज जी। तो इनसे हम जानना चाहेंगे आज बहुत सारी बातें। ये आपको हम बता दें कि ये हमारी एक रेस्क्यू टीम है जगदलपुर में, उसके ये प्रमुख मेंबर हैं। तो जहां भी ये जाते हैं सांपों को पकड़ते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। तो अनंत भोयर जी, मैं सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सांप पकड़ना, रेस्क्यू करते हैं आप घर घर जा करके या कहीं और भी मिलता है वहां जाते हैं, तो ये बहुत खतरनाक काम है, आम आदमी तो डर जाता है। आपने ये सांप पकड़ने की रुचि जो है ये कैसे पैदा हुई आपके अंदर?
1: जी धन्यवाद सर, सभी श्रोता साथियों को नमस्कार। हाँ, ये रुचि सर, चूँकि मैं 2011 में सांप पकड़ने का काम करता था, DRDO में एक वैकेंसी आई थी, उसमें अप्लाई किया था, तो वहाँ से मेरी रुचि बढ़ गई सांपों को देखते हुए ने। तो उसके बाद दरभा ब्लॉक के ढोडरेपार में मेरी जॉब लग गई, तो वहाँ एक गांव में सांप निकला हुआ था, तो सांप को देखने के लिए बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। वहाँ मैं भी गया, वहाँ फिर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी घर के अंदर जाने की थी, क्योंकि मैं इससे पहले भी सांप पकड़ने का काम करता था। तो मैंने वहाँ उस सांप को रेस्क्यू किया, इसके बाद सभी ने मेरी तारीफ की, वहाँ से फिर मेरा हौसला बढ़ गया, इसके बाद से मैंने सांपों को पकड़ने में रुचि दिखाई।
0: तो चलिए, आपका पहला अनुभव रहा, तो
1: जी
0: आपने सांप पकड़ने की रुचि उस समय से शुरू हुई, तो फिर आज तक वो जारी
1: कंटिन्यू
0: है।
1: जा रही
0: तो
1: है सर।
0: मैं यही प्रश्न दोहराता हूँ हमारे उकेश्वर जी से कि आपकी शुरुआत किस प्रकार से हुई सांपों को पकड़ने की?
2: जी धन्यवाद सर। नमस्कार श्रोता साथियों, मैं उकेश्वर भारद्वाज, जो कि वन्य जीव संरक्षण और विशेषकर सांपों के बचाव कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। मेरी प्रेरणा हुई है हमारे सीनियर मिस्टर अनंत भोयर को देखते हुए, उन्होंने सांपों के प्रति अपना बचाव स्टार्टिंग किया था हमारे ही गांव में ढोडरीपाल में। उनको देखते हुए मेरे दिल में जागरूकता हुई कि सांपों को बचाया जा सकता है और बचाना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी एक हिस्सा है।
0: अनंत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ही एक सांप हम देखे
1: जी
0: तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक घर में मान लो घुसा है सांप,
1: जी
0: तो आम आदमी तो डर जाता है,
1: जी सर
0: तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: जी सबसे पहले तो सर सांप को देखकर घबराना चाहिए नहीं चाहिए
0: घबराना
1: घबराना
0: नहीं
1: नहीं
0: चाहिए,
1: चाहिए
0: लेकिन
1: जी,
0: घबराहट सबसे पहले होती
1: सबसे
0: है।
1: पहले घबराहट ही होती है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। सांप धोखे से अपने घरों में घुस जाते हैं अपने शिकार की तलाश में, जैसे अभी बरसात का मौसम है तो गर्म जगह की तलाश में अपने घरों में इंटर कर जाते हैं। ऐसे में जितना संभव हो सके उन्हें जाने का रास्ता देना चाहिए, वो निकल जाएंगे, उनसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अगर सांप नहीं जा रहा है, कहीं छुपा हुआ है, तो वन विभाग को या स्नेक रेस्क्यू टीम को आप उनसे संपर्क करके उसे रेस्क्यू करवा सकते हैं।
0: हाँ, तो रेस्क्यू टीम में आप दोनों ही जाते हैं कि और भी कोई
1: नहीं,
0: टीम
1: पूरा
0: है?
1: टीम है सर, 10 से 15 लोगों का अपना टीम है।
0: दस पंद्रह लोगों की,
1: जी
0: जैसे 10 जगह सांप निकल गए तो अलग अलग जगह अपन लोग जा
1: जी
0: सकते
1: पूरे
0: हैं।
1: जिले भर में सातों ब्लॉक में
0: अच्छा,
1: उपस्थित
0: सातों
1: है
0: ब्लॉक में?
1: जी सर।
0: ये चलो, ये अच्छी बात है और लोग जागरूक भी होंगे। और आपका फोन नंबर भी हम अवश्य देंगे,
1: जी सर
0: आखिरी में भी देंगे, अभी बीच में भी हम अवश्य बताएंगे।
1: जी सर
0: तो आपका कोई अनुभव ऐसा बताइए कि आप सांप पकड़ने गए हैं और आप डर गए, आपके पास क्या उपकरण क्या रहते हैं सांप पकड़ने के?
2: जी हमारे पास तो पहले सेफ्टी किट रहते हैं,
0: उसमें क्या क्या रहता
2: हाँ
0: है?
2: रेस्क्यू से पहले हम लोग लेते हैं, एक पकड़ने का हुक है हमारे पास
0: हुक
2: कि
0: रहता है?
2: हाँ
0: जी
2: हाँ हुक के जरिए हम लोग सांप को रेस्क्यू से उसको हैंडल करते हैं। हाथ में पहले का हम लोग नहीं करते हैं, जैसे ही देखें पहले तो सांप को देख के हम लोग पहचानते हैं, घर जाते हैं उनके, जिस रेस्क्यू कॉल किया है हम लोग को, उनके यहाँ जाते हैं, सांप कैसे जगह में है ये पूछते हैं, फिर जाके हम लोग सांप को देख के पहचान करते हैं।
0: अच्छा,
2: पहचान करने के बाद हम लोग पहले अपना थैला रेडी करते हैं सर, हम लोग थैला में ही रेस्क्यू करते हैं, पैकिंग करते हैं, थैला रेडी करके जो
0: हाँ
2: भी सांप है उसको हम लोग वो हुक के जरिए हम लोग उसको रेस्क्यू करके सेफली हम लोग थैला में डालते हैं और पर्यावरण में उसको रिलीज कर देते हैं।
0: मतलब आप उस सांप को पकड़ के फिर जंगल में वापस
2: हाँ
0: छोड़ देते हैं।
2: हाँ
0: तो सांप अगर आप बचाते हैं, अगर अनंत भोयर जी,
1: जी सर
0: तो उसके क्या फायदे क्या है बचाने के? क्योंकि हम तो डर जाते हैं कि हमको काटेगा,
1: जी
0: जहर हमारे शरीर में फैल जाएगा और
1: जी
0: मरी जाएंगे, ऐसे ही लगता है एकदम से।
1: जी
0: तो
1: सर जी
0: तो क्या उपाय है, क्या क्या
1: जी
0: करना
1: उसके
0: चाहिए,
1: फायदे सर देखिए
0: फायदे क्या है हमारे?
1: जी
0: सांप मित्र क्यों बनाना चाहिए इसको?
1: जी सर

0: अपने पर्यावरण में हर जीव का उतना ही महत्व है जितना सांप का है, हर जीव का अपना एक महत्व है, वैसे ही सांप का इकोसिस्टम में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। सांप जो है अपने घरों में जो चूहे होते हैं उनको उनका शिकार करते हैं और पारिस्थितिक जो तंत्र है उसको बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। चूहे अपने घरों में इतने सारे अन्न खा जाते हैं, उनसे कई सारी बीमारियाँ फैलती है। चूहे साल भर में 2 बार प्रजनन करते हैं सर, जब ये जिससे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। उन्हें कंट्रोल करने के लिए सांप हमारे मित्र हैं, बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं
1: हाँ
0: इकोसिस्टम
1: सही
0: को
1: है,
0: बैलेंस बनाने
1: क्योंकि
0: में।
1: सांप चूहे खाते हैं
0: जी सर,
1: और जहाँ चूहे रहते हैं तो वहाँ सांप आते हैं उनको
0: जी
1: खाने के लिए,
0: जी
1: तो
0: सर,
1: इसीलिए खेतों में बहुत सांप पाए जाते हैं। तो कई बार ऐसे भी देखने में आता है कि खेत में रोपाई करते हुए या किसान को सांप वाप काट देता है, तो इस परिस्थिति में तुरंत उपाय क्या करना चाहिए?
2: जी ठीक। सबसे पहले तो पेशेंट को उसको शांति बनाए रखने के लिए उसको करना, जिसको सांप ने बाइट किया है, ठीक है, पहले तो पहचान होना चाहिए सर कि सांप कौन सा सांप ने बाइट किया है।
1: तो सांप
2: हाँ
1: पहचाने कैसे अपन कि ये
2: जी
1: कौन सा सांप है, क्योंकि
2: जी
1: आम आदमी को तो पता नहीं कि कौन सा सांप रहता
2: जी
1: है।
2: जी हमारे जो भारत और छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे सांप हैं जो कि बिना जहरीला सांप हैं, ठीक है। हमारे भारत में और छत्तीसगढ़ के अंदर में सबसे जो जहरीला सांप होते हैं वो है, एक तो है नाग जिसको कोबरा नाम से जानते हैं, एक
1: कोबरा
2: हाँ
1: जी,
2: एक है करेत
1: करेत,
2: और एक है सौ स्केल्ड वाइपर।
1: हाँ
2: हाँ
1: रसेल वाइपर
2: हाँ
1: क्या,
2: हाँ हाँ
1: हाँ
2: रसेल वाइपर है और एक सौ स्केल्ड वाइपर है, ठीक
1: सौ
2: है।
1: स्केल
2: ये
1: वाइपर,
2: चारों बहुत जहरीले सांप हैं सर,
1: अच्छा,
2: ठीक। और बाकी जो रहते हैं वो नॉन वेनम रहते हैं,
1: हाँ।
2: ठीक है। सबसे पहले जो जो भी सांप बाइट किया है उसको पहचानना सबसे जरूरी है सर।
1: अच्छा,
2: हाँ
1: नहीं मान लो
2: तो
1: नहीं पहचान पाए तो हम कैसे करेंगे भाई, हमको तो पहचान नहीं है, हम तो नहीं जानते कि कैसा है। तो
0: जी
1: अनंत जी आप बताइए कि पहचान कैसे करेंगे, नाग है कि वाइपर है, आम आदमी कैसे पहचाने इसको?
0: जी आम आदमी के लिए सर इसके पहचान करने के लिए कोई ऐसा कोई मापदंड नहीं है,
1: हाँ
0: इसके लिए आपको इसमें अध्ययन ही करना पड़ेगा, इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर अनजाने में किसी को सर्पदंश हो जाता है तो
1: जी
0: ऐसी स्थिति में वह चाहे नॉन वेनमस रहे चाहे वेनमस रहे, हमको तत्काल हॉस्पिटल की ओर ही जाना चाहिए। वहाँ जाने पर लक्षणों के आधार पर ही डॉक्टर बता पाएंगे कि यह जहरीला सांप ने काटा या बिना
1: सामान्य
0: जहरीले।
1: सा बिना जहरीला
0: जी
1: वाला, बिना जहर वाला भी होता है जो।
0: जी जी जी जी सर
1: हाँ नहीं ये सही है आपने बताया।
0: जी
1: तो सांपों की जो प्रजाति

0: जिनसे सर्पदंश काटे जाने के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। इन्हीं चारों सांपों को ये जहरीले होते हैं, बाकी सभी नॉन वेनमस हैं।
1: और हमारे यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सांप जैसे काटा,
0: जी सर,
1: तो हम गांव के लोग रहते हैं, कई लोग थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो सीधा दौड़ के गांव में सबसे सरल उपाय होता है कि झाड़ फूक वाले के यहाँ चले जाते हैं।
0: जी सर,
1: तो क्या वो जाना सही होता है? क्या उनके पास कुछ ऐसा मंत्र तंत्र होता है कि वो सांप का जहर उतार के बचा लें प्राणी को अपने?
0: जी सर, ये सर पहले क्या चिकित्सा विभाग में इसका एंटीवेनम नहीं मौजूद था, तो पहले के लोग झाड़ फूक ओझागुनी तंत्र मन से सर्पदंश का इलाज करते थे, लेकिन आज के दौर में एंटीवेनम जिसे ESV कहा जाता है एकमात्र दवाई है जिससे सर्पदंश में इलाज किया जा सकता है। और अगर किसी को सर्पदंश हो जाए तो अस्पताल की ओर रुख करना चाहिए और ESV लगाना चाहिए,
1: तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं त्वरित उपाय के लिए जानना चाहता हूँ, जैसे सांप काट दिया तो सांप काटते साथ मरीज के साथ क्या करना चाहिए, जो उनके परिवार वालों को, जैसे काट दिया मान लो पैर में, हाथ में, कहीं भी काट दिया
2: जी जी,
1: तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्योंकि मान लो अस्पताल तो ले जाने में टाइम है, अभी दूर है थोड़ा सा, तो उसके पहले घर में क्या कर लेना चाहिए उपचार थोड़ा सा?
2: जी, सबसे पहले तो जो पीड़ित है उसको शांत रखना चाहिए, उसको डराना नहीं चाहिए, चुपचाप एक जगह पे लेटाना चाहिए जब तक गाड़ी नहीं आती है, ठीक है?
1: अच्छा, नहीं, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे सांप काटा तो मरीज के ऊपर उसका असर क्या होता है, तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं होने के बाद, काटने के बाद, सांप के काटने के बाद?
0: तो सांप के काटने के बाद सर अलग अलग सांपों के अलग अलग लक्षण दिखाई देंगे।
1: हाँ, जैसे
0: शुरुआत करते हैं नाक से, अगर नाक बाइट हुआ तो जिस जगह पर काटा है उसी जगह पर आपको दो फैंग्स यानी दो दांत के निशान दिखाई देंगे।
1: अच्छा,
0: उस जगह पर स्वेलिंग

0: चक्कर आएगा, मतली छाएगी, उल्टी होने लगेगी, ये
1: हाँ।
0: सारे लक्षण हैं। जैसे ये तो नाक के हो गए, जैसे करेत में सर एक लक्षण है, करेत का जो लक्षण है बहुत धीरे इसका काम करता है, हालांकि
1: अच्छा,
0: यह बहुत जहरीला सांप है, अगर यह
1: मतलब
0: काट ले।
1: करेत का जहर थोड़ा धीरे धीरे चढ़ता है बोल
0: हाँ
1: रहे हैं आप, नाक का जहर तुरंत चढ़ता है।
0: जी
1: ओ
0: जी सर,
1: जी
0: तो करेत के जो लक्षण है उसका जो लक्षण है, पहला सिम्टम्स वो पेट दर्द हो, पेट में ऐंठन होगी,
1: अच्छा
0: क्योंकि करेत का जो विष दंत होते हैं बहुत महीन बहुत बारीक होते हैं, तो उसमें निशान, उसके जो दांत के निशान है स्किन में नहीं दिखेंगे,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: उसका
1: अच्छा
0: लक्षण बहुत देर से आते, आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद पेट में ऐंठन होगी, फिर वही जो न्यूरोटॉक्सिक जो नाग में होता है सेम इसके भी लक्षण दिखाई देते हैं।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई। मैं श्रोताओं को इस बीच में नंबर बता देता रेस्क्यू टीम का, हालांकि बाद में अपन और एक बार बताएंगे, लेकिन मैं आपको हेल्पलाइन नंबर जो है सांप रेस्क्यू के लिए आपको बता देता हूँ। आप लोग जो हमारे श्रोता हैं, प्रिय श्रोता आकाशवाणी जगदलपुर के, कृपया नोट कर लें इस नंबर को, 7987083917। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 7987083917। दूसरा और एक नंबर नोट कर लीजिए, 9178874006। रिपीट कर रहा हूँ मैं, 9178874006। तो ये नंबर है, और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि जो जगदलपुर में हमारी रेस्क्यू टीम है बहुत ही अच्छे काम कर रही है, तो हालांकि हम लोग सभी जो है इनको धन्यवाद देते हैं इस प्रकार से कि सभी की ये जान भी बचा रहे हैं, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रख भी रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सांप को बचाना क्यों चाहिए, कितने फायदेमंद, और इसका जहर जो है और किन कामों में आता है?
2: जी,
1: सांप का जहर भी शायद दवाइयों के काम आता है, तो क्या क्या काम में आता है वो?
2: जी, सांप का जो जहर है खतरनाक है ना,
1: हाँ
2: उतना ही जरूरी लोगों के लिए, हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि इसके जहर से कई सारे, जैसे एंटीवेनम बन रहा है स्नेक बाइट से, सांपों को जब स्नेक बाइट होता है, जहरीले सांप काटते हैं तो एंटीवेनम से ही उनकी जान बचाई जा रही है। ठीक है, ये तो हमारा एक ये हो गया कि उनकी जान बचाई जा रही है,
1: सही
2: और
1: है।
2: दूसरा
1: हाँ
2: हो गया कि इससे, इसके जहर से कई सारे दवाइयों में यूज हो रही है,
1: हाँ
2: जैसे कि मेजर हो गए हमारे हार्ट अटैक, ठीक है,
1: हाँ हाँ
2: जो हार्ट अटैक में हो गया, ब्लड प्रेशर में हो गया, और अभी चल रहा है उसका रिसर्च चल रहा है सर, कैंसर की कोशिकाएं बढ़ रही है ना, जो उसको भी रोकने के लिए
1: सांप
2: सांपों
1: का
2: का जहर
1: जहर,
2: का यूज हो रहा है,
1: अच्छा
2: और तो और इसके साथ दर्द निवारक के लिए भी यूज होता है हमारा जहर,
1: अच्छा
2: हाँ
1: अच्छा
2: उसके लिए भी दवाइयों में यूज किया जा रहा है, जैसे कि मार्फिन जैसे दवाई हैं जो दर्द निवारक के लिए यूज होते हैं, वैसे
1: हाँ
2: उसमें भी यूज हो रहा है।
1: चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक और हमारे समाज में ये बात फैली हुई है कि जैसे अब सावन का महीना है, नाग पंचमी आएगी उसके बाद, तो हम सब घर वाले धार्मिक तो रहते ही हैं,
0: जी
1: जानते
0: सर,
1: हैं, तो
0: जी
1: सांप को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं,
0: जी
1: तो क्या सांप सही में दूध पीता है क्या?
0: नहीं सर, ये पूरी तरह से गलत बात है, और यह अंधविश्वास पूरी तरह से फैल चुका है। सांप एक रेप्टाइल है, सरीसृप जीव है, और पूरी तरह से वह मांसाहारी होता है, तो सांप किसी भी प्रकार से सांप किसी भी प्रकार से सांप के लिए दूध वह हानिकारक होता है, सांप को कभी न पिला दूध पिलाएं, अगर वह दूध पी भी लेता है तो सांप के जो एंजाइम्स है उसे पचा नहीं सकते,
1: मतलब
0: वह
1: सांप नहीं पीता है,
0: नहीं
1: सीधी
0: पीता
1: सी बात,
0: है।
1: तो कीड़े मकोड़े वगैरह खाता है,
0: जी पूरी तरह
1: चूहे तो खाता
0: मांसाहारी
1: ही है ना।
0: जी, चूंकि ये नागपंचमी जो आने वाला आगामी त्यौहार है, नागपंचमी आस्था का त्यौहार है,
1: जी
0: तो इसमें जो श्रोतागण से उनसे निवेदन है कि आप सांप को दूध ना पिलाएं, और अगर आप आस्था है तो आप प्रतीकात्मक रूप से दूध चढ़ा सकते हैं।
1: चलो, ये अच्छी बात बताई आपने, एक हमारा प्रश्न था वो दूर भी हो गया
0: जी
1: कि भाई सांप जो है दूध नहीं पीता है।
0: जी सर,
1: आप हम देखते हैं कि जैसे सांप काट दिया तो हम लोग क्या करते हैं कि पट्टी बांध देते हैं कस के कि जहर ऊपर मत चढ़े, या उसको काट के उसका जगह से हम खून चूसने लगते हैं, ऐसी कुछ बातें करते हैं जो आम बात है सुनने में आता अक्सर, तो क्या ये करना जरूरी है, क्या ये सही है?
2: नहीं सर, जब सांप बाइट करता है ना,

0: तो उस जगह को वहाँ पे कुछ भी ब्लेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाना है, जैसे चूसने का काम करते हैं, ये
1: हाँ
0: सब मिथ्या
1: ये
0: है।
1: सब हम
0: हाँ
1: अक्सर वो
0: हाँ
1: पिक्चरों में देखते
0: हाँ
1: हैं
0: ये सब
1: हिंदी
0: मिथ्या है
1: सिनेमा
0: वो
1: में, और
0: पहले
1: वो
0: तो।
1: जो तो वो सही नहीं है मतलब।
0: हाँ सही
1: अच्छा
0: नहीं है,
1: अच्छा
0: चूसना नहीं है। और जो
1: हाँ
0: टाइट बांधते हैं ना वो
1: हाँ
0: टाइट नहीं बांधना चाहिए,
1: अच्छा
0: जिस जगह पे बाइट किया है उसको ना दिल के नीचे, मतलब बॉडी के नीचे जो हार्ट है हमारा, दिल के नीचे रखना चाहिए। जैसे
1: हाँ
0: हाथ
1: हाँ
0: हो गया
1: हाँ
0: सब,
1: हाँ
0: उसको शांत बना के रखना चाहिए, उसको मूवमेंट नहीं करना चाहिए, हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। जो
1: अच्छा
0: पीड़ित है उसको चुपचाप लेटना चाहिए,
1: हाँ
0: उसको डर से दूर करना है, शांत
1: अच्छा
0: रखना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उनको हॉस्पिटल, नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचना है जहाँ पे एंटीवेनम प्रेजेंट हो।
1: अच्छा कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे सांप काटे तो ये तो सब लक्षण हो गए, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं क्या जिसको खिलाने से सांप का जहर जो है ऊपर नहीं चढ़ता या चढ़ता नहीं है? ऐसा
0: नहीं
1: कोई
0: सर,
1: पदार्थ है क्या खिलाने लायक
0: नहीं सर,
1: कि
0: नहीं,
1: ऐसा
0: एकमात्र
1: कुछ
0: इलाज
1: नहीं?
0: एएसबी है सर, उसके अलावा कोई
1: सीधा हॉस्पिटल ले जाना है
0: जी
1: आपको?
0: हॉस्पिटल ही है सर।
1: तो चलो, मतलब आप ये श्रोता ध्यान दें कि काटना भी नहीं है कहीं, उसको बांधना भी नहीं है, मुंह से खून चूसना भी नहीं है। और अगर मुंह से खून चूसा तो ये हो सकता है ना कि उसका जहर जो है जो
0: और
1: चूस रहा
0: तेजी
1: है
0: से
1: उसके
0: करें
1: ऊपर भी तो
0: जी,
1: जहर चढ़
0: बिल्कुल सर,
1: सकता
0: और
1: है,
0: तेजी से काम करेगा
1: तो
0: वो
1: उसके लिए भी खतरा हो जाएगा।
0: जी सर
1: तो एक की जगह दो दो जान को खतरा हो जाएगा वो, है ना? तो
0: जी
1: ये भी एक नुकसान हो सकता है ना?
0: जी सर।
1: तो चलिए, तो बहुत अच्छी बात ही बताएं। मैं चाहता हूँ कि हमारे कार्यक्रम, अच्छा एक और प्रश्न है कि अजगर सांप भी होता है एक,
0: यस
1: जो
0: सर
1: हम अक्सर देखते हैं कि निगलने का काम करता है, सीधा बड़े बड़े जानवरों को भी निगल जाता है,
0: जी
1: खरगोश बिल्ली हिरण सारी चीजों को निगलता है।
0: जी
1: और अगर अजगर अगर घर में घुसता है तो क्या अजगर काटता भी है क्या कि
0: नहीं
1: सिर्फ
0: सर,
1: निगलता है वो?
0: निगलता है सर
1: तो वो काटता नहीं है?
0: वो, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब जकड़ कर मारने वाला एक शिकारी है। किसी
1: अच्छा
0: भी जानवर को, अपने शिकार को पहले जकड़ता है, उसका दम घोट कर ही
1: हाँ
0: उसकी जान ले लेता है, उसके बाद निगलना शुरू करता है, वो काटता नहीं है सर।
1: अच्छा, अजगर काटता
0: नहीं है
1: नहीं है ये
0: जी,
1: तो पक्का हो गया, लेकिन वो निगलने की कोशिश करता है,
0: करता है जी
1: निगलता है।
0: जी सबसे पहले अपने शिकार को जकड़ कर दम घोट देता है।
1: हाँ,
0: ये
1: तो
0: भी
1: मैं एक जानकारी और आपसे पूछना चाहता हूँ, चूंकि अपन बस्तर वासी हैं और बस्तर में बहुत सारे सांप निकलने की खबरें मिलती हैं, और अक्सर आप देखेंगे नाग सांप बहुत निकलते हैं। तो बस्तर की जनता को खास रूप से जागरूक करने के लिए क्या कोई जागरूकता कार्यक्रम भी आप लोग चलाते हैं क्या, ये मैं पूछना चाहता हूँ।
0: जी हाँ सर, अभी हम लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम स्टार्ट किया है, अभी 4-5 जगह पे हम लोगों ने किया है, स्कूल चूज किए हैं, ग्राम पंचायत चूज किए हैं, और अंदर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ के लोग जागरूक नहीं है वहाँ पे जाके हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम स्टार्ट किया है। अभी हमारी टीम जाते हैं, 3-4 लोग जाके उनको जो बिग फोर, जो जहरीले सांप हैं, जो बिना जहरीले सांप हैं, उनको हम लोग दिखाते हैं और बताते हैं कि ये जो सांप हैं जहरीले हैं, और उनको सांप दिखता है तो उनसे दूरी बना के कैसे रहना चाहिए, और सांप काटता है तो कहाँ जाना चाहिए, कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये चीज़ हम उनको बताते हैं। और रात के समय में बिना उजाला के बाहर नहीं जाना चाहिए, घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट किए हैं सर, गाँव गाँव जाके बताते हैं। अभी फिलहाल में हमने दलपत सागर में किया है,
1: बहुत
0: लामनी
1: बढ़िया,
0: पार्क में किया है,
1: अच्छा।
0: और बड़े मुरमा स्कूल में किए हैं सर अवेयरनेस प्रोग्राम, और जहाँ इधर धर्माउर में किए हैं।
1: बहुत बढ़िया, मतलब पूरे
0: हाँ
1: बस्तर में आप
0: हाँ
1: जगह जगह जा जाके जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को,
0: हाँ
1: बहुत अच्छी बात है। मैं एक प्रश्न और मन में उठता है अपने आम आदमी के मन में कि सांप काटने के बाद अस्पताल हम ले जाएंगे, लेकिन क्या ये जो दवाई है सांप काटने के विरोध की, उनको जहर उतारने की दवाइयां, ये मिलती कहाँ पे है?
0: ये जो सांप काटने की जो दवाइयां हैं सर, ये जो हमारे सभी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल में
1: और
0: उपलब्ध
1: ये जो
0: होती हैं।
1: अपने औषधि केंद्र खुले रहते हैं या मेडिकल स्टोर्स है, क्या वहां भी रहता है क्या ये?
0: वहाँ नहीं बोल
1: नहीं,
0: सकते सर, वहाँ पे नहीं बोल सकते, क्योंकि सिर्फ ये ना सरकारी अस्पताल में ही उपलब्ध रहते हैं।
1: तो मैं एक बार रेस्क्यू टीम का नंबर दे देता हूँ, हेल्पलाइन नंबर जो है
0: जी सर
1: 7987083917, दूसरा नंबर है 9178874006। तो ये रेस्क्यू नंबर है, एक अच्छी बातचीत सर्प मित्रों के साथ हुई है, तो हम दोनों सर्प मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, और श्रोता निश्चित रूप से इस चर्चा से लाभ लेंगे, परिचर्चा से, और जो आप लोगों ने बताया है वैसे कदम उठाएंगे, न कि अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं करना है, झाड़ फूंक से बचना है, सीधे अस्पताल ले जाना है मरीज को, और सांपों को मारना नहीं।

0: बचाना, ये आपका उद्देश्य भी है। तो चलिए, अनंत भोयर जी और रुकेश्वर भारद्वाज जी, आप लोगों से आज बहुत अच्छी चर्चा हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद सर।
2: आज के अतिथि, इसमें अभी आप सुन रहे थे स्नेक रेस्क्यू, इस विषय पर आनंद भोयर और रुकेश्वर भारद्वाज से शशांक श्रीधर शिंडे की बातचीत। नमस्कार जगदलपुर में, आगे है मधुरिमा में कुछ गीत, पर पहले सुनते हैं ये संदेश।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
7: 8700001424।

अब पेश है मधुरिमा। मौसम की नजाकत है, हवाओं में हल्का सा सीलन है और ये जो बूंदे हैं ना वो कहती हैं जमी को थोड़ा तरसाएंगे, इंतजार थोड़ा और करवाएंगे, जी करे तो बरसेंगे वरना बादलों में ही ठहर जाएंगे।

अब जब बादल और बारिश की हंसी ठिठोली चल रही हो तब दोनों का मिलाप किसी शरारत के बिना आगे बढ़ सकता है क्या? बूंदे कहती हैं, तेरी कैद में न रहना न आजाद रहना है हमें। इश्क में तेरी अब नई हसरतें नई तरकीब आबाद करना है हमें।

0: इंतजार जब इंतहा की हद पार कर जाए तब जमीन बड़ी हसरत भरी निगाह से बादलों को ताकती है और कहती है, किन लफ्जों में लिखूं मैं अपने इंतजार को तुम्हें, बेजुबान सा इश्क मेरा खामोशी में ढूंढता तुम्हें।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा।

जब इंतजार मुकम्मल हो जाए और जवाब की जगह बरसात ही धरती पर होने लगे, आसमान से धरती तक वर्षा की ये यात्रा जीवन के हर रंग में ढलते ढलते जब ग्रीष्म के ताप को हरती है, तब दुख विरह में सूख चुकी धरती से फूटती कोपले अपने निश्चल मुस्कान के साथ संदेश देती हैं कि प्रेम का रूप मात्र व्यक्ति परक नहीं, बल्कि पृथ्वी के कण कण में रचा बसा है, जो सृजन करता है, सींचता है और तैयार करता है अपने सरीखे बूंदे, अपने सरीखा कोई बीज, अपनी तरह पौधा और अपनी जैसी प्रकृति।

बरसात की फुहारों के साथ आपके जीवन की हरियाली यूं ही बनी रहे, रिश्तों में अपनापन महकता रहे, हृदय प्रफुल्लित हो और होठों पर मुस्कान खिलती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के नमस्कार जगदलपुर से अब रूपाली सेठिया को दीजिए इजाजत। शुभ दिवस, नमस्कार।

आप सुन रहे थे नमस्कार जगदलपुर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

0: घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा

0: आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केन्द्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहां बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिगबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमरीका इसराइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा

0: और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, एनसीआर थमा, तीन साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, आकाशवाणी के माध्यम से प्रतिदिन मधुर संगीत हमारे घर आंगन में गुंजायमान होता है, और जब बात संगीत की होती है तो संगीत की दुनिया बहुत बड़ी है, और इस दुनिया में बहुत सारे साज पाए जाते हैं। उन्हीं साजों में तालवाद्य भी हैं, और कुछ साज ऐसे हैं जो बांस से बने होते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे कलाकार को जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और तालवाद्य के एक बहुत ही प्राचीन और पारंपरिक वाद्य यंत्र पखावज वादन से जुड़े हुए हैं, और पखावज के साथ साथ आप बांस वाद्य से भी जुड़े हुए हैं। आप हैं श्री शुभाशीष सबसाची। इस कार्यक्रम में शुभाशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ, नमस्कार।
0: शुभाशीष जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की है?
1: मेरा जन्म कोलकाता में हुआ। कोलकाता एक सांगीतिक परिवार। मेरा पिताजी स्वर्गीय जगजीवन घोष आज हमारे मध्य नहीं है, तो उनका अनुप्रेरणा था। और दूसरी बात, मेरा दादाजी मतलब मेरा पिताजी का जो चाचा थे वो भी सुप्रसिद्ध गायक जाने माने कलाकार पंकज कुमार मल्लिक से भी तालीम लिए थे। उनका जल्दी उन्होंने चला गया। उसके बाद उस दरबार को पिताजी बचा के रखे थे, और उस सिलसिला को जारी रखते हुए मेरा माध्यम में भी इसका जो इम्प्लीमेंट हुआ पिताजी के द्वारा।
0: वर्तमान में अभी आप हमारे छत्तीसगढ़ में भी संगीत से संबंधित एक विशेष शोध कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं।
1: मैं आभारी हूँ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के, क्योंकि मेरा जो शोध है वहाँ से चल रहा है, और ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, वेरी क्रिटिकल टॉपिक एम्बिडेक्स्टर प्लेइंग की ऊपर है।

0: उसके ऊपर मेरा शोध चल रहा है। और मैं मेरा जो मैं खुद भी एम्बिडेक्स्टर प्लेयर हूँ, तो मैं सिर्फ नॉट ओनली म्यूजिशियन बट ऑल्सो अदर आर्टिस्ट जो दोनों हाथ का कार्य करते, उसके ऊपर एक चिंतन मेरा शुरू में ही था और उसके ऊपर मैं कशिश की और फाइनली मैंने इसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का रजिस्ट्रेशन हुआ और यहाँ से काम शुरू हुआ।
1: सुभाषिष जी, आप पखावज वादन से भी जुड़े हैं और साथ ही बांस वाद्य जिसे बैम्बू आर्ट्स कहा जाता है उससे भी आप जुड़े हुए हैं, तो आप बताएं कि पखावज से पहले जुड़े हैं या फिर बांस वाद्य से?
0: सर, शुरुआती दिन में तो मैं तबला से शुरू किया था। मैं छोटा था, 4 साल साढ़े 4 साल की उम्र में तबला। इसके बाद तबला तो बहुत लोग बजाते बचपन में, बहुत जाने माने कलाकारों का और कई मतलब एक इंस्पिरेशन तबला को तो मिलते ही गया, सब लोग तबला जानते हैं। लेकिन शुरुआती मेरा जो पखावज का हुआ, जिसे लोग मृदंग भी कहते हैं, वो रामाकृष्णा मिशन में जब मैं एडमिशन लिया था क्लास 5 में, दोस डेज स्टिल रिमेम्बरिंग, तो वहाँ पे खंडन भव बंधन स्वामी विवेकानंद का रचना जोहा का मेडिटेशन संग, वहाँ से स्वामी जी लोगों को पखावज बजाते देखते हुए, जो उसमें आटा लगाते थे, तो आटा देके एक ऐसा वाद्यकोण है जिसका प्राण प्रतिष्ठा होता है, तो उसमें धीरे धीरे मेरा उसकी तरफ मेरा आकांक्षा बढ़े और जैसे जैसे चलते हुए पापा को भी मैं उसके बारे में बताया, इंटरेस्ट जैसे ही दिखा पापा भी मुझे एक छोटा पखावज लेके, पापा का एक गुरु था उनके पास, शुरू शुरू में मेरा थोड़ा थोड़ा तालीम शुरू हुआ।
1: उसके बाद आपके जो पखावज के गुरु रहे हैं जिनसे आपने सीखा है जी, वे कौन कौन रहे?
0: कोलकाता में गुरु गुरुदास घोष जी, जो मुझे बहुत ही हेल्प किया, एकदम ट्रू ट्रेडिशन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा जिसको कहते हैं, ऐसे शिक्षा दिया। 10 साल तालीम मैंने लिया उनसे। उसके बाद मैं आई स्टूड फर्स्ट ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन, आप जानते होंगे वो कितना मुश्किल कंपटीशन, उसमें मैं कोलकाता से भी फर्स्ट हुआ, पूरे इंडिया से भी, दिल्ली से भी प्रथम होके वहाँ से जो प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिलता है वो मुझे मिला। इसके बाद मैं और दिल्ली में रहना शुरू किया, तब पंडित डालचाँद शर्मा जी से भी मैं पखावज का तालीम ली।
1: सुभाषिष जी,

0: से भी, दिल्ली से भी प्रथम होके वहां से जो प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिलता है वो मुझे मिला। इसके बाद मैं और दिल्ली में रहना शुरू किया, तब पंडित दयालचंद शर्मा जी से भी मैं पखवाज का तालीम ली।
1: सुभाषी जी,
0: मैं आसान तो नहीं कहूंगा, तबला बजाना पखवाज से तुलनामूलक सहज है क्योंकि उंगली का वाद्य है, और ये पखवाज जो है ये थाप का वाद्य है। तो एक छोटा बच्चा पखवाज शुरू करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो थापिया से बाजते हैं, दूसरी बात उसका आटा का गूंज, कितना आटा लगाना है, तो थोड़ा क्रिटिकल तो है ही। और वो बैरल ड्रम है, तबला सीधा दीक के बजा सकते हैं, आप दोनों साइड एक साथ पखवाज का दीक नहीं सकते। इसलिए मैं ये कहूँगा पखवाज का से तबला का इसीलिए प्रचार हुआ क्योंकि उसका अवेलेबिलिटी, उसका प्लेइंग स्टाइल बहुत कैची है। और पखवाज जो है, पखवाज मेरा जो चिंतन है, पखवाज है डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, प्योरली डिवाइन। तो हर जगह, हर गाने में और हर बर्थडे के साथ एकम्पेनीमेंट में भी शूट नहीं करते, लेकिन पखवाज का एक अलग जगह है। अगर सीधी शब्द में अगर बोलेंगे तो जो नॉर्मल जो कार है और कोई ब्रांडेड, तो पखवाज को मैं ब्रांडेड की जगह रखूंगा।
1: सुभाषिश जी, अगर हम पखावज वादकों की बात करें तो आज भारत में पखावज बजाने वालों की संख्या, स्थिति कैसी है?
0: पखवाज बजाने वाले की संख्या बहुत ज्यादा ही है। मुझे अच्छा लग रहा है जो आज नए जमाने में बच्चे पखवाज बजा रहा है क्योंकि इसका कारण सोशल मीडिया। पहले लोग पखवाज और ढोलक को कंपेयर कर नहीं पाते थे, वो उन लोगों का दोनों में सिमिलर एक ही एक जैसा लगता था। कुछ लोग अभी भी गांव देहाती में वो ढोलक, बड़ा ढोलक भी बोलते, मैं सुना। जैसे तबला पॉपुलराइज हुआ तो इसके लिए हमारा आर्टिस्ट लोगों का भी जगह जगह प्रोग्राम करना चाहिए, बोलना चाहिए। जैसे मैंने ही एक संकल्प उठाया, ये हमारा VC को भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी आशीर्वाद दिए। 108 मंदिर में मृदंग संकल्प यात्रा, ये 2 साल की समय लगेगा। तो आप लोगों को आशीर्वाद से कई जगह से मुझे फंडिंग के लिए भी बुलाया गया, मतलब कई भी हेल्प। ये अच्छा चीज आप कर रहे। मैं भारतवर्षों की, आपकी आकाशवाणी के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जो भारतवर्षों की 108 मंदिर में अलग अलग स्टेट में मैं मृदंग बजाऊंगा, ये एक परिव्राजक की तरफ। तो वो कम से कम 2 साल की एक प्रोजेक्ट। इसका मेन मुद्दा जो है, मैं इसको पॉपुलराइज करना चाहता हूँ पखवाज को, ये मेरा मेन मुद्दा है, जो पखवाज को लोग जाने। यही इसीलिए ये मेरा संकल्प यात्रा मैं शुरू किया महाराष्ट्र से, अम्बरेश्वर मंदिर से, अभी चल रहा है। रिसर्च के बीच बीच में वो भी काम मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा और एक चीज दीपक जी आपको मैं कहूँगा, जो बेम्बू मिशन, जो बेम्बू, मैं बेम्बू आर्ट के लिए कैसे मैं अपने को अपनाया, कोविड के दौरान जब आर्टिस्ट लोगों का काम नहीं था, तो मेरा तो GRF उसमें ही हुआ, बेम्बू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट यूजफुलनेस अपन द सोसाइटी। इसके बाद मैं घर बैठ के ये सोचा, अगर बेम्बू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो मैं बना लिया, उसका कार्य भी मैं कर रहा हूँ, एक इको फ्रेंडली ऑर्केस्टर भी मैं बनाया, जगह जगह में प्रोग्राम करते। उसके बाद उस टाइम में मैं छोटा छोटा मिनिएचर बनाना शुरू किया। और ये स्कूल वाले जैसे ही CCRT मुझे बुलाया, आप जानते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थान है, तो ये IGNCA वर्कशॉप लिया, तो जगह जगह स्कूल में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड टॉयज की जो कार्यशाला और ये सब, मैं एक एक मतलब एक कैंपेनिंग, मेरा एक नया दिशा खुल गया। तब से मैं बेम्बू से जुड़ा हो, मतलब पाखवाज के साथ ही साथ।
1: आपने बैम्बू का जिक्र किया, बांस का जिक्र किया, तो हम जानना चाहेंगे कि बांस के अंतर्गत वो कौन कौन से साज हैं जिनसे आप जुड़े हैं?
0: देखिए, बेम्बू से तो नेचुरली आप भी जानते हैं दीपक जी, जो बांसुरी है मेनली, तो बांसुरी जो हम कृष्णा भगवान के हाथ में देखते हैं उनका मूर्ति में, और बांसुरी एक वेरी ट्रेडिशनल एंशियंट इंस्ट्रूमेंट है। और बीना भी जैसे

0: सरस्वती माता की हाथ में, हमारा तो सारे इंस्ट्रूमेंट देवी देवताओं की से ही प्रचलित रूट से आए, तो मैं बीना भी देखा, आप यकीन मानिए बांस का बीना है, पहले जो डाट बनाया जाता था वो बैम्बू का, क्योंकि बैम्बू पूरा अंदर से हॉलो है, उसका रेजोनेंस जैसे लकड़ी में आपको उसको खुदाई करके अंदर से आपको शेप देना पड़ता है, बैम्बू में वो एक इनबॉर्न जो होता है वो शेप पहले से ही है। इसीलिए मैं ये चिंतन रखते हुए मैं भी मेरा दिशा को आगे बढ़ाया और भी इंस्ट्रूमेंट, बैम्बू से मैं तबला बनाया, बैम्बू से मैं गिटार बनाया, बैम्बू से मैं सितार, मतलब ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट को मैं अलग से बैम्बू से इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट को चेंबर को मैंने चेंज करके देखा इसका रेजोनेंस का व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन।
1: सुभाषिष जी, आपने चूंकि बताया कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से आप पीएचडी भी कर रहे हैं, तो पीएचडी में आपका जो विषय है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं।
0: पीएचडी का मेरा जो विषय है वो एम्बिडेक्स्टर आर्टिस्ट एंड इसका जो हिस्ट्रिकल एंड एनालिटिकल स्टडी, मतलब मैं खुद ही एम्बिडेक्स्टर प्लेयर हूँ, मतलब मिंटू से चेंजिंग पोजिशन ऑफ द साइट इन माई इंस्ट्रूमेंट, मैं दोनों हाथ में बजाता हूँ लेफ्ट एंड राइट। लेकिन मैं शुरुआत में मैं ये सोचा जो एम्बिडेक्स्टर प्लेइंग मतलब सिर्फ कलाकारों की ऊपर करो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स का, इसके बाद मैं जैसे ही हमारा बीसी मैम से इसको लेके डिस्कस किया, उन्होंने बहुत अच्छा सलाह दिया, जो ये है खैरागढ़ मैम, उन्होंने खुद ही म्यूजिशियन है, सितार प्लेयर है लाबली शर्मा मैम, तो उन्होंने बच्चे को हर चीज़ों में उन्होंने उनका मोटिवेशन मिलता है। उन्होंने एक चीज़ मुझे बुलाया एक दिन, मुझे बोला तुम्हारा ये जो काम है इसको ऐसे करके दिशा दो ताकि सारे आर्ट फील्ड को कवर करे, और ये एक अच्छा सलाह था उनका, तो नॉट ओनली म्यूजिशियन बट ऑल्सो अदर आर्ट्स, फाइन आर्ट्स में कई लोग दो हाथ में पेंटिंग करते हैं, दो हाथ में कुछ लोग लिखते हैं, तो उनकी एक निर्देश बोल सकते हैं या गाइडलाइन, तो उसमें उसके चिंतन रखते हुए मैं इसको पूरा आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा इसका हिस्ट्रिकल एनालिटिकल स्टडी के ऊपर मैं काम कर रही, इवन प्लेयर जो दोनों हाथ में बल्लेबाजी करते।
1: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं पखावज और बांस वाद्य के कलाकार श्री सुभाषिष सबसाची जी। सुभाषिष जी, इस बात से पहले मन कर रहा है कि आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं, तो बताइए आप कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे?
0: ये गाना तो मुझे बहुत पता नहीं, इसका कौन फिल्म का नाम अभी याद नहीं,
1: आप बताएं।
0: चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद पर किशोर कुमार जी का गाया हुआ ये गीत।

0: क्या बात है सुभाषिष जी, बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे श्रोताओं को आपने सुनवाया। और श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज के हमारे खास मेहमान हैं पखावज और बांस वाद्य के कलाकार श्री सुभाषिष सबसाची। सुभाषिष जी, पखावज एक वाद्य ऐसा है जो खास तौर पर ध्रुपद धमार के साथ ज्यादा बजाया जाता है ना? शास्त्रीय संगीत में इसका प्रयोग होता है और कुछ फिल्मी गानों में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पखावज वादक जो होते हैं वो अपने मुंह से भी सारे बोल इसके निकालते हैं, तो हमारे श्रोताओं को कुछ बोल आप निकाल के बताएंगे।
1: जैसे देखिए, स्तुति पढ़न जो होता है पखावज, तो पहले ही मैं जिक्र किया जो ये डिवाइन साज है। आप इसको आज की डेट में फिल्म में काफी गाने में भी पखावज के इस्तेमाल होता है, लेकिन ये तो टेम्पल म्यूजिक में ज्यादा बजते हैं। कि पखावज की बात करें कि साउथ इंडियन मृदंगम की बात करें, सब एक ही अलग अलग वर्षन है, एक ही मेन मृदंग है। पहले मिट्टी में था, अभी तो वो लकड़ी में हुआ, जो भी है। तो उसमें स्तुति जो पढ़ों है देव देवताओं की, उसमें जैसे एक शिव जी का मैं बताता हूँ आपको, धकिट धकिट धधकिट दिन दिन दिन दिगत तकिट गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ तकिट ढिकिट ढिम ढिम ढिम डमुड बजत धृकट तक धिकिट हर हर महादेव शिव शंकर।

0: हमारे लिए तो धाई फूल है, धा से पुष्पांजलि
1: जी। और इसके अलावा शिव जी के अलावा और भी उपासना के लिए अलग अलग
0: अलग अलग
1: बोल होते हैं, उसके बारे में कुछ बताएं।
2: आपके समक्ष एक गणेश वंदना प्रस्तुत करता हूँ। प्रस्तुत है गणेश वंदना।

0: सरस्वती माता की ऊपर सरस्वती सरस्वती सरस्वती माता तेरी चरण में आई विधाता चरण शरण माता चरण शरण माता चरण शरण माता। इसके अलावा आजकल मैं और एक चीज लेके काम कर रहा हूँ, जैसे मैं कुछ देखा जो गांव देहाती में अगर कोई जगह गायन वादन कुछ लोग समझते नहीं है अगर हम कुछ बोल बोले, जैसे देखिए तो ये कंपोजिशन जब बजा रहे हो जो त्वरी के साथ लोग उसका त्वरी में आनंद ले रहे हैं और जो जानकार है जो क्लासिकल सीखते उसका बाकी लोगों का आम लोगों का इसमें मतलब नहीं है। तो इसके लिए ना मैं बोल कविता के ऊपर एक किताब की सोच है मेरा, उसके ऊपर मैं कार्य कर रहा हूँ। जैसे देखिए इसका जो ड्राइंग मैंने किया तकधमकड़ता इसको एक्सप्लेन करके मैं जब बजाता हूं तब जो श्रोता है बड़े आनंद लेते हैं। तो एक बच्चा भाग रहा है देखिए तकधमकड़ता, उसका माँ उसको खींच रहा है धड़ान्य देता तकिट तका कहा जा रहे हो इधर आओ धड़ान्य देता तकिट कहा जा रहे। तो बच्चा बोलते है मेला पे वो जो बेलून है उसको कृधान्य ताड़ा मुझे वो बेलून चाहिए मम्मी। तो उसको माँ डांट के बोले कत धागड़ तकड़ तका, मतलब एकदम उसको चाटा लगाने के लिए बोले कत धागड़ तकड़ तका। तो बच्चा बोलता है फिर बच्चा आगे खींच रहा हाथ तो बोले क्रधित धिकिट गदान, दोनों एक दूसरे में लड़न थोड़ा है क्रधित धिकिट गदान थूथू कृतक धा थूथू कृतक, मतलब बोले खींच के क्रधित धिकिट एकदम लगा दो तुमको अभी क्रधित धिकिट गदान इधर। तो बच्चा बोलते थूथू कृता गदिग निधा थूथू कृता गदिग निधा थूथू, मम्मी मुझे माफ कर दे माफ कर दे माफ कर।
1: मतलब ये जो है ये पूरी स्टोरी जो है हाँ। ये आप पखावज के बोलों से व्यक्त करते हैं
0: जी,
1: बताते
0: जी,
1: हैं तो ये बड़ी अद्भुत कला है आपकी
0: जी,
1: और सुनने वालों को समझ में आ जाता है कि माँ कहाँ

तो उसमें मैं जो जो डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, जो जो मैंने जो जो इंटरव्यू लिए, उसमें मुझे सबसे पहले डॉक्टरों से मैं मिला, क्योंकि ये न्यूरोसाइंस से भी जुड़े हैं सब्जेक्ट, तो

0: दूसरी बात, जो हमारा पूरा ब्रेन के ऊपर पूरा नियंत्रित, हमारा शरीर का तो मेन तो ब्रेन है, आप जानते ही है, तो ये एम्बिडेक्सटर लोगों का बराबर चलते। दूसरी बात, मैं जो जो आर्टिस्ट से मिला तो एक चीज देखा, जो एम्बिडेक्सटर लोग होते हैं ये काम के लिए काफी निपुण होता है, परफेक्शनिस्ट होता है। मुझे, मैं खुद एम्बिडेक्सटर हूँ, तो वो लगता है ना, जैसे मैं कई बार टिप्पणी करके बोलता हूँ, जैसे एक लोग दूसरे से कंपटीशन करते तो हमारे में क्या हो जाता है, हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को लड़ाते हैं, ये हमारा खास बात है। मतलब ये इनर एक फाइट होता है जो कौन हाथ से जल्दी और अच्छा काम निपुणता के साथ कर सके।
1: सुभाषिष जी, आपका ये शोध जब पूरा हो जाएगा, जिसमें आप PhD कर
0: जी
1: रहे हैं,
0: जी
1: तो उसके बाद फिर आपकी अगली मंजिल क्या है, आपका सपना क्या है?
0: मेरा एक सपना है, सपना तो बहुत है लेकिन उसको साकार देने की जो इच्छा है, एक देखिए, मेरा एक बेम्बू स्कूल जिसमें अक्सर कलाकार को देखता हूँ रंग बिरंग की कलर एक कुर्ता पाजामा पहन के, कलाकार तो शौकीन होते ही है, शो करते, अपना पेमेंट लेके जाते, कलाकार का लाइफ भी स्ट्रगल होता है, ये नहीं बोल रहा हूँ जो अपने ही मतलब में, लेकिन मुझे लगता है सोसाइटी के लिए वो भी सुना रहा है, सेवा कर रहे संगीत का, चाहे अब जाकिर जी की बात बोले, किशन महाराज जी की बात बोले, जो भी बोले। लेकिन इसके अलावा मैं ये कहूँगा, जो मुझे जो चिंतन है, जो समाज के लिए हम क्या दे सकते हैं, जो आजकल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सेल्फ स्किल डेवलपमेंट, इसके ऊपर मैं सोचा एक बैम्बू स्कूल, जहाँ पे बैम्बू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मेकिंग से लेके उसको प्लेइंग तक सिखाया जाता है, और उसके ऊपर मैं थोड़ा अभी बहुत आभारी हूँ, मैं IIIT रायपुर का एक प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ बेम्बू स्कूल में बेम्बू क्राफ्ट की भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगा, और साथ ही साथ पाखोआ जर ये जो एम्बिडेक्सटरिटी है, तो एम्बिडेक्सटर एक स्कूल खुलना भी मेरा इच्छा है, जो दोनों हाथ का काम करते, समर्थ है दोनों हाथ की काम की, बहुत छुपे हिडन आर्टिस्ट है। आपको भी पता होगा, अक्सर जब घर में हम बाएं हाथ से कोई खाना खाते कोई तो मम्मी पापा टोकते, आज की डेट में टोकना नहीं चाहिए क्योंकि उनका एबिलिटी है, तो मैं जो जिसका एबिलिटी है उसको अगर दोनों हाथ से काम कराया जाए, तो इसके एम्बिडेक्सटरिटी का एक मैं इस मिशन करना चाहूँगा।
1: तो सुभाषिष जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपके इस मिशन में आपको सफलता मिले, और पखावज वादन के माध्यम से आप अपने साज को विभिन्न महफिलों तक लेके जाएं, और इस ताल वाद्य के माध्यम से संगीत की यूं ही आप सेवा करते रहें। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मोचो माटी ये कार्यक्रम सुन तो सप्पाय भाई बहन मन के खूबे खूबे सेवा जोहार। आज आमी आपन मन के सुना तो काजे धरुण बाती इलू से हलविने कविता पाठ ठसा और गोंडी कहानी। तो देखा ये समिया बल्लने तिहार बार चो समिया है असने गोटुक तैयार होए से नोआ तिहार आरु ये नोआ तिहार ने जुन दिने नोआ होए से हुन दिने बल्लने खातो जिनिस काजे पूजा पाठ काजे गाँव चो लोग मन कुड़ई पान के काम ने आनुआत। तो यही कुड़ई पान चो महिमा के कविता ने गाउन बाती सुनाए सोत श्री घासीराम।
1: नंदी दड़ी चो कुड़ई फूल खूबे सुंदर आय अचना चा काय पीला मान जोनी उजुराय अचना चा काय पीला मान जोनी उजुरा कुड़ी पान के बचौरले काम देवाय सतय कुड़ी पान के बचौरले काम देवाय दखनवा जीव न काजे ये दे काम देवाय दखनवा जीव न काजे ये काम देवाय सरगी सेव न बचौरले सबके देवाय दखा सरगी पान के बचौरले सबके देवाय दखा कुड़ी पान सबले ज्यादा काम देवाय। अमचो नदी दड़ी चो कुड़ी फूल खूबे सुंदर राय अचना चा काय पीला मान जोनी उजुराय अचना चा काय पीला मान जोनी उजुराय नंदी दड़ी दड़ी कुड़ी बूटा खूबे रहे से दका नंदी दड़ी दड़ी कुड़ी बूटा खूबे रहे से दका ए गोट के सुर तक रुन कुड़ी बचावा दका ए

आए, जसन जसन बीमारी रले उनके दूर करुआ, हे जसन बीमारी रले उनके दूर करुआ। ये तो एकादे संगते रले सबके जान तो राय, हाँ ये तो एकादे संगते ले के सबके जान तो राय। धका कुड़ी उठ के बचाओ रले काम देवाय, काई कुड़ी उठक बचाओ रले काम देवाय। नंदी दड़ी चो कुड़ी फूल खूबे सुंदर आय, नंदी

आए, जंगल बाटे जड़ी दखले काम देऊ आए, जंगल बाटले जड़ी दखले काम देऊ आए, जसन सुगर बीमार रले उनके सबके संडऊ आए, जसन सुगर बीमार रले उनके सबके छंडऊ आए, ये तो काजे कोड़े बूटा के हमके बचात आए, तो कोड़ी बूटा के हमके बचत हुआ, दका लोग रोग रहे दे उनके दूर करुआ, तेतर रोग बीमारी रहे से उनके दूर करुआ, हम तो बसर की तरह

गणित जीवन हम तो जीवन आय सर्ग सीवन गणित जीवन हम तो जीवन आय यदे सब जन के बचौरले काम देवा यदे सब बन के बचौरले काम देवाय संगत गोट के नंगत करुण नंगत रतो राय सत संगत गोट के नंगत करुण नंगत रतो राय सत सियन मन के सांगल गोट के हम के दतो राय सत सियन मन से सांगल गोट

आय बाबा मन पड़क पटक झटके जातो राय, आय बाबा मन पड़क पटले झटके जातो राय, ए दे नहा दे अर तैयार हूं हमके जातो राय, नहा दो तैयार हूं हमके जातो राय।

हमके दसत वाय जंगल बाटे रुक रहे हमके बचत वाय जसन बैदी रुके देखुन हमी हमके बचत वाय जसन जड़ी रुक रली जले हमके बचत वाय हाट पटन जड़ी बूटी के बिकुक ने तो नुआ हाट पटन में जड़ी बूटी के बिकुक ने तो नुआ दका करे हमके ये काम देवू आय सत हम।

0: ने हुजूरा।
1: तो दखा कुड़ी पांच महिमा के गाउन बाती सुनाते रला श्री घासीराम एदाय सुना ठसा आरु ये ठसा के बले ने संचालन कर सोत चमरा राम कश्यप।
2: मैं आज ये ठसा धरो नीलू से मैं चमरा राम कश्यप और मचो संगवारी मान लखमू राम मरकाम संपत राम नाग और लक्ष्मणी कश्यप आमी ये ठसा मन के धरो नीलू से आले संगवारी ए लगे या बसा और मूर करू एबे ठसा। आले आले सबले पहिले मंजी गता रहू ए संपत राम नाग भाई आले तुई काय ठसा आनले से जल ठसा सांगोल ना
3: आनले से ना मतलब ठसा से।
2: हाँ हाँ
3: सुना
2: आले आले
3: नानी कांदा के रांदा बोलतो के बड़े कांदा के रांदला।
2: हाँ हाँ हाँ
3: नानी कांदा के रांदा बोलतो के बड़े कांदा के रांदला पुलिस घरे जो बोलते के गोय गोय गागला
2: आले लखमू भाई आले
4: आले मोचलक बलास गोटक ठसा। हाँ जेठ गेली बरसाईली मांतर तुई नीलीस। जेठ गेली बरसाईली मांतर तुई नीलीस भाव खाऊन खाऊन घरे बसलीस भाव खाऊन खाऊन घरे बसलीस काय बसून बसून पुटले मरून जेलीस।
2: जीव टीव टीव टीव मुंडी ने जीव कुंडरा पेज के पीऊ। आले लक्ष्मणी तुई आले
5: सोना चुकंटी माला।
4: अच्छा सोना चुकंटी माला
5: सोना चुकंटी माला ए दे द छातीन लूरे से
2: छातीन लूरे से
5: लेकी मन खेलू की ला जाले एक ही उरुला
3: आले मचलग असनी पेर और काय सुखसी काय बांगा काकी नी सांगा। काय सुखसी काय बांगा काकी नी सांगा आमचो घरे सगाईला रांदला चुचाय
4: बांगा कुत्रो कंजूस कराती तो
3: नहीं रोहत नहीं गांव बटे।
4: अच्छा अच्छा
2: चुचाय
5: बांगा
2: आले लखमू भाई।
4: हाँ मोचलक बोला से आजकल चले का लेकिन खूबे फोबो ही बात नहीं बरन बरन चो ड्रेस मन पिंदर बात फाटलो मन के स्टाइल आई बोलन भाती मुंचे ऊपर गोटक ठसा आसे अमूस गेली नवा आए से हुन नवा कपड़ा धरुक सहरे जाए से। अमूस गेली नवा आए से हुन नवा कपड़ा धरुक सहरे जाए से मोंडरा एक पैसा देऊन फाटलो कपड़ा पिंदू नकटी मोचो पुपरे फोपई होय
3: आजकल दसनी जुआन लेखा
2: लिखे मचो ठसाक सुना हाते नाई दाम हाते नाई दाम मामा चो बेटी के मां मामा चे बेटी के मां
4: पैसा नहीं है हाथे और मामा चे बेटी के मां
3: मामा चे बेटी के मां
5: आले थे वाते मोबाइल गुटक थसा बोले
3: आले आले
5: कसी बेलती नानी असना है।
4: अच्छा
3: नानी असना है
5: नानी असना है कसी बेलती नानी असना है माँ तर बानी खूबे आए
3: आले असनी मचला गोल्या से
4: आले संपदा सुना
3: सपाय लोग नांगर पांदला मोय तो पांदे नहीं। सपाय लोग नांगर पांदला मोय तो पांदे नहीं पांदले पांदे नोले नहीं गरे गोटक बोयला नहीं

0: नहीं नहीं नहीं
1: नहीं
2: हां हां आले मोचलक बल गोटो कासे ठसा आले एक बल सुनते बे
1: आले आले आले
2: जसन देश चो उसन भेस करिया करिया केस जसन देश चो उसन भेस करिया करिया केस बिहाती लेका लेकी ठसाए घरे रोजे होए कलेस रोजे होए कलेस
3: हाओ हाओ आले ते मचक गटक सुनाता आले जसन बाबूचो बाजा जसन बाबूचो बाजा असन नोनीचो नाचा
2: असन
3: नोनीचो नाचा हाओ
1: हाओ नहीं उन पर जसन बाबू नाचो है उसने नोनी बोल नाचो हाओ
2: हाओ आई काई बजाए
4: आले मोय गटक फेर ठसा आस
2: सुनाते बे
4: चैत गिरी मुक्ता बोली चैत गिरी मुक्ता बोली हाट बसे से धड़ी चो धड़ी
2: हाट बसे से धड़ी चो धड़ी
1: धक्का आसनी मतलब आसता ने
2: वाले आले
1: सपाय लोग चो नांगर गड़े मचो नांगर नहीं सपाय लोग चो नांगर गड़े मचो नांगर नहीं गड़ ले गड़ती नो ले नहीं लोरा पजाए नहीं
2: नागर बोले आले मोचलक बोलू से नहीं आसे जुगे चतुर चो दुआरे ठान खावरा खाए बीड़ा पान जुगे चतुर चो दुआरे ठान खावरा खाए बीड़ा पान गरीब लोग भूखे सोवत भोबड़ा डोकरा लेकी ठसन बोले आई लव यू मेरी जान
3: शरम नहालो गरम चाहा
2: अच्छा शरम
3: नहालो गरम चाहा फुकुन फुकुन खा
2: गरम बल पियो तो ऊपर ले फुकुन फुकुन बल उनके पियो ने
3: फुकुन बल खाओ पड़े पियो पड़े साले
4: मतलब फिर आस्ता ठसा काम रत ले दादा भाई काम रत ले दादा भाई काम सर ले कोलिया खाई
1: काम रत ले दादा भाई
2: मोचलक बोलास्ता एक बोला सुनु लेकी चुप रे आए गोटो कसने कहा बोलवा तू नहीं आए सुंदर तुचो कांचो बाली सुंदर तुचो झुड़ा सुंदर तुचो कांचो बाली सुंदर तुचो झुड़ा मुँह आसी लेकी बेंद्री असन मुंडे चपड़ा गुड़ा
1: गुजुड़ गुजुड़ बाजा बाजली करंजी गचे तले गुजुड़ गुजुड़ बाजा बाजली करंजी गचे तले मेंढा मारून बुरसुंगाला रेणु पुजारी गरे लेकिन गोटो गोटो कूट के
3: लक्ष्मण का आस्ता
4: आस्ता का बेटा रले बुआरी बेटा रले बुआरी गाय रले दियारी
1: बेटा रले तेबे तो बुआरी आनु हमने गाय बोला रले तेबे तो दियारी बनाओ
2: आले गोटो कास्ता मुझे लगा ले सुनो एक बल्ले

0: रेडिओ सुनतो भाई बहीण मन ये तो रही ठसा असनीची हसी मजाक ने रतो राय और असनी ठसा होली कहनी होली नहाले गीत गोविंद होली ये सब के आमके भूलकतर न आए और ये तो समय नानी पीला मन बोले असनी ठसा हो गीत हो कहनी हो उन मन के सीखा तो राय जाना तो राय तेवे आमचो ये बस्तर चो बोली ने जितलो बोले गीत गोविंद आसे ठसा आसे कहनी आसे मन बाचू रहे दे और असनी संगे एचो जातोपुरे मैं चमराराम कश्यप और मचो संगवारी लक्ष्मणी कश्यप संपत राम नाग और लखमू राम मरकाम सपाय लोग करूं से जुहा।
1: हाँ ठसा अपन मन सुनते रलास और संचालन करते रला चमरा राम कश्यप मांतर एदाय सुना गोंडी ने कहानी और एक सुनाय सोत श्रीमती घसनी।
2: सात जरदा धार लोर बरा हे लड़हार मंदले अधे लड़हारी दादहार लोर अंगहार तत्तुर ले अचो अधे लड़हार इन्होड़ वप किंदुंग ले अब अंगहार अचो बग्गा मने ना जरा दंगे बा हे लड़हार इंद नले मते मैं अकील ले अब अंगहार ना पीला नू अनिन ये तो अद्वार सत तुमरी ना हादन हादन हादि तुंगले अचो रच्चे डपते गाटो पैसिन दाय नले तुमर मरकने अद नय बसी तान परक परक अद नय गला दाय नले अचो इत पक्कदांता मा वहेला रच माई दस कुड़ पहले ग पपैसिन इंजर इंदुंगले इंदुरले और दादहार लोर अचो ये पत्तहन तत्ता लाए इंजर आढ़हार कुन हो गांदुरले अचो माक तो वे हो वराय दांता नई धुन गलो हो इंजर नेंड तो वायर नेंड ताकर इंजर ताना गाट तिंदना तुंटा के किंदुंगले ताना गाट तिंदना तुंटा के किने किने कद मुने ते दितले निन पैर पर एक दिया वा पैर हाथले अधेगा पतुन पैसीन अचे अद मुंज सी बगत मंदले अद मुंज मरसले ले रोजे गाटो सनल अद मुंज तो नत पेड़ी ईद मटाता मुंजा लद मटाता वायु मुंजा वायु कदा मुदानिया जरत पर कैंद लत पेड़ी अचे ईद मराते डेवसर अद मराते डेवसर अद मुंज पर बांध ले कौदु नुकसिन कैंजिंद ले पेर कै सुड़का वायु इंजर पेर अत पेट कैंद ले ईद मटाता मुंजा लद मटाता मुंज कदा ए वायु मुंजा वायु कदा मुदानिया इंदले अचत मुंज भूक इना डे इंदले अचे अत पेट पर डपता गाट तुन अद मुंज तुन हिंदले अचत मुंज पर गाट तिंज अचड़े पैर मरते डेव नले अच्छा जे कच्चो यत कहानी पाटा हुई का इरी लो दोरी री लारी इरी री लो दोरी री लारी लाई इरी लो दोरी री लारी इरी री लो दोरी री लो री लाई

इन सेवा एक ही तीरों इन्होंने।

0: ननै जगदान्त न सबै मुदुन जोहार रहे।
1: हाँ तो देखा श्रीमती घसनीचो गोंडी कहानी के सुन लू तो असनी आपन मन ये कार्यक्रम ने आमचो बस्तरचो बोली मंचो कई कसन गोट मन के सुनते रहा से जानते रहा से तब तक काजे खूबे खूबे सेवा जुहार।
2: अभी आप सुन रहे थे लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी, संपादक थे बलबीर सिंह कच। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

कार्यक्रम में एक ही फिल्म से में आज हम लेकर आए हैं साल 1980 में रुपहले पर्दे पर प्रदर्शित हुई उस फिल्म के गीत जिसे आज भी बड़े ही चाव से गुनगुनाया जाता है। हम बात करेंगे उस फिल्म के जिसकी कहानी, जिसके किरदार और जिसके गाने सब कल्ट माने जाते हैं।

जी हाँ, हमारी आज की फिल्म है सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म कर्ज। ये फिल्म अपने समय से काफी आगे की फिल्म थी, जिसे रिलीज के पहले हफ्ते में ही बॉक्स ऑफिस पर धूल फांकनी पड़ी, लेकिन आगे के हफ्ते में जो हुआ वो इतिहास बन गया। इस फिल्म के लेखक और संवाद लेखक थे डॉक्टर राही मासूम रजा। पटकथा लिखी थी सचिन भौमिक ने। निर्माता थे अख्तर फारूकी और जगजीत खुराना।

फिल्म निदेशक सुभाष घई ने हॉलीवुड फिल्म से प्रेरित होकर फिल्म कर्ज बनाई। उस वक्त फिल्म का गीत संगीत बहुत ज्यादा पसंद किया गया। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म का संगीत तैयार किया था। फिल्म के लिए गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। सुमधुर गीत के पार्श्व गायक थे मोहम्मद रफी, मन्ना डे, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, आशा भोसले और अनुराधा श्रीराम। फिल्म के दो गीतों के लिए संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिला था सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म पुरस्कार। पुरस्कृत गीतों में से एक गीत था

फिल्म कर्ज में मुख्य भूमिकाओं में थे ऋषि कपूर, टीना मुनीम, सिमी ग्रेवाल और राज किरण। सिमी ग्रेवाल ने इसमें कामिनी वर्मा का ऐसा किरदार निभाया जो आज भी याद किया जाता है। फिल्म में भूमिका निभाने वाले अन्य सह कलाकार थे प्रेमनाथ प्राण, दुर्गा खोटे, पिंचू कपूर, जलाल आगा, इफ्तिखार विजू खोटे, मेक मोहन और बिरबल। अब हम सुनवा रहे हैं आपको इस फिल्म का वो गीत जो बताता है इस फिल्म की कहानी।

इस गाने से आप समझ गए होंगे कि फिल्म कर्ज पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म थी। जब कर्ज रिलीज हुई थी तब उसमें दिखाया गया था काली माता का एक मंदिर, जिसके पास कामिनी वर्मा यानी सिमी गरेवाल रवि वर्मा यानी राज किरण की हत्या करती है। ये जगह ऊटी में होना बताया गया था, जबकि वहां ऐसा कोई मंदिर न था। लोग वहां पहुंचते और निराश हो जाते। दरअसल ये मंदिर एक सेट के रूप में मुंबई में ही स्थापित किया गया था। फिल्म की असफलता ने ऋषि कपूर को तब बीमार बना दिया, लेकिन ये फिल्म आगे चलकर बन गई बॉलीवुड की वो फिल्म जिससे प्रेरित होकर तेलुगु में आत्मबलन, उड़िया में बाजी, कन्नड़ में बनी युग पुरुष, तमिल में एन्नाकुल ओरुवन, यही नहीं पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक इस फिल्म से प्रेरित फिल्में बनने का उल्लेख मिलता है। आइए सुने फिल्म का वो नगमा जो आज भी तरुणाई लिए महसूस होता है।

0: ने कभी किसी से प्यार किया?
1: किया।
0: कभी किसी को दिल दिया?
1: किया।
0: मैंने भी दिया।
2: श्रोताओं, फिल्म कर्ज अभिनेता ऋषि कपूर की उन फिल्मों में से है जिनमें उनका अभिनय कौशल, नृत्य कुशलता और खूबसूरती का अद्भुत संगम दिखता है। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म का वो गीत जो चार्ट बस्टर में शामिल हुआ, जिसने दिलवाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पुरस्कार और बना ऋषि कपूर की आइकॉनिक डांस स्टेप का गीत।

0: ये था हमारा आज का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे फिल्म कर्ज के गीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार एकांश हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम बन गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में चलती हाईवा में आग लगने से 3 लोग झुलसे और मौसम विभाग ने आज बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम बन गया है। कल रायपुर में आयोजित दीदी के गोठ वार्षिकोत्सव 2026 में उन्होंने दीदी के गोठ कॉफी टेबल बुक, विहान वाणी त्रैमासिक पत्रिका और मोर गांव मोर पानी पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने सफलता की कहानी साझा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और कहा कि कार्यक्रम के एक वर्ष में प्रसारित 12 एपिसोड से महिलाओं को आत्मनिर्भरता, नवाचार और स्वरोजगार की प्रेरक जानकारियां मिली हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर जिले के समोदा में 128 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने ग्राम रीवा में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से स्टॉप डैम निर्माण सहित कई विकास कार्यों की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर कबीरधाम जिले के बोड़ला क्षेत्र में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत बनी सड़क की राज्य स्तरीय जांच की गई। जांच के बाद निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता में लापरवाही पाए जाने पर सहायक अभियंता और उप अभियंता को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही क्षतिग्रस्त सड़क का हिस्सा दोबारा बनाने और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए गए। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की पहली बैठक हुई।

0: बैठक में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 1,00,000 रूपये करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा गिग वर्कर्स, चरवाहों और असंगठित कर्मकारों के मेधावी बच्चों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने पर भी सहमति बनी। श्रम मंत्री ने पंजीकृत श्रमिकों का ई केवाईसी और आधार आधारित पंजीयन कराने तथा पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। धमतरी के भोपाल राव पवार शासकीय पॉलिटेक्निक ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के मूल्यांकन में संस्थान को प्रदेश के शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में तीसरा स्थान मिला है। इस संस्थान का मूल्यांकन शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल संसाधन, अधोसंरचना, उद्योगों से समन्वय और प्लेसमेंट जैसे मानकों पर किया गया। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के अंबिकापुर रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर कल एक चलती हाईवा में अचानक आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार ये दुर्घटना ग्राम सोन तराई स्थित देवगढ़ के पास हुई। इस दौरान हाईवा में सवार वाहन चालक समेत कुल 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इन तीनों को सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज उत्तर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार यही स्थिति अगले 3 दिनों तक भी बनी रहेगी। केंद्र सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और अखंडता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोठ प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम बन गया है। सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र में चलती हाईवा में आग लगने से 3 लोग झुलसे। और मौसम विभाग ने आज बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम गुलशन में मेरी पसंद। मेरी पसंद सुन रहे सभी श्रोताओं को रूपाली सेठिया का नमस्कार। श्रोताओं, कभी कभी लगता है कि अगर जीवन से संगीत को अलग कर दिया जाए तो कितनी सारी यादें भी हमारे साथ नहीं रहेंगी, क्योंकि अक्सर यादें चेहरों से कम और गीतों से ज्यादा जुड़ी होती हैं। बारिश की कोई शाम हो, लंबा सफर हो या फिर मन का बिल्कुल शांत हो जाना, हर एहसास का अपना एक गीत होता है। आज मेरी पसंद में ऐसे ही कुछ गीत हैं जो बरसों से मेरे साथ चल ये आ रहे हैं। बारिश की पहली फुहार पड़ते ही जिस धुन से मन अपने आप जुड़ जाता है वो गीत है ये फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से। आवाजें हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की।

जावेद अख्तर का लिखा और आर डी बर्मन का संगीतबद्ध गीत आप अभी सुन रहे थे। श्रोताओं, कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम सिर्फ बोलों की वजह से नहीं बल्कि उनकी बनावट की वजह से पसंद करते हैं। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में समीर का लिखा और अनु मलिक की बनाई धुन, ये गीत अब मेरी अगली पसंद में शामिल है। शामिल करने की वजह इसका मधुर संगीत और गीत के बीच तालियों का बेहद सुंदर प्रयोग है। हर बार मुझे हैरान करता है कि संगीत में छोटी सी कल्पना भी कितना बड़ा असर छोड़ती है। आइए सुने इस गीत को।

हम आपके दिल में रहते हैं, ये गीत था इस फिल्म से। अब चलते हैं मेरी पसंद के उस गीत की ओर, जो है फिल्म चमेली से। ये गीत पसंद करने की एक वजह है, वो है इसकी पार्श्व गायिका। मुझे इस गीत की गायिका की आवाज़ हमेशा एक अलहड़ सी मुस्कान लगती है। उनकी गायकी में शरारत भी है, सहजता भी है और भावों को जी लेने की अद्भुत क्षमता भी। यही वजह है कि ये गीत मेरे सबसे पसंदीदा गीतों में शामिल है। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, धुन तैयार की है संदेश शांडेले ने। आवाज किसकी है, सुनिए और पहचानिए।

जी हाँ, यह आवाज थी सुनिधि चौहान की। अब अगले क्रम में है मेरी पसंद का ये गीत। ए आर रहमान के संगीत में मुझे हमेशा कुछ नया सुनाई देता है, और जब उसी संगीत के साथ लता मंगेशकर जैसी स्वर साधिका की आवाज मिल जाए तो गीत सुनना एक अनुभव बन जाता है। ये गीत है फिल्म रंग दे बसंती से। प्रसून जोशी ने इसे लिखकर मन को थोड़ा और संवेदनशील बना दिया है।

जी हाँ श्रोताओं, संगीत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। गुलशन में आज आप सुन रहे हैं मेरी पसंद के नगमे। श्रोताओं, कुछ सुर जब मिलते हैं तो सिर्फ गीत नहीं बनाते, याद में आते हैं। सुफिंदर सिंह और ऋचा शर्मा दोनों की आवाज मुझे बेहद पसंद है, और जब दोनों एक ही गीत में अपनी अपनी शैली के साथ सुनाई दें तो सुनने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। आइए सुने फिल्म कांटे का एक ऐसा ही खूबसूरत गीत। इस फिल्म के गीतकार और संगीतकार हैं आनंदराज आनंद।

श्रोताओं, कुछ गीतों को सुनने का कोई कारण नहीं होता, वे बस हमारे अपने हो जाते हैं। आज का अंतिम गीत भी मेरे लिए कुछ ऐसा ही है। जब कभी समझ नहीं आता कि क्या सुनूं, क्या गुनगुनाऊं, तो अनायास ही यही धुन होठों पर चली आती है। शायद इसलिए कि कुछ गीत दिल में घर बना लेते हैं। आइए सुने कार्यक्रम का अंतिम गीत, मेरी पसंद का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था फिल्म हिना से। इन्हीं मधुर सुरों और खूबसूरत एहसासों के साथ मेरी पसंद में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मेरी पसंद के इन गीतों में आपको भी अपनी किसी याद, किसी मुस्कान या किसी बरसाती दिन की आहट जरूर मिली होगी। फिर मुलाकात होगी कुछ और गीतों और दिल के कुछ और अनमोल एहसासों के साथ। तब तक रूपाली सीठिया को दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलशन में मेरी पसंद की गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए रुसरुसा में लोकगाथा सुलोचना सोसी सेना का दूसरा भाग। गायिका है बेलमती नाग और रेमी।

Pablo.

0: लोक गाथाओं के कार्यक्रम रुसरुसा में अभी आप लोक गाथा सुलोचना सोसी सेना का दूसरा भाग सुन रहे थे। गायिका थी बेलमती नाग और रेमे। इस लोक गाथा का अगला भाग आने वाले रविवार को प्रसारित किया जाएगा।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

शब्द जब दिल की गहराइयों से निकलते हैं तो वे केवल गीत नहीं रहते बल्कि लोगों की यादों का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ गीतकार ऐसे ही होते हैं जिनका नाम भले ही हर किसी की जुबान पर न हो लेकिन उनके लिखे गीत पीढ़ियों तक गुनगुनाए जाते हैं। ऐसे ही

तो श्रोताओं, आज हम कार्यक्रम एक ही कलाकार में याद कर रहे हैं उस गीतकार को जिसने प्रेम, विरह, उम्मीद और जीवन के अनगिनत रंगों को अपनी कलम से सुरों में ढाल दिया। आज की इस संगीत यात्रा के केंद्र में हैं हिंदी फिल्म जगत के प्रतिष्ठित गीतकार असद भोपाली। आपका जन्म मध्य प्रदेश की नवाबी नगरी भोपाल में हुआ। उनका वास्तविक नाम असदुल्ला खान था। बचपन से ही उन्हें उर्दू शायरी और अदब से गहरा लगाव था। मुशायरों में उनकी शायरी को खूब सराहा जाने लगा और धीरे धीरे उनकी पहचान एक सशक्त शायर के रूप में बनने लगी।

ध्यान अपनी ओर खींचा। वे भोपाल से फिल्मी नगरी मुंबई आ गए। असद भोपाली अक्सर मुस्कुराते हुए कहा करते थे कि अगर मेरी जिंदगी में किसी ने सबसे लंबे समय तक मेरा साथ निभाया है तो वो है गरीबी। इस एक वाक्य में उनके संघर्ष का पूरा सफर समाया हुआ था। मुशायरों से लेकर मुंबई की फिल्मी दुनिया तक का रास्ता उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। शायद यही वजह है कि उनके गीतों में जीवन की सच्चाई, भावनाओं की गहराई और इंसानी एहसासों की सादगी इतनी सहजता से उतर आती है। उन्होंने अपने संघर्ष को कभी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसी को अपनी रचनात्मकता की ताकत बना लिया। यही कारण है कि असद भोपाली की लेखनी आज भी श्रोताओं के दिलों को उसी आत्मीयता से छूती है जैसे अपने समय में छुआ करती थी।

साल 1949 से लेकर 1990 तक अपने लगभग 4 दशकों के लंबे फिल्मी सफर में असद भोपाली ने हिंदी सिनेमा को करीब 400 फिल्मों के लिए लगभग 2000 से अधिक गीत दिए। उनकी लेखनी में प्रेम, विरह, उम्मीद और जीवन के अनगिनत रंगों को शब्दों में इस खूबसूरती से पिरोया कि उनके अनेक गीत लोकप्रियता की

ऊंचाइयों तक पहुंचे। आज भी जब रेडियो या टेलीविजन पर असद भोपाली के लिखे गीतों की धुन गूंजती है तो श्रोता बरबस उन्हें गुनगुनाने लगते हैं। उनके लिखे गीत हिंदी फिल्म संगीत की वो अमूल्य धरोहर है जो हर दौर के संगीत प्रेमियों के दिलों में आज भी उसी ताजगी और आत्मीयता के साथ जीवित है। सच तो यह है कि उनके गीत सुनते ही सहज ही असद भोपाली का नाम और उनकी सृजनशील लेखनी स्मृतियों में ताजा हो उठती है।

10 जुलाई 1921 यानी आज ही के दिन मध्य प्रदेश की खूबसूरत सरजमी भोपाल में असद भोपाली ने जन्म लिया, जिसकी कलम ने आगे चलकर हिंदी फिल्म संगीत को अनगिनत यादगार गीतों की सौगात दी। असद भोपाली ने उर्दू, फारसी और अरबी भाषा की प्रारंभिक शिक्षा अपने वालिद से प्राप्त की। इन भाषाओं पर उनकी गहरी पकड़ और शब्दों पर असाधारण अधिकार का अंदाजा उनके गीतों और शायरी से सहज ही लगाया जा सकता है। उनके पास अल्फाज का ऐसा खजाना था जो हर एहसास को बड़ी सादगी और खूबसूरती के साथ अभिव्यक्त कर देता था। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में उनकी क्रांतिकारी सोच और ओजपूर्ण शायरी भी चर्चा का विषय बनी। आजादी की भावना से ओतप्रोत उनकी रचनाओं के कारण उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन कठिन परिस्थितियां भी उनके इरादों को डिगा ना सकी। उनकी शायरी में देश प्रेम, संवेदना और इंसानी जज्बात बराबर दिखाई देते हैं। जब वे तरन्नुम में अपनी गजलें पढ़ते तो महफिल पर जैसे एक खामोशी छा जाती, श्रोता मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते और उनकी आवाज के साथ साथ उनके अल्फाज भी दिलों में गहरी छाप छोड़ जाते।

मुशायरों की दुनिया में असद भोपाली का नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा था, लेकिन उनके दिल में एक और सपना पल रहा था, फिल्मों के लिए गीत लिखने का। वे चाहते थे कि उनकी शायरी केवल महफिलों तक सीमित न रहे, बल्कि रुपहले पर्दे के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचे। उनकी ये आरजू भी अधिक समय तक अधूरी नहीं रही। जल्द ही किस्मत ने उनके लिए फिल्मी दुनिया के दरवाजे खोल दिए और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे गीतकार का सुनहरा सफर जिसके लिखे गीत आज भी संगीत प्रेमियों की यादों में महकते हैं। 5 मई 1949 को उन्होंने भोपाल टॉकीज में एक मुशायरा किया। फजली बंधु और निर्देशक एसएफ हुसैन खास तौर पर उस मुशायरे में मौजूद थे। वाली ने भी अपना कलाम पढ़ा। उस दिन उन्होंने महफिल लूट ली। मुशायरे के एक रोज बाद एसएफ हुसैन ने असद भोपाली को 500 रुपए का एडवांस देकर अपनी फिल्म दुनिया के लिए बतौर गीतकार साइन कर लिया। इस तरह असद भोपाली फिल्मी दुनिया में दाखिल हुए।

फिल्मी दुनिया में असद भोपाली को पहली उल्लेखनीय पहचान निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा की फिल्म अफसाना से मिली। इस फिल्म के गीतों ने श्रोताओं का ध्यान उनकी ओर खींचा और ये एहसास कराया कि हिंदी सिनेमा को एक संवेदनशील और सशक्त गीतकार मिल चुका है। लेकिन पहचान मिल जाने के बावजूद सफलता का सफर अभी भी आसान नहीं था। उस दौर में फिल्म उद्योग में कई प्रतिष्ठित गीतकारों की अपने अपने संगीतकारों के साथ मजबूत जोड़ियां बन चुकी थी। ऐसे माहौल में किसी नए या कम चर्चित गीतकार के लिए अपनी जगह बनाना बेहद कठिन था। स्वाभाविक था कि असद भोपाली को भी अपेक्षित अवसर नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। संघर्ष उनकी जिंदगी का हिस्सा था और धैर्य उनकी सबसे बड़ी पूंजी। मुंबई आने के लगभग 13 वर्ष बाद उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उन्हें संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म पारसमणि के लिए गीत लिखने का अवसर मिला। ये अवसर उनके लिए किसी नई सुबह से कम नहीं था। फिल्म के गीतों ने रिलीज होते ही देश भर में धूम मचा दी। वर्षों बाद भी पारसमणि के गीत उसी आत्मीयता के साथ सुने और गुनगुनाए जाते हैं और यही फिल्म असद भोपाली के फिल्मी सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गई।

पारस मणि की अप्रत्याशित सफलता के बाद असद भोपाली संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ एक बार फिर फिल्म हम सब उस्ताद हैं में जुड़े। इस फिल्म का संगीत भी बेहद लोकप्रिय हुआ। अब असद भोपाली की लेखनी को फिल्म जगत में वो सम्मान मिलने लगा जिसकी वे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने उस दौर के स्थापित संगीतकारों के साथ साथ नई पीढ़ी के संगीतकारों के लिए भी अनेक यादगार गीत लिखे। उनकी कलम हर दौर के संगीत के साथ सहजता से कदम मिलाती रही। समय ने एक बार फिर करवट ली। वर्ष 1989 में उन्होंने सलमान खान की पहली मुख्य भूमिका वाली फिल्म मैंने प्यार किया के लिए गीत लिखने का अवसर उन्हें मिला। फिल्म के गीत और उनके लिखे शब्द रातों रात करोड़ों लोगों की जुबा पर आ गए और असद भोपाली का नाम फिर से पूरे सम्मान के साथ लिया जाने लगा।

अपने लंबे फिल्मी सफर में असद भोपाली ने हजारों गीत लिखे, लेकिन पुरस्कारों ने उन्हें उतना सम्मान नहीं दिया जितने के वे अधिकारी थे। आखिरकार मैंने प्यार किया के लोकप्रिय गीत दिल दीवाना बिन सजना के लिए उन्हें प्रतिष्ठित फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 जुलाई 1921 को भोपाल की धरती पर जन्मे इस संवेदनशील शायर और गीतकार ने 9 जून 1990 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कलाकार भला कभी विदा होते हैं? वे अपनी रचनाओं में, अपनी आवाज में और अपनी यादों में हमेशा जीवित रहते हैं। असद भोपाली भी अमर गीतों के माध्यम से आज हमारे बीच मौजूद हैं और आने वाली पीढ़ियों को अपनी लेखनी का एहसास कराते रहेंगे।

0: एक ही कलाकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था मशहूर गीतकार असत भोपाली पर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:30 हो चुके हैं। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आज प्रस्तुत है बुदरी और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत।
1: बस ने बिचारा करी सरे डा डा डा डा वाली बसुन बिचारा नानी करी सरे ई देवा नानी मारी रे।

0: अदाई गाय के खासे
1: रोए ना नाला डबाजी अदाई गाय के नानी खासे रोए ई देवा नानी मारी रोए।

बाबू मारी रही वो सुनानी आ गई सरो डांडा लाडा वाली वो

0: राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
3: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
4: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी।

0: समाचार शिमला।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को

0: के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.2 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,

मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में आज शाम 5:05 पर। आज शाम 5:10 पर होगा युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हल्बी बोली में। गोविंद राम बघेल और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत आज शाम 6:35 पर। आज शाम 7 बजे कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव आज शाम 7:21 पर। आज रात 8 बजे कार्यक्रम घलर में सुनिएगा सोनादई और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। बच्चों का कार्यक्रम पिलमन का जेगोठ आज रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी यशपाल सिंह ठाकुर की। आज रात 9:15 पर कार्यक्रम नंजर में सुनिएगा कामदेव बघेल से भरत कुमार गंगादित्य की भेंट वार्ता। कार्यक्रम खेल पत्रिका में आज रात 9:30 पर कबड्डी खिलाड़ी नमिता बघेल से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। आज रात 10 बजे फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति होगी पद्मिनी कश्यप की, संयोजक होंगी चंद्रऋषि ठाकुर। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब सुनिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल रात 9:30 पर कार्यक्रम चित्र भारती हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह कल सुबह 8:30 पर और कार्यक्रम बातों बातों में कल सुबह 9 बजे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना कल सुबह 6:05 पर। कल सुबह 6:20 पर सुनिएगा चिंतन। आलेख और स्वर होगा किशोर पारख का। श्री रामचरित मानस का गायन सुबह 6:25

0: इस मिनट पर स्वर होगा मन्ना डे का, संगीत निर्देशक होंगे सतीश भाटिया। कल सुबह 6:35 पर और कल दोपहर 1:05 पर कृषि श्यामी की बेड़ा खड़ा चो गोठ। कार्यक्रम भुलुली में सुबह 6:40 पर सुनिएगा पहतिया पाड़, कलाकार होंगे सोनारू और साथी। कल सुबह 7:05 पर होगा हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। इसके आकर्षण होंगे काव्य सरिता में शकुंतला शेंडे का कविता पाठ, हास्य तरंग में ये जमाना वो जमाना, प्रस्तुति होगी सुरेंद्र रावल की और साथ होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। फिल्म संगीत कल सुबह 9:15 पर। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम आज ही चुसगा में कल सुबह 10 सुनिएगा शशांक कुमार ठाकुर से भरत कुमार गंगादित्य की भेंट वार्ता। कल सुबह 10:30 पर कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुनेंगे राजकिशोर नाग और साथियों के स्वर में छत्तीसगढ़ी लोकगीत। कार्यक्रम एक ही कलाकार कल सुबह 11, कलाकार होंगे सिने अभिनेता कुमार गौरव। कल सुबह 11:30 पर गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता। फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोकरस कल दोपहर 12, प्रस्तुति होगी पद्मिनी कश्यप की, संयोजक चंद्रश्री ठाकुर। कल दोपहर 1:10 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। प्रायोजित कार्यक्रम हमारे मेहमान कल दोपहर 2:30 पर, प्रस्तुति होगी चंद्रऋषि ठाकुर की। कल शाम 5:10 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हिंदी भाषा में। मिठू राम और साथियों के स्वर में नाटगीत कल शाम 6:35 पर। कल शाम 7 कार्यक्रम बस्तर के स्वर। प्रायोजित कार्यक्रम फोन इन किसानवाणी कल शाम 7:30 पर। कल रात 8 कार्यक्रम जोनी उजर में सुनिएगा राजेंद्र कश्यप और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। बच्चों का कार्यक्रम पिलमन का जेगोठ कल रात 8:30 पर, प्रस्तुति होगी शांति नाग की। कल रात 9:15 पर कार्यक्रम आमचोरान आमचो जीवना में फूल सिंह नाग से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में कल रात 10 सुनिएगा गौपतिया पाड़ और सनबन कुंवर पाड़, वादक कलाकार होंगे श्रीधर और साथी। ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में।
1: केंद्रोड़ी समसामयिक माटाकिन कार्यक्रम संगे नन्ना अभिलेश कुमार केंद्रोड़ी नियंत्रण मना इत कार्यक्रम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तरह मिंदे भारत लेकटा बिड़िया देशेम तग्गा नखा नलता स्वास्थ्य सुविधा किन कोंडे नारतोरगे एविकियना दोन बिड़िया चुनौती मत्ता इदे चुनौती ता समाधान मेहकलाय उद्देश्य ते केंद्र सरकार सितंबर 2021 ते आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तद मोदल मुर्कीस मत्ता इदेन उद्देश्य ईसोंटा डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र विकसित किया न मत्ता अदेनगा नागरिक डॉक्टर अस्पताल प्रयोगशाला फार्मेसी तसंगेन बीमा कंपनी उन सुरक्षित और एकीकृत मंच से जुड़े माया वाले इद मिशन तोबेड बढ़िया कड़ी मत्ता आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट अदेन आभा इंजोवेंट के तितुर इद 14 अंक तद उन विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान संख्या मिंदे आभा त माध्यम ते नागरिक लोर तम व स्वास्थ्य संबंध रिकॉर्ड ते ओंडो जागते सुरक्षित तासा परदितोर और तम व सहमति ते देशेम त बेदेवेन एबीडीएम ते जुड़े मत अस्पताल ऐत के डॉक्टर संगे तान के त परदितोर मई 2026 इद मिशन तद नकय उपलब्धि हासिल कित्ता देशम तगा 93 करोड़ ते दीबे आभा खाता बना कित्ता मिंदे और 104 करोड़ ते दीबे डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड इन खाता

0: आकाशवाणी जो विशेष कार्यक्रम ने आज फिर गोट पाठ धरून हाजिर होलू से मैं नूतन भारद्वाज
1: जोहार संगवारी मन मैं आप मंच संगवारी देवकी से क्या और सांग नूतन नंगत तो आसित का है
0: हाँ तो ही कसन आसित
1: मैं बले अच्छा आसे गांव मन ने बेड़ा खड़ा जो बूता बले शुरू होली से ने
0: हाँ बारिश जो पहल फुहार पड़लो ने गांव जो माहौल जी बदलून जावाए ने
1: हाँ
0: और बेड़ा खड़ा मन ने बले अलग रौनक उन जावाए कहाँ नागर चलाते रुआ तो कहाँ रोपाई शुरू हो रुआ
1: हाँ बिहानी बिहानी लोग मन ट्रैक्टर नहाले बैला मन के धरून बेड़ा बाग के जाते रुआ ये असन सावन के अलग ही रूप धरुआ मानतर काय के सांगुआ जुगे पानी वर्षा दिन घरे दुआरे बले निकरुक लाए नी हुए
0: तिचो गोट बले नंगत आए मातर नी निकरले कसन कर से गोटोक दिनचो गोट आए देवकी
1: हाँ?
0: मैं गोटोक कामले बाहर जाऊन रले और हुनी दिने फिर पानी मार दीता हुता अटकुन रहे
1: फिर कसन कर लीस
0: कसन फिर करवाए था दोस्त मन के वे कामे दे बस गोटोक हाँ? फोन घुमातरा से और दोस्त मन हाजिर
1: सत्य बल्लीस दोस्त मन असन रुआत की मुश्किल समय आरो हो चाहे सुख दुख रहो हमेशा पूरे रुआत
0: सत्य बलिस देव की और सत्य गोट तो ये बलियाई की जीवना चो सबले सुंदर याद मने अगर कोचे सबले बड़े योगदान रुआ तो हुना है दोस्त चो
1: हाँ
0: देव की
1: हाँ
0: तुचो काजे दोस्ती चो मतलब का है
1: मोचो काजे तो दोस्ती असन रिश्ता है जोन खून चो रिश्ता ले नी हु जुड़वाए बल्कि विश्वास अपनापन और दिल चो जुड़ाव के जोड़वाए दोस्त होना है जोन आम के हरिक दखुन बाती आपन बले हरिक हुआ और मुश्किल समय ने बले आमचो संगे उबुन रुआ
0: खूबे अच्छा गोट सांगलिस तो इतो और अक्सर बले बलुआत की परिवार आम के जन्म ले मिलवाए मानता है दोस्त आमी खुद चुनो आम
1: हाँ।
0: यही काजे बले दोस्ती चो रिश्ता खूबे खास रुआ ने
1: हाँ। नूतन तू ये महसूस कर सीत कि केबे केबे आमी आमी आमचो गोट के घर लोग लगे नी बोलू सकू आम
0: हाँ।
1: मानतर हुनी गोट के बिना झिझक चो बोलून दी वाम
0: हाँ देवकी काय काज बल्लो ने दोस्त आम के बिना जज के आम के सुनवात
1: हाँ।
0: हुन आम चो कमी संगे आम के अपनावात और जरूरत पड़लो ने आम चो गलती मन के बली ईमानदारी ले ध्यान दीवात
1: हाँ। ये ची तो यही तो है सच्ची दोस्ती आय नूतन जोन दोस्त तू चाहे आमचो तारीफ करो हुन अच्छा साथी हो सके दे मानतर जोन सम्या ने इलो ने सही सलाह देओ हुनी सच्चा मित्र रुआ
0: नंगत बलिस देव की
1: हाँ।
0: और आजकल जो तेज रफ्तार भर लो जीवना ने लोग मन सोशल मीडिया ने हजारों दोस्त तो बनाऊं दी बात
1: हाँ।
0: मात्र असली दोस्त हुनी आए जो जरत पड़ लो ने समिया ने गोटक गोटक बल फोन रहो गोटक बल फोन करो तो एडंट की हाजिर हुआ
1: सत्य बल्लीस दोस्ती तू चाहे संगे भूल तो चो नाव नु आए बल्कि एक दूसर चो सम्मान करतोर भरोसा बनाउन संगातोर और हर परिस्थिति संगे रतो बीती नाय नूतन पीला बेरा चो दोस्ती और बड़े बेरा चो दोस्ती ने तू के काय अंतर लागे से
0: पीला बेरा चो दोस्ती तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव नहीं रहे होता ना स्वार्थ रहे ना दिखावा और बढ़ते गेले ने तो जिम्मेदारी बल बढ़ते जावा आय कसन
1: हाँ।
0: मातर दोस्ती मजबूत रहो तो समया और दूरी बले कमजोर नहीं कर सके दोस्ती के
1: सत्य बल्लीस कई दोस्त असन रुआत जेचो संगे महीना तक गोट बात नी होलेन बले मांतर जेबे बले गोट बात हुआ है असन लागुआ है कालीची भेट घाट होन रलु
0: हाँ कालीची भेट घाट होलो असन लागुआ नहीं
1: हाँ।
0: तो संगवारी मन दोस्ती चो गोटो और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक सहारा जब आमी तनाव ने रुआम या फिर कोनी परेशानी ने रुआम या आंचो मन उदास रुआ तब सच्चा दोस्त जो दुईठन गोट बले आम के ऊर्जा दिन जावा कसन देव की
1: हाँ नंगत बल्लीस तु आजी काली मानसिक तनाव बले बढ़ुआ असन समय मन ने परिवार संग संगे अच्छा मित्र बले आमचो जीवना ने सकारात्मक भूमिका निभावा
0: और हुनमन आम के निराशा ले बाहर बले करते चो प्रेरणा दी बात मातर गोट गोट और बले जरूरी है कि हर संगे रतो वित्ती दोस्त दोस्त नहीं रुआ आम के अच्छा मित्र चो चुनाव सोचुन समझुन कर तरह से
1: हाँ अच्छा दोस्त आम के आगे बढ़तो काजे प्रेरित करुआत अच्छा आदत सिखावात हुनी गलत संगति आम के गलत बाट बाटे जाऊकलाई नी दीवात
0: और गोटोक गोड बले आए कि जसन संगत उसन रंगत
1: हाँ।
0: सच्चा दोस्त तो हु नए जन तुझे सफलता ने बले हरिखो
1: दोस्ती तुझा पाव तो चो नहीं बल्कि निभातो चो रिश्ता है ये थाने विश्वास ईमानदारी समया और एक दूसर चो प्रति सम

0: मान खूबे जरूरी आए। छोटे छोटे फहमी के मोहब्बत ले दूर कर तोर, भले दोस्ती के मजबूत बनावाए।
1: सत्य बलदीस देव की वो संगवारी मन, अगर आप मन चो जीवना ने भले असन कोनी दोस्त आसोत जो उन कठिन समय ने भले आप मन चो साथ दिला से, तो आप मन खूबे खुश नसीब आहस। और दोस्ती जो दोस्ती हुन पूंजी आए जो समय संगी और बली कीमती होती जावाए।
0: तो संगवारी मन, ये तो आमचो रली आजीचो सामयिक चर्चा कि दोस्त चो आमचो जीवना ने कितरो महत्व आसे। कार्यक्रम ने आगे बढ़तो पहली गीत सुनो,
1: पहिल सुनो दुखु जहाला के।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ।

0: इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: ये तो रली जहाला इदाए कार्यक्रम ने आगे बढ़ूं दखू और दखू कि आप मन काजे और काय काय आनलू से सामयिक चर्चा तो होली ये चलावा इदाए दखू कि काय आनलू से आप मन काजे आनलू से ज्ञान ध्यान चो गोट मार्गदर्शन और शीर्षक गीत आज चो शीर्षक है नैना। तो नैना ले संबंधित आज ही आप मन के सुनाऊ दिए पहल गीत फिल्म सावरिया ले जंथाने आप लोग स्वर दिला से ईशान गीतकारात समीर अंजान और संगीत ले सजाला से मोंटी शर्मा। तो एक बार सुनो दखू

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
5: तो संगवारी मन, ए भी तुम्ही सुनते रलास फिल्म सावरियाली। ए गीत काजे सान के फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर चो अवार्ड बले मिलुन रहे। ए गीत ने रणबीर कपूर और सोनम कपूर मुख्य कलाकार रला और ए गीत रणबीर कपूर चो डेब्यूट फिल्म सावरिया चो एक सबले यादगार रोमांटिक फिल्म और गीत बनुन रहे।
6: तो संगवारी मैंने दा अगला गीत सुना दे आप मन के फिल्म आर्टिकल 15 ले। इथानी स्वर दिला से यशर देसाई और आकांक्षा शर्मा, गीतकार रश्मि विराग और संगीतकार पीयूष शंकर। तो सुनो ये गीत के।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: तो संगवारी मन, ये गीत आर्टिकल 15 ले रली। ये गीत ने आयुष्मान खुराना और ईशा तलवार मुख्य भूमिका निभावन रला। ये फिल्म 2019 ने सिनेमा घर मन ने रिलीज होन रली। तो संगवारी मन, एदाय गीत गोविंद के गंगी थेवान भाती ज्ञान ध्यान चो गोट बात के बले जानुआ।
3: हाँ देव की। तो संगवारी मन, आम चो भारत देश चो सबले लंबा राजमार्ग NH 44 है, जो श्रीनगर ले कन्याकुमारी तक आसे, और ये लगभग 3,745 किलोमीटर लंबा आसे। ये 11 राज्य मन और 30 ले अधिक प्रमुख शहर मन के जोड़ू है, जो थाने ये प्रमुख आसे दिल्ली, आगरा, नागपुर, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसन शहर मन शामिल आसोत। एक पहले NH 7 चो नाम लेवले जानते रहोत। ये मार्ग भारत चो उत्तर दक्षिण गलियारे चो प्रमुख हिस्सा है।
2: हाँ, भारत चो सबले लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन आए, जो लगभग 1,507 मीटर आसे, जेचो कारण एचो नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दर्ज बला से।
3: और भारत जो सबले बड़े किला क्षेत्रफल जो आधार ने चित्तौड़गढ़ किला है। ये राजस्थान जो चित्तौड़गढ़ ने 180 मीटर ऊंचा पहाड़ी ने स्थिता से और लगभग 700 एकड़ जमीन ने फैली से।
2: भारत जो सबले बड़े राज्य क्षेत्रफल जो आधार

0: संगवारी मन के गीत बल सुना दो फिर।
1: हाँ तो संगवारी मन के अमी सिरसा गीत चो अगला गीत सुनाऊं दे फिल्म अंधा धुन ले एक स्वर दिला से अमित त्रिवेदी और चो गीतकारात जयदीप सहानी और संगीतकारात अमित त्रिवेदी। तो यह सुनो ये गीत के।

0: साथ ही अभी वर्तमान में आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय बस्तर में पदस्थ हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है निलेश जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आज हम बात करने वाले हैं भर्ती प्रक्रियाओं की, और ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो नए छात्र छात्राएं हैं जो 12वीं पास किए हैं उन्हें किस तरह से अपने करियर का चुनाव करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो छात्र छात्राएं अभी 12वीं उत्तीर्ण किए हैं और अपने लिए नए नए कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं और ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा महाविद्यालय उनके लिए बेस्ट होगा या फिर कौन सा विषय उनके लिए बेस्ट होगा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, सबसे पहले तो जो क्लास 12th पास किए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ बोर्ड के हों या फिर CBSE बोर्ड के हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं कि अब उनके जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है और वो एक टीनेज से अब यूथ के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो कॉलेज की जो लाइफ होती है, महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की जो लाइफ होती है, वो बहुत ही पॉजिटिव लाइफ होती है, क्रिएटिव लाइफ होती है, लाइफ को एक अलग डायरेक्शन देने की। तो आप सभी का बहुत उसमें स्वागत है, आइए आप लोग। और हम यहाँ पे जो काम करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं कॉलेज लाइफ में, वो हमारे पूरे जीवन काल को परिभाषित करता है या डिफाइन करता है कहीं ना कहीं। तो बेस हम यहीं पे शुरू करते हैं। जी,
0: तो जैसे इन्हें महाविद्यालय का चुनाव करना है तो उसका चुनाव किस तरह से करें?
1: देखिए, सबसे पहले तो ये जो क्लास 12th से हम स्कूल से जब निकलते हैं और एक कॉलेज के बारे में सोचते हैं, महाविद्यालय के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई हमने वैसे ही क्लास 12th में या तो कॉमर्स लिया हुआ है या तो साइंस लिया हुआ है, तो हमारा इंटरेस्ट किस में है। सबसे पहले अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि मेरी स्ट्रेंथ किस में है, मेरी जो है वीकनेस किस में है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी वाले कौन कौन से एरियाज हो सकते हैं और कौन से एरिया मेरे लिए थ्रेट के हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास 12th में साइंस में पढ़ा हुआ विद्यार्थी जिसको लगता था कि भाई क्लास 12th साइंस तो पास कर ली पर केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट था वो बड़ा कठिन था, उसमें मैंने किसी तरह से पास तो कर लिया लेकिन अब आगे चाहे इंजीनियरिंग में जाऊं या फिर मैं मैथमेटिक्स या किसी भी एरिया में आगे जाता हूं, तो केमिस्ट्री साइंस BSc में करती हूँ तो वो बड़ा कठिन रहेगा। तो सबसे पहले ये देखना कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, मुझे क्या अच्छा लगता है, जिसको मैं आगे और उसमें अपना भविष्य बनाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, वो फोकस करने के बाद फिर ये

0: आपको जहां आपके घर के आसपास मिल जाए एडमिशन, क्योंकि एडमिशन का एक प्रक्रिया होती है जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है और फिर मेरिट लिस्ट के आधार पे एडमिशन होता है। तो उस प्रक्रिया को पार करने के बाद आपका जहां मेरिट लिस्ट में, फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में नाम आता है, वहां एडमिशन लें और वहां आप आगे का पढ़ाई कर सकते हैं।
1: जी, कुछ महाविद्यालयों में काउंसलिंग की भी प्रक्रिया होती है,
0: जी
1: तो आपका जो महाविद्यालय है उसके लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या है और किन-किन चरणों में होती है?
0: देखिए, काउंसलिंग का एक्चुअली ये होता है कि जब स्टूडेंट, एक तो एडमिशन किस में लेना है अप्लाई करने से पहले कि मैं किस एरिया में जाऊं, तो एक वहां पे काउंसलिंग का आ जाता है। तो हमारे कॉलेज या किसी भी कॉलेज में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में कि वहां मार्गदर्शन के लिए विद्यार्थियों के लिए जो हमारे प्राध्यापक गण हैं, वरिष्ठ हैं, तो वो लोग मार्गदर्शन आपको बताएंगे जब भी कोई विद्यार्थी जाएगा कि सर या मैडम हम कौन से एरिया में जाएं। तो एक तो एडमिशन के पहले की है, दूसरा जब एडमिशन प्रक्रिया में जब हम शामिल होते हैं तो हमें क्या होता है कि संबद्ध जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा करके, अब जैसे हमारे बस्तर विश्वविद्यालय की है तो वहां पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। कॉलेज के लिए फिर मेरिट चॉइस देनी पड़ती है कि हमारा सबसे पहला चॉइस इस कॉलेज में हो, यहाँ हो, फिर दूसरा ऐसा। तो हमको कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद कॉलेज में फिर मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है, उनके नोटिस बोर्ड पे बकायदा चिपकाया जाता है उसको। नोटिस बोर्ड पे आप जाके देखेंगे आपका नाम आया हुआ है, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कक्षा 12वीं के मार्कशीट, ओरिजिनल TC, फीस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वो लेकर के वहां जाते हैं कॉलेज में, और जो भी कॉलेज की फीस है शासकीय वो आप देते हैं। तो वहाँ काउंसलिंग के माध्यम से फिर आपका एडमिशन हो करके और फिर बता दिया जाता है कि कॉलेज की क्लासेस अब जो है शुरू होने वाली हैं।
1: जी, आज का जो दौर है वो सूचना और प्रौद्योगिकी का दौर है और जो तकनीकी है वो बहुत ज्यादा विकास भी कर चुका है, तो क्या अभी भी विद्यार्थियों को पैदल चलकर महाविद्यालय आकर नोटिस बोर्ड में अपना नाम देखने की आवश्यकता है या फिर कोई और दूसरा माध्यम है जैसे फोन के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से उन तक सूचना पहुंचा दी
0: जी
1: जाती है?
0: देखिए, ये बहुत आपने सही कहा। कई बार क्या मोस्टली यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के अपनी लिस्ट वो वेबसाइट पे ही हर कॉलेज का ऑलमोस्ट बना हुआ है, तो उनके वेबसाइट पे भी वो डाल देते हैं कि आपका देखिए ये लिस्ट में ये लोगों का है, तो स्टूडेंट वहीं अपने घर बैठे अपने मोबाइल से ही देख सकते हैं। कई बार उनको फोन करके बताया जाता है जो दूर के विद्यार्थी हैं, दूर दराज के एरिया से, कि भाई आपका आ गया है और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसेस जो है वो इस तारीख को खत्म हो जाएगी, तो इसके पहले ही आप आ करके अपना जो है एडमिशन ले लीजिए। तो फोन कॉल भी किया जाता है बिल्कुल कॉलेजेस के द्वारा। इसके अलावा आप देखेंगे कि नोटिस बोर्ड पे भी लगाया जाता है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी अगल बगल रहते हैं तो उनको रहता है कि भाई हम कॉलेज जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये होती है कि जब क्लास 12th कोई भी विद्यार्थी पास आउट करता है तो उसको लगता है कि हमें कॉलेज जाना है, एक एनर्जी, एक पॉजिटिव एक एनर्जी रहती है, एक इंथुजियज्म रहता है कि हम कॉलेज जाएंगे, तो वो अलग अलग मौकों पर इस तरह से चाहते हैं कि वो कॉलेज आए, तो इसीलिए वहां पे एक ज्यादा एक इंटरेस्ट देखने को मिलता है। और हम लोग भी अगर अपने कॉलेज लाइफ के बारे में याद करें तो हमें भी कॉलेज जाना बड़ा अच्छा लगता था कि नोटिस पे हमारा नाम लगा हुआ हो और हम देखें, तो वो इंटरेस्ट बच्चों में, विद्यार्थियों में रहता है और हमेशा रहना भी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी लाइफ को आसान बनाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें कितना करना है, कैसे करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडा गांव का कोई विद्यार्थी है, अब उसको तो आना यहाँ संभव नहीं है, तो उसके लिए तो यही होगा कि उसको हम लोग बता देते हैं कई बार कि भाई आपका लिस्ट में नाम आ गया है, ये आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपके आ जाइए, इस तारीख तक आप आ जाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है फॉलो की जाती है एडमिशन में।
1: जी, और क्योंकि हम अभी जगदलपुर में हैं और बस्तर विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, तो जब भी कोई विद्यार्थी अपने लिए कोई महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय चुनता है तो इन बातों का ध्यान रखता है कि वहां पे किस किस तरह की फैसिलिटीज हैं।
0: जी
1: तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बस्तर विश्वविद्यालय में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। क्या वहां पे छात्रावास की फैसिलिटी है जो विद्यार्थी बाहर से आते हैं उनके लिए? क्या वहां पे पुस्तकालय हैं? मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं? फैकल्टीज कैसी हैं? आप इन चीजों के बारे में हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उन्हें बताएं कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं बस्तर यूनिवर्सिटी
0: देखिए,
1: में।
0: शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जो बस्तर का एकमात्र विश्वविद्यालय है इस संभाग में, तो वहां के बारे में जो सामान्य एक जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि विश्वविद्यालय की तरफ से मुझे कुछ कहना उचित नहीं होगा, पर जो सामान्य सुविधाएं उनकी वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे दी गई हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहला आपने कहा कि ये हॉस्टल के बारे में, छात्रावास के बारे में, तो जी हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, हमारे इनफैक्ट महाविद्यालय में भी छात्रावास की बिल्कुल बहुत बढ़िया से व्यवस्था है। तो जो

0: विद्यार्थी, जैसे मैंने कहा कि दंतेवाड़ा, बीजापुर या छत्तीसगढ़ राज्य के जहां भी अलग अलग कोनों से आते हैं, जैसे विश्वविद्यालय में बीएड का कोर्स चलता है और बीएड में आप देखें काउंसलिंग के माध्यम से पूरे राज्य से लोग आते हैं या और भी कोर्सेस में आते हैं, तो छात्रावास की बिल्कुल समुचित व्यवस्था है। जहां तक आपने बात की प्रोफेसर्स की, तो बस्तर विश्वविद्यालय में पिछले विगत वर्षों में जो है फुल टाइम प्रोफेसर्स, नियमित प्रोफेसर्स की भर्ती चल रही है, हुई है, आगे भी होती रहेगी। और तमाम जो सुविधाएं हैं जो एक विश्वविद्यालय में होनी चाहिए
1: मेडिकल
0: या
1: फैसिलिटी,
0: महाविद्यालय में, लाइब्रेरी की बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे बस्तर संभाग के एक शहीद मनकर्मा विश्वविद्यालय में। हमारे कॉलेज में भी अगर मैं बात करूं तो वहां भी आप आएंगे तो देखेंगे विद्यार्थियों के लिए साइंस का, कॉमर्स का जो है आप देखेंगे पुस्तकें जो है वो बिल्कुल अवेलेबल है और बकायदा उनको दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये सारी आजकल एक बेसिक व्यवस्थाएं हो गई हैं। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ ये होती है कि विद्यार्थी उन सुविधाओं का उपयोग करते हुए अपने जीवन का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे यहाँ से यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, कैसे यहाँ से छत्तीसगढ़ पीएससी क्वालिफाई करते हैं, बैंक पीओ में कैसे जाते हैं, साइंटिस्ट वाले अलग अलग जो पोजिशंस होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हमें आगे और अधिक माहौल बनाने और उनको और अधिक जो है प्रेरित प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करना है।
1: जी जैसा कि आपने बताया कि कॉलेज के बाद जो विद्यार्थी हैं उन्हें अपना करियर भी बनाना रहता है, करियर
0: जी
1: चुनना रहता है विभिन्न क्षेत्रों में, तो क्या उन्हें गाइडेंस की या फिर मार्गदर्शन या किसी तरह की काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग जिसे हम बोलते हैं, उस तरह की भी सुविधा या फिर उस तरह की
0: जी
1: फैसिलिटी आपके महाविद्यालय में है?
0: जी देखिए हम लोग तो साल भर में अलग अलग समयों पर सेमिनार करवाते हैं। अब उसमें हम लोग गाइडेंस भी देते हैं, इंडस्ट्री के अलग अलग एक्सपर्ट्स जो हैं उनको इनवाइट करते हैं, वो आते हैं और वो वहाँ पे फिर बच्चों को गाइडेंस देते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को हम लोग वहाँ बुलाते हैं हमारे महाविद्यालय में। आपको मैं बताऊँ, एक विद्यार्थी, एक लड़की है हमारे यहाँ की, वो इंडियन नेवी में सेलेक्ट हुई है और लास्ट ईयर जब वो आई, वो अपना सेलर वाला वो ड्रेस पहन करके, सारे स्टूडेंट्स में काफी इंटरेस्ट था, एक जागरूकता की भाई देखिए कितना अच्छा, यही हमारी स्टूडेंट थी और वो हो गई है। उसको हमने वहाँ कॉलेज में अपने सारे विद्यार्थियों को वहाँ बुलाया, उनको सम्मान दिया, न्यूज़पेपर वगैरह में भी चीज़ें कवर की थी मीडिया के हमारे जो भाई बहन हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि विद्यार्थी कॉलेज में आने के बाद उनका कैरेक्टर यानी चरित्र निर्माण हो, वो एक अच्छे नागरिक बन सके और लाइफ में वो जो चाहते हैं, जो उनकी इच्छा है, उस दिशा में काम करें, तो वैसा एक माहौल हमें और ज़्यादा अच्छे से, हालांकि अभी बन रहा है ऐसा नहीं मैं कहूंगा, लेकिन हमें और ज्यादा उस दिशा में फोकस करने की जरूरत है।
1: जी, तो आपने सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है उसके बारे में भी बात की थी। सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है उसके आने के बाद आपको क्या-क्या बदलाव नजर आए हैं?
0: देखिए बदलाव में तो ऐसा है कि पहले साल भर में सिर्फ एक बार परीक्षा होती थी मार्च अप्रैल में। अब विद्यार्थी हम लोग भी उसी प्रक्रिया से होके हम लोग निकले हैं, तो साल में एक ही बार टेंशन रहता था, टेंशन या थोड़ा झिझक रहती थी कि भाई वार्षिक परीक्षा आने वाली है। अब क्या हो गया है, अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, अब साल भर जो है वो हमको फोकस करना होगा कि भाई ठीक है अब हमको पढ़ना है। थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ी है, थोड़ा सा मैं कहूँ तो ज्यादा ही बढ़ी है कि हमको असाइनमेंट भी करना है। पहले असाइनमेंट वगैरह नहीं हुआ करता था एनुअल सिस्टम में, असाइनमेंट करना है, क्लास में पार्टिसिपेशन रहना चाहिए आपका, आपको दो टेस्ट होते हैं क्लास टेस्ट, तो दो टेस्ट आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट पे होगा, उसमें से जो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा दोनों टेस्ट में से, एक टेस्ट मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो गई या किसी भी कारण वो नहीं दे पाया, तो दोनों टेस्ट में से जो बेस्ट होगा वो मार्क्स आपके फाइनल उसमें जुड़ेगा। तो जो ओवरऑल प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन है, मूल्यांकन की जो पद्धति है, उसमें काफी एक सुधार हुआ है और विद्यार्थियों का अब पूरे साल भर एक जो इंटरेस्ट है और एक जो जागरूकता है वो काफी बढ़ी हुई है। उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से कोर्सेस वहाँ चलाए जाते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिया हुआ है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेस हैं अलग अलग जो है, और इसकी बकायदा उनको च्वाइस दी जाती है कि ये सब्जेक्ट्स हैं इसमें से आप जो है ले लीजिए। साइंस वालों के लिए कॉमर्स इंटरडिसिप्लिनरी टाइप का हो गया कि साइंस वाले भी वो सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स वालों में से कॉमर्स वाले फिर अलग उसमें से, तो इस तरह से चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ी है। अब इसका कितना क्या

0: प्रेजेंटेशंस होते हैं, उसके बाद फिर उसका जो है इवेल्युएशन होता है, और इसमें टाइम लगता है, थोड़ा एक प्रोसेस होता है। तो इसके रिजल्ट्स फिर बाद में समझ में आते हैं कि कितना इसमें अच्छा कार्य हुआ है, कितना और ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
1: जी, तो डॉक्टर नीलेश तिवारी जी, आपसे तो हमने बहुत सारी बातें की हैं और बहुत सारी जानकारियां आपने हमारे श्रोताओं को दी है,
0: जी
1: लेकिन फिर भी कोई बात रह गई हो और आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहते हो तो कहें।
0: मुझे लगता है कि विद्यार्थियों का, जिन लोगों का अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर से अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को एक अपने अंदर में एक एनर्जी के साथ में आप आएं और एक्सप्लोर करें। आप अलग अलग जो भी क्षेत्र हो सकते हैं जहाँ पे आपका करियर, आपको लगता है आपका भविष्य बन सकता है, उसको थोड़ा खोजने की ज़रूरत है। अपने आप को उस तपस्या में एकदम लगा देने की ज़रूरत है कि नहीं भाई, मैं तो एकदम हार्ड वर्क करूँगा, स्मार्ट वर्क करूँगा। टेक्नोलॉजी आजकल हो गई है, AI आ गया है, इन सब का यूज़ करके मैं अपने लिए एक अपना एक जीवन में एक मुकाम हासिल करूँगा, मैं एक रास्ता बनाऊँगा या बनाऊँगी। तो वैसी एक सकारात्मक सोच के साथ हमारे जो छोटे युवा भाई बहन आने वाले हैं कॉलेज सिस्टम में, महाविद्यालय में, यूथ को, मैं उनको यही शुभकामनाएं दूंगा। थैंक यू,
1: जी, आपने अपना समय दिया और इतनी सारी बातें की हमसे, इसके लिए आपका धन्यवाद।
0: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो संगवारी मन, एवे आप मन सुनलास गोठो को प्रेरणादायक मार्गदर्शन और उम्मीद करूं से कि हुंथाने साझा कर लो वितिन विचार आप मन जो जीवना ने सकारात्मक ऊर्जा और नया सोचो संचार जरूर करे दे। तो इधर फिर समय आए गीत गोविंचो, तो सुनुआ गोटो गीत फिल्म माय नेम इज खान ले। ये गीत के आप लो आवाज ने सजाला से शफकत अमानत अली, और ये गीत जो बोल लिखला से निरंजन अयंगर, और संगीत दिला से शंकर एहसान लॉय। तो संगवारी में सुनो देखो ये गीत के। अच्छा

आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी हल्बी बोली में। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही समय में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले चरण में इसके अधिकतम उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने

0: संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली का कवच कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि छत्तीसगढ़ के बलोद जिले ने पिछले एक वर्ष में वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 285,000 जल संरक्षण और पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कैच द रेन अभियान की गति बनाए रखने का आह्वान किया था। इसके बाद बलोद जिला जन भागीदारी के दूसरे चरण के अंतर्गत सामुदायिक जल संरक्षण का एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभरा है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर भागों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स में एकमात्र टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3 विकेट पर 122 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही समय में आप छत्तीसगढ़ी और संस्कृत में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। पहले सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। रेलवे हा छत्तीसगढ़ में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उपराहा प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाए बर 175 करोड़ रूपया करिस मंजूर। प्रदेश सरकार हा एसओ खरीफ सीजन बर 48,69,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी के लक्ष्य रखे है। अब तक 3,62,000 क्विंटल बीज बांटे गीस। और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिला के जयदीप साहू जीतीस दूसरैया स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार ले। रेलवे हा रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उपराहा रखरखाव केंद्र बनाए बर 175 करोड़ रूपया मंजूर करे है। रेल मंत्रालय के अनुसार ये परियोजना भारतीय रेल के विद्युत इंजन बेड़े के तेजी ले होवत विस्तार और जम्मो नेटवर्क में माल ढुलाई और यात्री परिचालन की बढ़ोतरी ल चेत में राखत बुनियादी ढांचा ल बेहतर बनाए के प्रयास के हिस्सा आए। उपराहा प्राथमिक केंद्र ले रेलवे हा मौजूदा बुनियादी ढांचा के बेहतर इस्तेमाल कर पाही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हकीन है कि सरकार हा E85 ईंधन लाने की योजना बनावत है। जौन मानक E20 पेट्रोल ले करीबन 20 रूपया सस्ता होही। E85 सिर्फ ओ गाड़ी मन बर उपलब्ध होही जौन विशेष रूप ले ए ईंधन के उपयोग बर डिजाइन करे गए है। उमन यहू कही कि इथेनॉल मिले पेट्रोल ले इंजन ला नुकसान और गाड़ी ऊपर उल्टा प्रभाव पड़े के आशंका लघलो खारिज करीन। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा जगदलपुर के डिमरापाल के कॉन्टिनेंटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बस्तर संभाग के पहली और छत्तीसगढ़ के दूसरैया अत्याधुनिक कैथ लैब के लोकार्पण करीन। इस सुविधा के शुरू होए ले हृदय रोगी मल्ला एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी और आने आधुनिक इलाज अब स्थानीय स्तर में होही। ये दौरान स्वास्थ्य मंत्री है किहीन कि अब मरीज मल्ला इलाज बर बड़े शहर ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ी संगे संग उमल्ला बेरामा इलाज घलो मिल सकी। प्रदेश में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलैया अनुदान राशि ला 50,000 ले बढ़ा के 1,00,000 रूपया करे जाही। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में काली मंत्रालय में हुए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के पहली बैठक में ये निर्णय लेगी। बैठक में गिग वर्कर्स चरवाहा और असंगठित कर्मचारी मन के मेधावी लयिका मन बर नवा कल्याणकारी योजना तैयार करे ऊपर घलो सहमति बनी। श्रम मंत्री पंजीकृत श्रमिक मन के EKYC और आधार पंजीयन कराय के संग पात्र हितग्राही मन तक योजना के लाभ पहुंचाए के निर्देश दें हैं। प्रदेश में ये बेरा खेती किसानी के काम हा जोर धर ले है। अब तक 20,14,000 हेक्टेयर ले ज्यादा क्षेत्र में धान मक्का कोदो कुटकी राहेर मूंग के संगे संग आने फसल की बोनी करे जा चुके है जौन लक्ष्य के 41% आए। बता दें कि एसओ खरीफ सीजन में राज्य सरकार हा 48,69,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी के लक्ष्य रखे है। एति कृषि विभाग के अधिकारी मन बतायन कि एसओ खरीफ फसल बर प्रदेश में 4,95,000 क्विंटल प्रमाणित बीज बांटे के लक्ष्य रखे गए है। उन्हें अब तक 3,62,000 क्विंटल बीज किसान मल्ला बांटे गीस है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत कबीरधाम जिला के बोड़ला इलाका में बनैया सड़क के राज्य स्तरीय जांच करेगी। एक हर बाद निर्माण कार्य की निगरानी और गुणवत्ता में लापरवाही पा जाए में सहायक और उप सहायक अभियंता ला निलंबित करे के निर्देश देगी। संगे संग क्षतिग्रस्त सड़क के हिस्सा ला दोबारा बनाए और ठेकेदार ला ब्लैक लिस्ट करे बर घलो कहेगी से। सुनैया मल्ला बता दान कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में ये दारी छत्तीसगढ़ के महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ले गए भेंट वार्ता के प्रसारण करे जाही। एकर प्रसारण काली 11 जुलाई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे करे जाही। इला छत्तीसगढ़ के जम्मू आकाशवाणी केंद्र एके संग्रह रिले कर ही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
0: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगू बाढ़थन बांचे समाचार कोती। रायपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के 17 नवा प्रकोष्ठ पदाधिकारी मन के पहली कार्यशाला आयोजित करेगी। जी हां, प्रकोष्ठ के भूमिका और दायित्व ऊपर गोट बात हुई। ये कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संग भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन के तीनों प्रदेश महामंत्री, सबो 17 प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक और सह संयोजक के अलावा अब्बड़ जन कार्यकर्ता मन मौजूद रहीन। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ह प्राकृतिक आपदा ले होवैया मौत ऊपर मुआवजा दे बर राज्य सरकार के नीति ऊपर अहम फैसला सुनाए है। न्यायाधीश संजय के अग्रवाल के एकल पीठ है स्पष्ट कीन है कि आंधी तूफान, भारी वर्षा और हवा गरेर के बेरा पेड़ ले गिर के होए मौत है घलो प्राकृतिक आपदा के श्रेणी में आते। कोर्ट है राजस्व विभाग डहर ले राजनांदगांव जिला के मोहला इलाका में एक मनखे के मौत मामला में मुआवजा दे ले इनकार करे के आदेश ला निरस्त करत ओकर बेटा ला 30 दिन के भीतर 4,00,000 रूपया मुआवजा के निर्देश दे से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काली रायपुर जिला के समोदा में 128 करोड़ रूपया ले ज्यादा के आने आने विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन करी। ओमन रीवा गांव में करीबन 4 करोड़ रूपया के लागत ले स्टाफ डैम बनाए के संग कतकोन विकास कार्य के घोषणा करी। ये बेरा मुख्यमंत्री है बतायन कि राज्य सरकार है सुशासन विकास और जन कल्याणकारी योजना ला प्राथमिकता देवत प्रदेश के सबो इलाका में बुनियादी सुविधा के विस्तार करत है। दक्षिण अफ्रीका में 4-12 जुलाई तक आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिला के जयदीप साहू है व्यक्तिगत रूप ले दूसरैया स्वर्ण पदक हासिल करी से। जयदीप है दूसरैया पारी के क्लासिक प्रतियोगिता के तहत 66 किलो वर्ग में जोरदार प्रदर्शन करत स्वर्ण पदक अपन नाव करी। एखर ले पहली जयदीप है यही प्रतियोगिता के पहली चरण में बीते 6 जुलाई के इक्विप्ड कैटेगरी में पहली स्वर्ण पदक जीते रही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कीन है कि रेडियो कार्यक्रम दीदी के गोट प्रदेश के माई लोगन मन पर प्रेरणा के माध्यम बन गए है। काली रायपुर में आयोजित दीदी के गोट वार्षिक उत्सव में उमन दीदी के गोट और कॉफी टेबल बुक, बिहानवाणी त्रैमासिक पत्रिका और मोर गांव मोर पानी पुस्तक के विमोचन करी। ये बेरा मुख्यमंत्री है सफलता की कहानी साझा करैया माई लोगन मन ला सम्मानित करत कीन कि कार्यक्रम के एक बछर में प्रसारित 12 एपिसोड ले माई लोगन मन ला आत्मनिर्भर नवाचार और स्वरोजगार के प्रेरक जानकारी मिली से। अब थोरकुन समाचार सारमा। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग डहर ले सूबेदार, उपनिरीक्षक, संवर्ग और प्लाटून कमांडर के भर्ती पर प्रारंभिक परीक्षा 12 जुलाई के 22 केंद्र में आयोजित करे जाही। परीक्षा बिहनिया 10 बजे ले मझनिया 12 बजे तक चलही। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के पहली बछर में प्रवेश पर ऑनलाइन काउंसिलिंग की प्रक्रिया आज ले शुरू होगी से। इच्छुक अभ्यर्थी मन 20 जुलाई तक पंजीयन कर सकत हैं। कोंडागांव में पुलिस 43 शिक्षक मन ले कुल 12 करोड़ रूपया के ठगी के मामला में 5 आरोपी मन ला गिरफ्तार करे है। सरगुजा जिला के सीतापुर थाना इलाका में सोनतराई गांव के देवगढ़ मोड़ के तीर एक ठन गाड़ी में आगी लगी। हादसा में गाड़ी

0: लैया संग तीन जन गंभीर रूप ले झुलस गिन। दुर्ग जिला के भिलाई स्टील प्लांट ले लोहा स्क्रैप चोरी के मामला में प्लांट के SMS-3 के GM और इंजीनियरिंग एसोसिएट ला गिरफ्तार करेगी। ये मामला में अब तक 15 आरोपी पकड़े गिन है। और बारनवा पारा अभ्यारण्य में 3 ठन चीतल के मौत होगी। वन विभाग के अनुसार एमाले 2 ठन नर चीतल के मौत आपस में लड़े ले होइस, वे 1 ठन चीतल के शिकार होए के आशंका बताएगी। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। रेलवे है छत्तीसगढ़ में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उपराहा प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाए बर 175 करोड़ रूपया करीस मंजूर। प्रदेश सरकार है एसो खरीफ सीजन पर 48,69,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी के लक्ष्य रखे है। अब तक 3,62,000 कुंटल बीज बांटेगी। और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिला के जयदीप साहू है जीतीस दूसरिया स्वर्ण पदक।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक जतिन शर्मा। न्यूजीलैंड देशस्य समकक्षीयेण सह वार्तालापं विधातुं द्विदिवसीय यात्रायां ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्। केन्द्रेण मादक द्रव्याणां नियमेषु संशोधनं कृत्वा अधिक मद्ययुक्तानां औषध सूत्रीकरणानां विनियमनं विहितम्। उत्तराखण्ड राज्ये अत्यधिक वृष्ट्यै ऋतु विभागेन रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अद्य रात्रौ द्वितीयायाम् प्रागुपान्त्य क्रीडायाम् स्पेन देशः बेल्जियम देशेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य तिसृणां राष्ट्राणां यात्रायाः अन्तिमे चरणे अद्य ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्, यत्र न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन तस्य भव्यं औपचारिकञ्च स्वागतं विहितम्। ऑकलैंड विमानस्थानके रेड कार्पेट इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणा लक्सन वर्येण श्री मोदिनः व्यक्तिगत रूपेण स्वागतं विहितम्। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं टर्मेक इत्यत्र औपचारिकं स्वागतं च अददात्, यत्र भारतस्य न्यूजीलैंड देशस्य च सशस्त्रसेनायाः प्रतिनिधयः उपस्थिताः आसन्। श्रीमोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वकीयेन समकक्षीयेण क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ समग्रस्य द्वैपाक्षिक सम्बन्धस्य समीक्षां करिष्यतः, यस्मिन् विगत द्वयोः वर्षयोः विशेषतः व्यापार वाणिज्य रक्षादि क्षेत्रेषु महती प्रगतिः अभवत्। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः न्यूजीलैंड देशस्य यात्रा 40 वर्षेषु प्रथमा यात्रा भविष्यति। श्रीमोदी प्रमुखेभ्यः उद्यमेभ्यः क्रीडकेभ्यः च सह संवादं साधयिष्यति। भारत न्यूजीलैंड देशयोः मध्ये विद्यमानस्य जनानां मध्ये दृढसम्बन्धस्य प्रदर्शनपूर्वकं प्रधानमन्त्री अस्यां यात्रायां भारतीय प्रवासिनां विशाल समुदायमपि सम्बोधयिष्यति। इतः प्राक् प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना ऑस्ट्रेलिया देशस्य ऐतिहासिकं उच्चस्तरीयं राज्यपर्यटनम् आधिकारिकरूपेण समापितम्, येन भारत ऑस्ट्रेलिया समग्र सामरिक सहभागित्वस्य कृते भविष्य प्रतिरोधकं प्रारूपं निर्मितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ऑस्ट्रेलिया देशस्य सर्वकाराय नागरिकेभ्यः ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणे एन्थनी अल्बनीज वर्याय च स्वस्य यात्रायाः समापन समये स्नेहपूर्ण आतिथ्याय कार्तज्ञं प्रकटितवान्। ऑस्ट्रेलिया यात्रायाः समाप्तेः अनन्तरं सामाजिक पटले श्रीमोदी अवदत् यत् अस्याः यात्रायाः परिणामेन भारत ऑस्ट्रेलिया सहभागित्वं इतोऽपि सुदृढं जातम्, अपि च विविध क्षेत्रेषु सहकारस्य नूतनानि मार्गाणि उद्घाटितानि। केन्द्रसर्वकारेण अधिक मद्यसारयुक्त औषधीनां निर्माणस्य विक्रयणस्य च नियन्त्रणं विधातुं 45-21 औषध नियमावल्यां प्रमुखाः परिष्काराः कृताः। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयेन एथिल अल्कोहल युक्त

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं गोविंद राम बघेल और साथियों के स्वर में गोंडी लोकगीत।
1: गावागेरे साप सुरी मागेरे सिख मासुरी यागो नाना नैनी पोके रुबे नाना नैनी उबे रुगे यामा इजिन सोवार पोका ताना इजिना केर उबा ताना यामा मन तो गियान साजे रुगे संडो सोवार साजे रुगे यागो
2: Yeah.

बाबा गणेश मसूरी रीमा गणेश मसूरी।

पूरा मुंडा पापू के बाबू।

0: लाडू काई लाडी गे के दूध काई दूधारी गे पिया गो कारा वे लोड पे काने दू मुझा वे लोड पे काने दू पिया गो सोई की बे एक ने ने आए की बे एक ने ने पिया गो
1: बाबा गड़े सिंह मसूरी रीमा गड़े समासूरी आगो आदिन पाऊर देना के आदिन नीचा बेदना के आगो पेपा देते राय के काका देते राय के आगो
0: बारा भाई दिया गो दादा दादा खेरा भाई मुंडा वे लोड पे चाने दिया गो कारा वे लोड पे चांदी जी मुंडा वे लोड पे चांदा दिया मा सोई की बे एक ने ने आए की बे एक ने ने दिया गो
1: Yeah.

0: मुंगा वे लोड के तोए रोड काला वे लोड के तोए रो इया गो इया इया इंदू बेके ताता ताता इंदू आई गोदरा गोद पंगा इंदू जीवा गोद पंगा इंदू गोदर बेंदा इया गो कामा चूरिन पापू बेके अचूरिन पापू बेके इया गो के ही की बे एके ने ने आई की बे एके ने ने इया गो इया इया ओ ओ
1: अंगार ते पड़े ते राई

0: जोड़ा गाजा पांडा नेंदू गिरबुर बंदे के यागो जरवा बजा पेचा नेंदू यागो हे की बे एक ने ने आई की बे एक ने ने यागो जोड़ा गाजा सिंबा देते जोड़ा गाजा बाबा देते यागो बेला बेला फोके मोबे उला उला फोके मोबे यागो सिग्मा सुरिन पापे के सामा सुरिन पापे के यागो
1: गोविंदराम बघेल और साथियों के स्वर में आप सुन रहे थे गोंडी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले

0: पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
0: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
2: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
2: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
0: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। रेलवे ने रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र के लिए 175 करोड़ रुपए किए मंजूर। प्रदेश में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आंधी तूफान, तेज बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। रेलवे ने रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार यह परियोजना भारतीय रेल के विद्युत इंजन बेड़े के तेजी से हो रहे विस्तार और पूरे नेटवर्क पर माल ढुलाई और यात्री परिचालन बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। अतिरिक्त प्राथमिक केंद्रों से रेलवे मौजूदा बुनियादी ढांचे का बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा, साथ ही रायपुर मंडल भविष्य में तकनीकी विस्तार के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है, जो मानक E20 पेट्रोल से करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। श्री पुरी ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को भी खारिज किया। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने MyGOV के सहयोग से प्रस्तावित गांव के भीतर की सड़कों की कोडिंग और ग्रेडिंग प्रणाली पर नागरिकों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय समुदायों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक नागरिक और संस्थाएं 14 जुलाई तक MyGOV पोर्टल पर उपलब्ध जन परामर्श में भाग लेकर अपने सुझाव ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। गौरतलब है कि वर्तमान में गांव के भीतर की सड़कों का व्यवस्थित अभिलेखीकरण और मानचित्र उपलब्ध नहीं होने के कारण एम्बुलेंस, अग्निशमन और पुलिस जैसी आपातकालीन सेवाओं, डाक, कुरियर वितरण, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, आधारभूत संरचना के विकास तथा डिजिटल नेविगेशन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रस्तावित प्रणाली इन चुनौतियों का समाधान करते हुए अंतिम छोर तक सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक होगी। रायपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के 17 नए प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के लिए पहली कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रकोष्ठों की भूमिका और दायित्वों पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित प्रदेश भाजपा

0: अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन के तीनों प्रदेश महामंत्री, सभी 17 प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक और सह संयोजक के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे पार्टी की रीति नीति तथा केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं।
1: भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो आज नए गठन के बाद, नया दायित्व संभालने के बाद पहला 17 प्रकोष्ठों का आज ये कार्यशाला यहाँ पर आयोजित था और हम लोगों ने उनको आग्रह किया है कि जो मतलब हेतु है प्रकोष्ठों के गठन का कि जिस जिस क्षेत्र के संयोजक हैं प्रकोष्ठ के, उन वर्ग के लोगों तक पार्टी की रीति नीति को और भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचाएं, इसका आग्रह हम लोगों ने किया है।
0: प्रदेश में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 1,00,000 रूपये किया जाएगा। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में गिग वर्कर्स, चरवाहों और असंगठित कर्मकारों के मेधावी बच्चों के लिए नई कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने पर भी सहमति बनी। श्रम मंत्री ने पंजीकृत श्रमिकों का EKYC और आधार आधारित पंजीयन कराने तथा पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक आपदा से होने वाली मौतों पर मुआवजा देने की राज्य सरकार की नीति को लेकर अहम फैसला सुनाया है। न्यायाधीश संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि आंधी तूफान, तेज बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने राजस्व विभाग द्वारा राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत के मामले में मुआवजा देने से इंकार करने के आदेश को निरस्त करते हुए उसके बेटे को 30 दिन के भीतर 4,00,000 रूपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव विकासशील ने आज मंत्रालय में जल जीवन मिशन 2.0 की समीक्षा की। बैठक में तय किया गया कि हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए पंचायतों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन योजनाओं का रखरखाव ग्राम जल और स्वच्छता समितियों के माध्यम से होगा। वहीं योजनाओं के संचालन

11 जुलाई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा एफएम और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि रेडियो कार्यक्रम में दीदी के गोठ प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का सशक्त माध्यम बन गया है। कल रायपुर में आयोजित दीदी के गोठ वार्षिकोत्सव में उन्होंने दीदी के गोठ कॉफी टेबल बुक, बिहान श्रेणी त्रैमासिक पत्रिका और मोर गांव मोर पानी पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने सफलता की कहानी साझा करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और कहा कि कार्यक्रम के एक वर्ष में प्रसारित 12 एपिसोड से महिलाओं को आत्मनिर्भरता, नवाचार और स्वरोजगार की प्रेरक जानकारियां मिली हैं। दक्षिण अफ्रीका में 4 से 12 जुलाई तक आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया है। जयदीप ने दूसरे दौर की क्लासिक प्रतियोगिता के तहत 66 किलो वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले जयदीप ने इसी प्रतियोगिता के पहले चरण में बीते 6 जुलाई को इक्विप्ड कैटेगरी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जगदलपुर के डिमरा पाल स्थित कॉन्टिनेंटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बस्तर संभाग की पहली और छत्तीसगढ़ की दूसरी अत्याधुनिक कैथ लैब का लोकार्पण किया। इस सुविधा के शुरू होने से हृदय रोगियों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और अन्य आधुनिक उपचार अब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 12 जुलाई को 22 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर जिले के समोदा में 128 करोड़ रूपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत की अध्यक्षता में 12 जुलाई को रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी 12 जुलाई को रायपुर में मानसून के दौरान प्रमुख प्रौद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित और प्रस्तावित वृक्षारोपण गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चालू शैक्षणिक सत्र में कृषि अभियांत्रिकी और खाद्य प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 20 जुलाई तक पंजीयन कर सकते हैं। कोंडागांव पुलिस ने 43 शिक्षकों से कुल 12 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से फरसगांव, केशकाल, बड़े डोंगर, धनोरा, विश्रामपुरी सहित कई क्षेत्रों के शिक्षकों से पर्सनल लोन दिलाने के नाम पर ठगी की थी। बलरामपुर जिले के ग्राम बगाड़ी नाका के पास आज हुए सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में आज ब्लास्ट फर्नेस के रॉ मटेरियल एरिया में संचालित ओवर ब्रिज क्रेन के टूटकर गिरने से क्रेन ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल हो गया। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोनतराई स्थित देवगढ़ मोड़ के पास एक हाईवा में आग लग गई। इस हादसे में वाहन चालक सहित 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट से लौह स्क्रैप चोरी के मामले में पुलिस ने प्लांट के SMS3 के GM और इंजीनियरिंग एसोसिएट को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और बारनवापारा अभयारण्य में 3 चीतलों की मौत हो गई है। वन विभाग के अनुसार इनमें से 2 नर चीतलों की मौत आपसी संघर्ष में हुई, जबकि 1 चीतल की मौत शिकार से होने की आशंका जताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे ने रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र के लिए 175 करोड़ रुपए किए मंजूर। प्रदेश में ई रिक्शा सहायता योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि आंधी तूफान, तेज बारिश और तेज हवा के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत भी प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। और दक्षिण अफ्रीका में आयोजित एशिया पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दुर्ग जिले के जयदीप साहू ने दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम मिटकी, राम राम
1: राम राम कोंदा दादा, राम राम
0: अमरलीस ने
1: हाव अमरले काय
0: खूप दिन ले भेट घाट खोली ने
1: हाव
0: आले जुआर भेट करू ता
1: हाँ।
0: तो बस्तर केसवर कार्यक्रम सुनतो सफाई भाई बहन और संग जवने संगवारी मन के मैं कोंदा
1: और मैं मिटकी
0: आमी दोनों करूं से
1: राम राम, राम। तो ये सियान सजन मन के तो भेट घात कर लू ने
0: हाँ।
1: तो असने नानी नानी पिला मन के बल भुरकुक नहीं होए
0: नहीं होए
1: तो रेडियो कटा कटा बसलो और सपाय नानी नानी पिला मन के बल हमें दोनों चो बाटले खूबे खूबे माया।
0: तो मिटकी
1: हाँ
0: दक पीला मन के माया बल कर तो राय
1: हाँ।
0: और सियान मन के मान गुन कर तो राय ने
1: हाँ, सत्य है।
0: और संगे संगे हम के आप लोग घर परिवार और क्षेत्र चो उन्नति बाढ़ती काज बल काम कर तो राय
1: हाँ।
0: और दक हमी रहू से बस्तर ने
1: हाँ।
0: और बस्तर चो लोग मन कहा है बाहर ही गेलो ने बस्तर चो बारे ने जानकारी धर तो काजे लगे लगे ये बात
1: हाँ,
0: और पूछू बात की तुम जो बस्तर गोटोक जनजाति क्षेत्र आए ये थाने बोलूं जनजाति लोग आगर रसोते ही काजे के जनजाति क्षेत्र बलसोत
1: हाँ।
0: और हम जो बस्तर चुची ना आए रान बन ले
1: हाँ, रान बन डोंगरी पहाड़ी नदी बल तो विदी हाँ, ने
0: ये सब ले हम चो जो ना चीना
1: हाँ।
0: और सब लोग जान सोत बले और हुंचो मजी ये थाने रसो तो हम चो अनुसूचित जनजाति भाई मन मतलब हम ही सपाई लोग मन ने
1: हाँ।
0: और हम चो रहन सहन जो ना हुन खंडिक जो ना दूसर लोग ले खंडिक भी ने करे से दक्तो ने
1: हाँ।
0: ने हालांकि हम ही सपाई लोग तो मनु काओ मानतर दक्तो ने हम ही आप लोग दूसर लोग ले खंडिक खुलू से बस्तर चो लोग मन
1: हाँ। मतलब बस्तर चो लोग बोले खंडिक अलग ची हूं
0: अलग
1: ची
0: हूं से हाँ। और हुन हिसाब ने बस्तर चो बोली भाषा बस्तर चो लोकगीत बस्तर चो नाचा ये हुनके अलग मान दाय से ने
1: हाँ।
0: और बस्तर ने जो ठान मना से बोलू जैसन की ये थानो चित्तरकोट घूमर
1: हाँ।
0: हुसने तीरथगढ़ चो जलप्रपात हुसने कोटमसर चो गुफा
1: गुफा
0: ने
1: हाँ। हाँ।
0: और दंते वाड़ा चो दंतेश्वरी आया
1: हाँ।
0: ने
1: हाँ।
0: और हम जो ये जगदलपुर चो बोल दंतेश्वरी आया
1: हाँ।
0: और असने बस्तर चो दशरहा और बस्तर चो गोंचा
1: हाँ।
0: ने
1: ये तो फिर खूब मतलब जान तो बितिया ने
0: जान तो बितिया
1: ये सब ने तो लोग हम चो बस्तर के जान सो ज्यादा ने
0: ज्यादा और ये समय समय ने असंदाए सोजे भारत चो दूसर राज्य काय बोलू आता विदेश ले बोले अमर सोते था
1: हाँ दखुकलाय
0: दखुकलाय
1: और दखुकलाय अमर सोत बोले और खूबे मन कर सोत ये साल खिंडी कम लोग गिले फिर दूसरा साल फिर और जुगे लोग ऐसे
0: हाँ, हाँ, हाँ, तो बलतोर गोटे आई हुन मन की बस्तर अच्छा लागे से
1: हाँ।
0: और ये थानो बलुआ सब इसी हो दूसर राज्य चो लोग बोले कि बस्तर चो जलवायु सब मौसम ने अच्छा रहे से
1: हाँ।
0: मतलब गर्म ने बोले सहतो लाइक गर्मी रहे से शीतकार ने बोले सहतो असन रहे से और चमास ने बोले ये था नहीं अच्छा लागे से
1: हाँ, सत्य है।
0: तो बलतोर गोटे ये हो से एक प्रकृति असन बनाली से कि ये था ने हमी रहो आप लोग जीवन के सुभेस्ता ले सुविधा ले चला उकलाई सकू ने
1: हाँ।
0: होनी का जे बस्तर ने जोन बल लोग बाहर ले ये सोत हम जो बस्तर ने कोनी राज्य चो लोग नहीं हाथ बल उकलाई नहीं होय
1: नहीं होय
0: सपाई बाट चो सपाई राज्य चो लोग मन आसोते था ने
1: और का है कि इलो ने फिर का जाओ मन बल नहीं कर सो
0: हाँ मन बल नहीं कर सो तो इधन भुईबाड़ी बल धर सो तो इधन घर कुड़िया बनाओ।

बोल कमिया वाडू बोलला अरे मन कमिया सौकार घर गेला और कमिया भिड़ला तो गुटुक सौकार बोले से ये ना हा तक वही तू अच्छा बुता पोना करुक सकीस कि नहीं ना बोले से हम सौकार नहीं सौकार मैं बिल्कुल सके हाँ कितलो दिवस नहीं इतलो दे दे बोल लो मोल भाव कर ला हाँ और खाना पीना बोल ना हम के दे तो रासे हम ईरान खाऊक नहीं सकूँ बोलन भाती फिर बोल रहा हा तक अर भी तक हम सौकार थन जाऊँ कमिया मान तो कजी गुठियाला हूं चोले बोले से हाँ ये सौकार वही पेट भर खाना मातर हो तो रासे हो कम हो लोन मक अच्छा नहीं हो बोलून हा तक बोल लो हो तू का नहीं खाऊस ना बोले नहीं कहीं हो पान आने मई हूं पान में मक एक पान भात दिलो न मक जान पेट भर हुआ कम हो लो नहीं सके बोल लो हो बोल लो तो सौकार घरे रहे उसने कमिया रहते रहते हुन जाए मन पूरन पान के दकू रहे जाऊन भती हुन पूरन पान के टूटाऊ नाने और ओझाए तो सौकार काय करू है एक पूरन पान भात मांगे तो दोनों टाइम के होए हुन मस्त खा पी होए कितलो बूता भयना बोल करे तो भीतक काय कर लो हुंचो सौकार ये ना हुंचो थाने कमिया मान लो हुन एक पान भात खाऊ बोल लो आ तुके बोल भात जो न मैं पान नहीं दे तो रहा का हो बोल लो हूं का कर लो कहाँ चो तो सरगी पान के टूटा उन्होंने एक पान भात दे दादा तो उसने बोल रहा सो तो एक पान भात बोल लो के मग बोले उसने दे दे जानू बोले तो ये किस थान जा ऐसे एक पान भात दे तो के बोले से आदमी तो झूरा हो लो भूता बोल के रुक नहीं सकते रहे ना कहीं कमजोरी होते जाए एक दिन हाथ किलो और बोले से कसन बाबू एकदम कमजोरी हो सितना काय करू आज दादा हूं सिर की पान ने दे सोतना हम चो सौकार घरे मके पेट नहीं भरे जानना हूँ नहीं आज मैं ऐसे जो बोल लो आर ऊपर हाथ तक गेलो सौकार कसन लेका के तुम पान चो गोट टूट ली क्या है तो तुम सिर की पान ने कसन ने भात दे सर नहीं ये बोल पान टूटा ना दे हुनी पान ने तुम पेट भर खाना दे तो रासे बोल लो हो ये जे लो आरू काय कर लो पूरन पान के टूटोक बोल लो मैं उसने करें से बोलतो हूँ पूरन पान ने दे तो के हूँ भी तक बोले पक्का खाए से मोटा तगड़ा बोल हो लो बूता भय ना सब चीज करते जा सोचे असने होते होते साल तो पूर ली पूर तो के बोले से ये ना दादा वही कम यार लोन बोलना खूब तंग आसत आरु ये ले नहीं हो ये दे मन धान दिला सो ते सौकार घरों धान के आनू कहाँ है बोले मरान गुटुक मारवा और हम बोले कम होकला मुरिया हूँ बोलला और हमन गुटुक आप लोग घर बना ला और यमन गेला और जन गुटुक मरान के मारला धान चिकमा बुनला तो बुन तो के यमन के जी पूंजी होलो असन होली फिर यमन बोल कहाँ तो बिया पर अपन हो जेला मांग तो होलो पाट कु बोल सक ये दादा वही सब लोग ना अटार बोल बना सो अटार बनाओ ना बोलला हाँ तो वटार बना ला बांगा भाजी सब खमाते जा सोते मन तो दादा असने नहीं हो ना ये बांगा भाजी बिकलू बोल लो ने नागर बोला धरो बोलला सोर होला और गेला जे लोग ये मन बोल सकती गोटक थान ले दिया उन भाती मोल कर ला और धरून आन ला और फिर कमौक लाए मुरिया ला मुरिया तो के हुदली दाए हुन हाथक जो बेटी रहे मन लेके पीला पोड़ूक लाए जा तो कहीं तैयार होते रहे मन हुन बोयला धरलो बीता बोयला पैसा का तो ई लो आर बोले से एनो नी ओए ये तुम जो घर लोग कहाँ गेला नहीं आया जेली बूता बाटे और बुआ गेलो जन का तो अटार बाटे बोले से हाँ कसन लो नी मच्छा नहीं सांगीस बोले से नहीं बुआ गेलो जानू अटार बाटे काय का जेलो काटा बाड़ी लाटा दे तो काजे बोले से हूं आदमी नहीं समझे काटा बाड़ी लाटा दे तो काज जेलो कसन बीतिया इन्होनी ए गोट के तु सांगीस नहीं बोले काय का जाए जान मैं तुके नहीं सांगते रहे बोलून भाती है फिर बोले नहीं अच्छा सांग का इन्होनी तेबे तुझे बुआ लगे बोयला धरलो से ये बोयला पैसा जो ना मैं नहीं सब पैसा छाणू दे इन्होनी मैं अच्छा समझा लो थो काटा बाड़ी बाटे झीटा देव गेलो तो झीटा बोल लो उनका एक बिलुआ काटा बोल लो काटा बांगा मंडा लासोत अटार बाटे हूं धानी जानू काटा देव लाई गेलो ई से रन बन हो रहे गुन बोलून भाती यही गोट के तू के समझाए से।

0: ये जो गाजी तु पर निया घन घई में पूछ कुमुरिया लिसी तीस कुल जात लोग के बोलून भाती हूँ लेकी पीला बोले से ये नोनी ओए मचो पहला पैसा रहे ना आजी तू ये गोट के मैं नहीं समझू रहे हूँ पैसा पैसिक नहीं दे उतना कटली जाए से बोलो यार हूँ बैला बीता सौकार बोले उठून भाती गेलो तो लेकी पीला बोले से बैला धर लो आ बैला पैसा बाछू रहे पैसा की लो हुतली बोल ले गुनी हूँ आदमी जन पैसा छाणु जाए बोल लो नी धरे बोल लो यार गेलो जाए तन बाबा करो आया के सांगे दे बोलिए यार हरी खोली स्कूल बोल नहीं जाए हूँ लेकी पीला पराली से हूँ अटार बाटे बोले कह समझे जितना नहीं स्कूल नहीं जाए का है कि जमा है बाबा मके हरिक लागली का है बैला धर लो बीता पैसा रहे बाबा बोले हो बेटी रहे हूनके बोल ले काटा बाड़ी बाटे झीटा दे गेलो से हूनी बाट जाइस नहीं बने सुन घन घाई पूछे ये नोनी मैं तुझे गोट के नहीं समझ ले बोलून बोलून बोले जा ये बैला पैसा धरून वाई अदय मक समझा लीस बोलून भाती फिर सांगले गुने हूं बोल लो जा आजिल में धरून वाई बैला पैसा टूटली बोल लो और जन सौकार छाणू दिलो पैसा हूं गोट के हरिक लागली गुन तुम के सांगू की लेकर बुआ बोले सुन हाँ अच्छा होली नोनी बोलला और हरिक ले पासे असने होते होते फिर मन कमाते कमाते गेला बोला गाय बोले अच्छा मजबूत होली हूं चले फिर ये मन कमाई धमाई करूँ खाला।
1: हाँ तो ये काय सुंदर ये कहानी के सुनते रहो ने श्री नड़गु रामचो
2: हाँ
1: तो घड़ी बार दखले आमचो जातो समय बल हो ऐसे
2: हाँ
1: आले दादा तू मंडरा गडरा के सकल में विदा धरेंगे
2: आलते भी
1: ये चीज जातो पूरे बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुनतो सपाए गांव कारी दादा दीदी सियान सजन मन के मैं मिटकी
2: ओ मैं कोंदा
1: आमी दोनों करूं से राम राम, राम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम बस्तर के स्वर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव।

0: हुनिका जे पिला मन के घरले संस्कार मिले से और घर चो बाद ने हुन मन पासे खनिक पांच छह बरख चो होसत जाले फिर स्कूल चो बाट धरसोत ने
1: हाँ
0: हुता फिर स्कूल ले हुन मन के आप लो गुरुजी मन ले ज्ञान मिले से और हुन ज्ञान के धरुन भाती हुन मन आप लो जीवन आकी नगत चला सोत
1: हाँ
0: तो हमी बोले वे हमी असन अवस्था ने देखू से कि जसन की गोटोक बाटे हम चो गांव आ से और गोटोक बाटे आजी चो पढ़ लो पीला मनासोत पढ़ लो लोग मनासोत बोलू ने तो ये गांव चो लोग बोलू जो नी पढ़ लासोत मानते बहुसंख्यक लोग बोलू नी पढ़ लासोत ने गांव मने और गोटोक बाटे खंडी पढ़े लिखे लोग तो जैसे हम के कहीं बले काम के कर तो राय तो हुन थाने जो ना अनुभव और ज्ञान
1: हाँ
0: दोनों के मिला उन भाती हुन काम क्या हम के पूरन कर तो राय
1: हाँ काहे के दोनों चीज कई काम कर तो का दोनों चीज खूबे जरूरी
0: जरूरी आए कहा ज्ञान आ से जाल हुन थाने अनुभव बल जरूरी है
1: हाँ।
0: और कौन थाने अनुभव आ से जाल हुन चो संग ज्ञान बल
1: ज्ञान बल आए हाँ।
0: तो सियान मन लगे अनुभव राय से और ज्ञान बल रहे से और पीला मन लगे जेई ते लगे ज्ञान आगर बल रहे से कसम कि आजकल ज्ञान जो स्रोत खूबे होली से आगे जो समय ने तो असन होते रहे कि गोटोक स्कूल माध्यम रहे ज्ञान चो हुनी थाने मास्टर मन ले जितलो हुन मन जानते रहत उतलो पीला मन की ज्ञान देते रहत मानतर आज ही टेक्नोलॉजी चो युग आए आज ही सोजे स्कूल नहीं पार्ले घरे टीवी ने मोबाइल ने कंप्यूटर ने समाचार पत्र ने मीडिया ले और विभिन्न प्रकार चो सभा ले संगठन ले ज्ञान चो प्राप्ति होई से और ये सपाई ठान मन ले ज्ञान धरुन भाती चाहे हुन कोनी पीला हो चाहे सियान हो चाहे जुआन हो सपाई लोग आप लोग ज्ञान के बड़ा उपलाय
1: सकोत
0: ज्ञान चो सिर्फ मतलब नहीं साधन सीमित नहीं आए अदे साधन खूबी होली से
1: हाँ।
0: बस जरूरत है हम के हम ही कितलो हम के सकत आसे ज्ञान के धर तोर
1: हाँ काहे के आप लोग जो मन चो जन इच्छा बल बल सोत
0: हाँ।
1: हुन बीती बल रतो रहा है कई चीज के सीखतो का जे जानतो का जे ने
0: हाँ,
1: देव
0: हाँ।
1: जाए के बल हुआ है
0: हुआ है और जसनामी खंडिक हुन हिसाब ने गोठियाऊ कि जैसन कोनी अनपढ़ लोग आत
1: हाँ।
0: और जे जो भीतरे अज्ञानता चो कारण ने अंधकार असन लागू आए और हुन काई बले काम के करतो काजे खूब डरू आए और खूब मतलब गुप्लो असन हुन के महसूस हुआ है
1: हाँ।
0: तो हुनी चीज अगर मान लो गोटोक शिक्षित व्यक्ति आसे शिक्षित लेका आसे शिक्षित युवा आसे तो जाने हुन मन जोन हुन मन जो भीतरे अंधार असन लागे से नहीं जैसन की बोलू राती बेरा घरे बिजली गेलो ने अंधार लागे से
1: हाँ।
0: और हुन अंधार ने हम के डर बले लागे से
1: हाँ लागे
0: हुसने अगर मान लो हुन मन लगे ज्ञान नहीं है तो हुन जो भीतरे बले हुसने अंधार होय से और हुन आप लो मन ने डरे से बले तो हुनी काजे खंडी के ज्ञान जो प्रकाश पढ़ लो ने हुन उजर होय से मन भीतरे और दिमाग ने उजर होय से और तेबे फिर कहीं समस्या नहाले कहीं संकट आसे जाले हुन बले हुन समस्या समाधान बले निकरे से और हुन चो काजे हिम्मत नहीं हार तो राय और जो नानी सोचाए और जो मतलब गलत सोचाए हुन सोच के छांडून भाती हम के शिक्षा चो माध्यम ले ज्ञान चो माध्यम ले कहीं बले बूता के सर लगा करून भाती हुन बूता ने सफलता हासिल कर तो रहा है ने
1: हाँ सत्य है
0: हाँ तो असन करुण भाती हम ही आप लोग मनुष्य जीवन के सफल बनाऊ लाई सकूं और जब मनुष्य जीवन सफल हो दे तब उदीम आए ने
1: हाँ, हाँ।
0: और सपाय उदीम होलोन फिर सब लोग मन बोलवात कि हम के जो ना असने जीवन मिल लो ने अच्छा होती बोलून भाती ने
1: हाँ।
0: और जीवन मनुष्य जीवन उदीम एच काजे आई हुनी काजे हम चो बस्तर संगे पूरा भारत देश ने हम खूबी असन तियार बाहर मन बनाऊ
1: से
0: तो वाले हम चो मुंडरा ने जहां मन बोले आसे हाले जहाला मन के बोले अमराव ते बे
1: हाले अमराव
0: हाँ।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

0: जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% GST लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: इंजियाना होटल नगा कमरा पोइत के GST ता नालू रकम मोलत दर लगे मास और मत्ता 1,000 रुपए ते कम मोलत कमरा पोइत के 0 GST मिंदे अचूट 1,003,2,499 रुपए ता होटल कमरा पोइत के 12% GST लगे मास और मत्ता 2,500 पोइस 7,499 रुपए मोलत कमरा पोइत के 18% टैक्स लगे माता ईदे नए दीबे मोलता कमरता मैं दे 28% GST लगे मास और मत्ता मती इंजे होटल नेगा कमरा पोइत के सिर्फ रेंड रखाते मोला लगे माता 7,500 ते कम मोलता कमरा मिंदेत के 5% और इदेन दीबे मोलता मिंदेत के 12% GST याना थानता।
2: हाँ मिटकी
3: हाँ
2: अले ये गोट मन के सुन लूने
3: हाँ
2: और गोट संगे संगे गीत बलि होले अच्छा है ने
3: हाँ अच्छा है
2: अले निस कैसे नहीं तू चुमोंडाल गोट गीत के
3: अले फिर सुनू ये गोट गीत के
2: हाँ।
3: और गीत सुन लो पाँच फिर गीत कुरिया मन के चिताऊं अने
2: अले अले ते भी सुनू।

0: और मचो मोटराने यहाँ से नाटक।
1: हाँ
0: हाँ और दक मचो नाटक जुनाई नहीं ये
1: हाँ
0: चुनाव आई वाट।
1: उठ
0: हाँ तो ये नाटक के लिखला सोत श्री सदन सिंह नाग और प्रस्तुति आई बलवीर सिंह कच्छ चो।
1: हाँ
0: तो वाले गांव करी भाई बहन मन संगे हम भले सुनू नहीं वाट के
1: हाँ वाले सुनो फिर
0: काई वाट आ जल ने।
1: हाँ
0: हाँ
1: सुनो
2: नहीं इतरो पैसा कौड़ी खर्चा करून पढ़ा लो काय मतलब दिली गुनु ये साहब के आमचो असन अपर काम के करे दे मने उसन जाले पढ़ाई काय काज कर लिस तुके तुके जानू पीला बेराले भूती पटालन रखत रहती का काज बोले इतरो पढ़ा ले जाल में
3: आले ओ काय बोले रहा हो बोपड़ा पोड़ून भाती 12वीं क्लास ने अच्छा नंबर आन लो से ए दे तुम के ही पार ले बेड़ा खड़ा बूता ने सहा हो दे बले से जल काय न साय से
2: काय न साय से मैं एक बेड़ा खड़ा ने चिकल माटे ने काम करे दे बोलो नितरो पढ़ा ले से ने इतरो पढ़ोन लिखुन भाती नौकरी कर तो खिड़ी पैसा कौड़ी बोले घर ये थी आले समझाओ काय समझाओ जल तुई
4: ए देना बाबा आले खिंडी मोचो गोट के बोले तो समझून दखा ना
2: आले समझाओ काय समझाओ आज जाले
3: ए हो एक के हर पीरा के डराउन पकाय सास खिंडी कस्तीर ने सुनून बल तो दखा हुन काय बोले से आले
2: काय काय उसने सुनवास रे मोचो तो मन के टूटोन दिलो ले का आले सांग बे
4: ए ना बाबा असन आय अरे नौकरी बोले तुरते पड़ते खन तो ककई नहीं लगे और ये मैं 12वीं पास कर ले से मोचो विषय बोले हुनी खेती कमानी बीती रहे और ये बेड़ा कमानी ने नुआ उट ले कर लो ने अरे खूबे फायदा आसे अरे ये कि मैं तो जाने
3: लेका एक खार बले से जाले खिंडी घुंचो गोट के बले तो मानून दखा हो सके हुन काई अच्छा करुन दखा दे होती
2: काई माटी के करुन दखा देता आमचो बेड़ा कमानी आए बरसाचो भरोसा और ये कमानी करते करते मैं डोकरा होले एबे फिर ये बैंडू करुन दखाय दे मने जाले मोके तो नी भावली
5: काय होली गुनुकना चैतन व्यात ले किलेर कालार सुना दे से कसो न होली लेका के काय काजे असन खिस्सा सुन के
3: नी दखास मामा लेका 12वीं पास हुन बेड़ा कमानी ने संग दे दे बोले से तबे हुन के खिजच कर सोत
5: आले बाबू रूप साए तू पढ़ लीस लिख लीस पढ़ा लिखा माने होलीस ना एबे कसन हिसाब ने बेड़ा कमानी चो गोट बोलसिस
4: ए दादी असन आए
5: हाँ
4: कितरे पढ़ा लिखा होलो ने बोले मैं आए तो किसान चो बेटा
5: हाँ
4: हाँ है नहीं
5: हाँ
4: और ये बे पढ़ा लिखा होन भाती नुआ उट ले खेती कमानी कर तो गोट के जान ले से
5: हाँ हाँ
4: यही गोट के बाबा के समझातो के बाबा नी समझे से
5: असन आए जाले मैं तुझे बाबा के समझाए देना ए चैतन ढकना दिन बदले से जुग बदले से एबे कै नवा नवा वाट बननी कर ली से आरु रूप साए पढ़ा लिखा होन बले खेती को मानी कर तो मन बना लो से बल्ले हु नगद गोटा तू ये मन के नी टूटाओ आरु एके जसन करे दे उसन उन्नत बाटले बेड़ा को मानी करुक देस मैं बोले से ना तुछ बेटा खुबे नगद आए हुनके तु समझ
2: आले ना बोडू एबे तू ही बोल सी जाले मैं एक हो बोले से
5: हाँ
2: आले दखाओ बे कसन करुन भाती बेड़ा उजराए दे और कमाए दे।

0: खूबे हरी खोए दे।
1: हाँ साहब, ये भी बोर चो काम तो होली। ये दाएं बाटली साहब हुन बेड़ा रेटे रेटे नहीं हुन तार बाड़ी बना तोर। हुन चो काजे बोले मैं उवाट के धर ले से और सिर मीट चो पोल के बोले आपने सिखुन भाती बना ले से। इत्रो ने मुझे बेड़ा चमक न हो जाए दे साहब। कोनी बाटले चोर खंगार पशु जानवर चो कहीं चे डर नहीं रहे दे साहब।
0: तु तो सब पाए बाटले नंगत उवाट मन के धरुन काम करसिस रूप साय।
1: हाँ साहब,
0: असन काम करुन सत्य आए। तुचो मसागत ले तुई गोटक दिने करुन दखाऊ चास असन लागे से।
1: एबे जानू साहब, दिन दुनिया के दखून चलुक लागे से। बड़े बड़े लोग मन होला उन्नत कमानी करुन भाती दखाला। एबे यही काम के आमचो असन बस्तरिया माने के बले करुक लागे से। तेबे तो है मैं गोटक गोट के भूलक ले मैं काय काय फसल धरें दे हुनके गोठिया तो काजे मैं यून रहे साहब।
0: असन
1: हो
0: आले तेबे सुन
1: आले सांगा।

0: दखलास तुम्ही लेका के बलते रहास कसन करून दखाय रे बोलू एबे दखा ए काय रसिया बोरिंग पंप ए काय रसिया तार चोबाड़ी बेड़ा बोले कसन सुंदर दखा देस ए साग मारी ने बोले दखा नी आ हा हा हा कसन मन के फरीक करून देस हो
1: सत्य बलसिस पाकली मैं अबुज माने लेका चो दिमाग के नी समझते रहे मैं काय जूना हिसाब ले कमाती करतो लोग काय जानी ये जैविक खेती के ये दुनिया जो टंडम के
0: आगे हो पानी मार ले कमानी होते रली नहा ले नहीं आय कसन ए बे काय रसिया ले का जान बोर कोड़ाउन दी लो से ते बे 12 महीना पानी और दखा लेका बले कितरो मसागत करे से
1: हो पाकली भगवान असन भाई मानी बेटा सपा के देव ए ना ए बाट पानी झपाओ ना ए बाट ले ए बाट ना ए बाटे ओय ओ बाबू
0: ए मै बल जा से हो घर बाटे झप के रान दे दे जा से
1: हो जा जा
2: आले आले हो गए हां हां ए देख हो गए रहा गांव कारी सियान सजन मन ये ध्यान देऊन सुना आज ही आमी सपाय एथा परगन भरचो किसान मन जुहलू से एथा नगद काम करतो किसान मन के पूरे करून जमाय किसान मन के बाट दखातोर होय दे ए आले ते बे सपाय हो गए हुन बसाए
1: हां आले
2: ए दे ए बे
3: ए ढोलू
2: एबे आमचो प्रमुख अतिथि काजे गांव चो बोंड का सियान के आमी पूरे बसालू से तो बोंड का सियान एबे आम के बाट दका तो हिसाब ने दुई शब्द बोल दे आले बोंड का सियान
4: आले तेबे ये गांव चो सरपंच पटेल कटवार सियान सजन सपाय लोग के मैं बोंड का करे से जुहार मचो असन अपन लोग के मान देउन पूरे बसाला तुमके जोहार लागो और मैं काय गोट के बोलेंता और मैं तो अपन माने कहीं के तू नी जाने तेबले बोले गोटो गोट बोलें दे ए गांव चो बेटा रूपसाय पढ़ून बाती खेती कमानी कर तो विचार कर लो हुंचो बाबीता चैतन उनके रीस होलो तेबे उनके खेती कमानी चुगवाट के मैं सुन ले समझातो के बाविता मान लो और ए दे मैं दखे से रूपसा इतरो बाढ़ती कर लो से कि हुंचो खेती कमानी के दख तो काजे लाभ पीले किसान मने ऐसोत और दखा आम चो गांव काजे बोले मान चो गोटा कि रूपसा के गोटो पुरस्कार हाँ काहे पुरस्कार ना
2: हुनी फिर श्रेष्ठ कृषक पुरस्कार काहे
4: हाँ और ये भी मैं दखे से रूपसा इतरो बाढ़ती कर लो से हुंचो खेती कमानी के दख तो काजे लाभ

0: तो मिटकी
1: हाँ
0: द काया रसिया नाटक रही और तुई बल खूबे ध्यान दे उन सुनते रही ने
1: हाँ काया की खूबे सुंदर सुंदर उवाट मन के सांगते रला ने
0: हाँ द खेती कमानी का जी बोले गीतलो उवाट आसे और एक मन दे उन कर लो ने हम खेती ने बोले आप लोग आमदनी के बड़ा उपलाय सकून और आप लोग जीवन आके अच्छा चला उपलाय सकून
1: हाँ
0: और ये नाटक ने भाग धेरु कलाकार भाई मन रहत श्री गेन लाल नायक श्री राम झमकच श्री शेषांक शेंडे श्री नारायण सिंह बघेल और सुश्री सरस्वती रायकवार
1: हाँ
0: तो ये नाटक के अमरालू काय रसिया नाटक रहे और ये नाटक ले हम जो किसान भाई बहन उनके बोले गोटोक सीख मिरली गोटोक सबक मिरली बोलू ने
1: हाँ
0: हाँ तो अदाय फिर जाऊँ गोटोक गीत बाटे ने
1: हाँ
0: और अदाय मैं मचो मोडरा के रेटे करने से और तू ही आप लोग मोडरा ले गोटोक गीत के निस्काओ
1: हाँ तो ये गीत आए शिवराम नाग अरुण मंचो संगवारी मंचो
0: अच्छा
1: आले फिर ये काय रसिया एक गीत आए एक फिर सुनो और हम दादा दीदी मन के बल सुनाओ
0: आ लेते भाई

0: तो मिटकी अले ये गीत केवल तो हमरा लुने
1: हाँ
0: और काय की गीत चो जेबे पल्ली से बलू थर ने
1: हाँ
0: तो समय बले आसे और गीत बले आसे हम चो लगे
1: हाँ
0: और गीत आई बलो ने बड़े लोग के बले सुनुक भाई से
1: और पीला मन के बले भाई से हाँ
0: और गीत तो सुन तो आप लोग जीवन आने का है कि संगीत ऐसा ना है कि हुन हम जो मन ने और हम जो बुद्धि ने इलो ने हम के कई खार हम जो समस्या हम जो थकान के दूर करूं दीवाए और आप लोग मन के जो ना है अस्थिर अमराय से ने हुनी का जे गीत गोविंद बले हम जो जीवन आने खूबे माइमूर भूमिका निभा सोत अल गोटोक गीत के अमरावल फिर तुझ मोड़ निस्का होता गीत खुरिया मन चुनाव के हम पास सांगवाने
1: आले फिर सुनू गीत के
0: हाँ।

0: नया शिक्षक मिले दे और आप लोग जीवन आगे घर दे
1: हाँ।
0: और स्कूल नहीं गए ने कहा ले घर देता ने
1: हाँ।
0: तो ये समय आए आप के घर तोड़ और हुन हिसाब ने जो ना है पीला मन रोजे स्कूल जाओ तो संगे संगे घरे उन भाती रोजे पढ़ोत और आया बाबा बोले लेख करो कि पीला मन के खातोर आगे कम से कम एक ले डेढ़ घंटा रोजे बस उन भाती पढ़ावत भले
1: हाँ।
0: उन मन नहीं जानत पूछू लाए मानतर हुन मन के बोलो कि अदाय पुस्तक ढाकुन भाती सांग बोलो ने तो दाक अदाय बेरा होली जातोर ने
1: हाँ।
0: और दादी मन जो बेरा होली खातोर
1: हाँ,
0: तेबे मैं मोटा गढ़ रख सकले से तुई विदा धर
1: हाँ। तो जातो पूरे आमचो गांव कार्यक्रम सुनतोर सपाय गांव कारी दादा दीदी सियान सजन और संगजोरिया संगवारी मन के मैं मिटकी
0: और मैं कोना
1: आमी दोनों करूं से
0: जुहार।

आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आमचो गांव, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। कार्यक्रम घलर में लीजिए सुनिए सोनादई और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत।

0: sky.
1: Nani
0: साइट देते लाइट मारते जा।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

कार्यक्रम घलर में आप सुन रहे थे सोनादई और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 हुए हैं। बच्चों का कार्यक्रम पिलामन का जेगोट में अभी हम सुनेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में। प्रस्तुति है यशपाल सिंह ठाकुर की।

पीलामन का जे गोट ये कार्यक्रम सुनतो जमाए पीलामन के मोचो बाटले खुबे खुबे मया और लाड़। पीलामन ये कार्यक्रम ने आमी तुमचो काजे खुबे नगत नगत और ज्ञानचो गोट आमचो देशचो महापुरुष मंचो गोट और हुनमंचो जीवनाचो नगत सिकतो असन गोट मन के सांगू से असन महापुरुष मन आप लो जीवना ले आम के बार दखाऊआत आमचो जीवना काजे नगत सोर सांगुआत। असन तो आमचो देश ने कैक झन बड़े बड़े महापुरुष मन होला से मांतर मैं जे महापुरुष चो गोट सांगे दे हुनात महात्मा ज्योतिबा फुले। आजी मैं तुमके महात्मा ज्योतिबा फुले चो जीवना चो घटलो नानी बड़े गोट मन के सांगुआए। असन गोट मन ले तुमके काई नहले काई ज्ञानचो पाठ सीखुक मिरे दे। पीलामन महात्मा ज्योतिबा फुले चो जन्म 11 अप्रैल सन 1827 के महाराष्ट्र राज्य चो पुणे ने होन रहे। हुन मंचो आया चो नाव चिमणाबाई और बाबा चो नाव गोविंद राव रली। हुन मंचो परिवार चो थर माली बल्लो ने फूल चो माला बनाउन बिकतोर काम करते रहोत। हुनिकाजे हुनमंचो पूरा थर के लोग फुले नाम ले जानते रहोत। ज्योतिबा फुले पढ़तो लिखतो ने खूबे होशियार रला। हुनमन मराठी भाषा ने पढ़ाई लिखाई करला। हुनमन खूबे बड़े क्रांतिकारी समाज सेवा करतो बीता लेखक और दार्शनिक रला। सन 1840 ने ज्योतिबा फुले चो बिहा सावित्रीबाई संगे होली। सावित्रीबाई फुले आमचो देश चो पहल मेहरार शिक्षिका बले होला। उदल दाएं महाराष्ट्र ने धार्मिक सुधार करतो आंदोलन चो जोड़ रली। जाति प्रथा चो विरोध करतो काजे और सबके समान अधिकार देतो काजे प्रार्थना समाज चो स्थापना होली। जेचो मुखिया गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर रहोत। हुन समय

ने महाराष्ट्र ने जाति प्रथा बल्लों ने छिया लाता खूबे चलते रहे। लेकी और मेहरार मन काजे बले पढ़तो लिखतो काजे काई सुविधा और उआट नी रहे। असन बेरा ज्योतिबा फुले समाज ले असन गलत नीति रीति के गुचातो काजे आंदोलन मन चलाता। हुन मन सबले पहिल महाराष्ट्र ने मेहरार बेटी मंचो पढ़तो लिखतो उआट और छिया लाता की समाज ले बाहर गुचातो काम जो मूर करला। हुन मन महाराष्ट्र ने लेकी मन काजे पहिल स्कूल खोलतो काम करला। एची संगे संगे समाज ने और बले क्षेत्र मंचो उन्नति बाढ़ती काजे नुआ नुआ उआट मन करते गेला। पिला मन ये सपाय काम और आंदोलन चो फरक ये पड़ली कि लोग मंचो

सावित्रीबाई फुले भारत देश ने मेहरार मन का जे शिक्षा चो अग्रदूत रला और सावित्रीबाई फुले संगे असन कैक स्कूल मन खोलला जे थाने मेहरार और पिछड़ा जाति चो लोग मन के पड़तो का जे ठान मेर ली। तो पिला मन ये तो रली एमन चो जीवनाथ चो नगद गोट इची संगे संगे आमी गोटोक गीत बल सुनू।

तो पिला मन आमी असनी महापुरुष मंचो नगद गोट मन के तुमचो पूरे आंते रहूं आऊं। तो एबे दिया मके विदा, तो ए कार्यक्रम सुन तो जमाए पिला मन के मोचो बाटले खूबे खूबे मया और लाड।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की

0: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
1: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
0: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आरसेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत

0: डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international shores.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

0: समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his 3-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister S. Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busedi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometres of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarterfinal of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start

0: तपे जुहार दादा दीदी मन हमें बेरा पस्ता असनी आमचो रेडियो स्टेशन ने कई जन गुणकारी लोग मन कोनी समाजसेवी लोग मन नहाले और बोले कोनी अच्छा नगद काम करो लोग मन के हक देऊं से और तुमचो संगे भेट घाट कराऊं से असनी आज ही आमचो लगे फेर गोटोक दादा अमरला से आले एमन जो नाव के आमी जानू आले दादा नाव की तुम सांगून दिया
1: मचे नाव कामदेव बघेल है मैं ग्राम राजूर पारा सोर्रास निरू है और मचो व्यवसाय खेती है और साथ ही साथ सामाजिक
0: काम वाले करवा है तो ये सामाजिक हिसाब ने कहीं पद ने आशा शासन सुन ले से क्या
1: हाँ सामाजिक पद ने मैं ये बे मुरिया समाज छो आम तो पल ब्लॉक छो मैं सचिव पद ने आसे
0: और जिला पंचायत हिसाब ने
1: हाँ जिला पंचायत बोले मैं सदस्य आए
0: जिला
1: क्षेत्र क्रमांक 11 ले
0: तो दादा तुम चो जन्म बार कहाँ कहाँ होली और काय पढ़े लिखे कर ला सुन के सामने दे।
1: हाँ मैं राजूर ने ग्राम राजूर पारा सोर्रास ने प्राथमिक शाला में सोर्रास होली और माध्यमिक शाला मिडिल स्कूल बिसागुड़ा पारा ने मचो पढ़ाई होली उनके बाद ने मैं फिर हायर सेकेंडरी तोका पाल ने मैं 12वीं पास कर ले उनके बाद ने कॉलेज मैं बोले या तो मुझे सपना रहे लेकिन बीच ने मैं कुछ ब्रेक छूट ली तो मैं काय कर ले कि सुंदरलाल पंडित विश्वविद्यालय हम चोखाई पालने
0: आसे
1: तो उताले मैं फिर ग्रेजुएट कर ले बीए कर ले हाँ उन कर ले से मैं बीए करूँ बारी फिर खेती बाड़ी
0: ने काय काय लगातार हो से
1: खेती बाड़ी ने मैं धान ही भर लगाए से अब मछ लगे तो ज्यादा मतलब मरहन नहीं आए मतलब खारी जमीन मना से ठीक रहा आसन लगभग 8-10 एकड़ आसे होने में खेती करें इसे
0: और जसन समाज सेवा हिसाब ने जसन आगे और कहीं कहीं पद ने बोले रतुर होली पंचायत हिसाब ने
1: हाँ मैं पंचायत हिसाब ने और ये पार्टी बाट लेवल रहते रहे पहले मैं 2003 ने तोकापाल जो मैं मंडल अध्यक्ष रहे कि मंडल अध्यक्ष समय ने मैं बोले क्षेत्र चो और राजनीति क्षेत्र ने मैं पहला 1997 लगभग ने मैं पार्टी ज्वाइनिंग कर ली थी और मैं 2007-08 ने मगे मंडल अध्यक्ष पद भार पर दिला और उन समय चुनाव बल लड़ा लो तो उन समय विधायक बल क्षेत्र बना लो और विकास काम बल कर लो
0: विकास काम ने कर ओ काय काय कर काम कर ला तुम चो क्षेत्र ने तुम
1: हाँ क्षेत्र ने मैं 2010 ने फिर पंचायत चुनाव होली तो हुन थाने मैं जनपद सदस्य मर्ज क्षेत्र ने लड़ ले तो संगठन बांट ले फिर जनपद चो उपाध्यक्ष पद फिर मके दिला
0: अच्छा जनपद उपाध्यक्ष
1: तो मैं समझते रहे कि हम जो ब्लॉक ने पंचायत मन ने कई समस्या रू है कई पुल पुलिया है निहल रोड जो समस्या है पानी समस्या है ये मन के आमन मन विधायक के माध्यम ले ते बहुन काम मन पर स्वीकृत हुए और उन समय थोड़े जनपद ने नया समय ने गड़ो फंड बली लिया हम चो तो उन समय ने मन न्यामन मन पानी च दिक्कत रहते रहे तो आमन मन आप लोग फंड ने वाले गोटक टैंकर व्यवस्था है नहीं होले को नहीं लगे वाटर पानी च व्यवस्था है टंकी असन उसन मन आम मन पर क्षेत्र बनाते गए लो
0: बना लास ने
1: हाँ बना लो से
0: तो जैसन जनपद सदस्य रलो बेरा कितरो धुर ले कौन कौन गांव पढ़ते रहे तुम चो क्षेत्र
1: में जो जनपद सदस्य ने उन समय 27 पंचायत रहे उन समय
0: अच्छा 27 पंचायत रहे
1: 27 पंचायत
0: तो इतरो धुर ले काम चलते रहे तो और जैसन जनपद पंचायत रलो बेरा तो इतरो काम होली हुन चो पाछे चो फिर कसन होली
1: हाँ उनचो पाछे अमन मन बोले दूसरा कार्यकाल ने मैं बोले लड़ू रही लेकिन सफलता नहीं होली तो दूसरा कार्यकाल ने बोले काम होली हो तो काजे मैं फिर पद ने नहीं रहे पर बोले हम संगठन के माध्यम ने रहती रहूं तो उन समय बोले हम दौरा करते रहूं उन समय बोले होली काम हो तो काजे
0: फिर जिला पंचायत ने कसन सीट मिलते होली और कसन लड़ ला
1: हाँ मैं जिला पंचायत ने अमन मन ये भी सत्र ने 2000

0: 24 ने सभी दावेदारी रहू आप लोग संगठन के माध्यम कार्यकर्ता बंधु मंत रहू से तो हमने मैं बल दावेदारी कर ली मगे संगठन वाटले हो सके वरिष्ठता के आधार पर और मंडल कार्य कर ले से तो मग दखला होती है और मग फिर चयनित करला टिकट उम्मीदवार बनाला फिर उन मंच सहयोग ने फिर चुनाव प्रणाली ने प्रचार प्रसार ने आमन मन सबे लग गेलू और जन क्षेत्र च विकास कर तो काजी जन गरीब व्यक्ति तक जन सरकार च योजना आये दे उनके पहुंचा तो हम कोशिश करवा अब तो असन हम चुनाव मन ने फिर बात करते गेलू और आमन मन के फिर हन मन आगत लेवल जानते रहोत लोग मन कि नहीं ठीक है ये हम जो स्कूल मन ने बल चेकिंग करू की हुआ है और गांव गोड़ान बल बोलते हुआ है समाज बल सेवा करते हुआ है तो अब जनता फिर विचार कर ला
1: तो ये भी जैसा तुम जो ये जिला पंचायत क्षेत्र आए दादा हूँ कहाँ ले कहाँ तक
0: ये भी मछू लगे 30 पंचायत
1: 30 पंचायत
0: हाँ ये वार्ड डोंगरीगुड़ा कलेपाल है सोसन पाल ले सीधा रायकोट भेजरी पदर सालेपाल सालेपाल ले एकदम बारूपाटा बारूपाटा कलेपाल मावली भाटा बुरुंगपाल मतलब सीधा ऐसे मंडवा मंडवा ले एरंडवाल अंतिम राजूर कोहेपाल भीतर चो सबे गांव धरा पड़े तोकापाल आरापुर भेजरी पदर नैनमुर मटकोट रायकोट ये सब असन 30 पंचायत गली से
1: तो ये जिला पंचायत चो जसन ये सदस्य बनला सासुता और कहीं दायित्व तो दिला से
0: मैं ये भी कृषि सभापति बनले से होता कृषि सभापति ने आमन मन जी पहले तो सामान्य सभा सामान्य प्रशासन तो एक दिन जिला पंचायत ने बैठक हो गए तो हुन थाने आमन मन की आप लो विभाग छो होता समीक्षा हुए तो हुन मन के आमन मन जानकारी मन हुन मन के मगाऊ और जानकारी नहीं हो जाले फिर कितलो दिन तक तुम्हें मतलब ये काम के पूरा करा से असन हुन मन संग बातचीत
1: हो गए
0: और आमे कृषि सभापति चुनाते कृषि विभाग ने 5 असन शाखा है जैसे उद्यान की विभाग आए बिजली विभाग आए क्रेडा विभाग आए और मत्स्य विभाग है पशुपालन विभाग है सब जो अधिकारी मांग फिर मैं अलग अलग फिर बैठक धरू कितलो हितग्राही के कृषि विभाग ने मतलब लाभान्वित होला से मत्स्य विभाग ने कितलो अपन मन मत्स्य पालक मन के मछली वितरण कर लास और तालाब जो पट्टा कसन बना लास और उन मन के ऋण कसन स्वीकृत कर ला सा ये सब जो आम होता जानकारी समीक्षा करूँगा
1: अच्छा
0: हाँ तभी हम जो लोग के लाभ मिले नहीं सबसे पहले सरकार जो योजना से उनके जानुक पड़े थे उनके बाद ने फिर हन मन काय करे से उसके कितरो लोग के आम के लाभ दिलाला से उनके फिर आम के जानुक पड़े थे और हो सके आमन मन पर कागज इन चिया से बोल लेम नहीं हो फील्ड पर आम के जाऊ लागे
1: बिल्कुल
0: वास्तव में उन आदमी के मिरली से कि नहीं मिरली
1: से
0: नहीं तो काया है कि सरकार उतरो योजना निकरा ली से उनको लाभ नहीं धरले कोई मतलब नहीं है तो ये मन काया है कि कई आदमी के एक ही बार देते रहते जैसे कि गाय वितरण करते रहे नी होले ने काके मुर्गी वितरण करते रहे जोन जोन हुन मन जो आसत होनी छोनी मन के वितरण करते दीवा ओसन नहीं कई क्षेत्र ने सब लोग के लाभ मेरो
1: ये सब के
0: दुख लागे से
1: और जैसन कोनी तुम चो संग संपर्क करते रहे जैसन का कहे तुम चो गांव पारे चो लोग मन हुन कसन हिसाब ने तुम के भेट घाट कर सो कसन संपर्क कर सो
0: कोनी समस्या रही से कोनी चो बात रही से कई काम रही से तो मगे बिहाने भेट होगा और मामी 8 बजे ले तो मान चल थोड़ी खेती बाड़ी बार थोड़ी घूम उग जाऊ 9-10 बजे तक 11 बजे तक मैं फिर बाहरी चु लोग मन को नहीं ला जाए उन मंच समस्या सुनो और उतलन फिर डंडिक फिर ऑफिस जनपद बाटे नेहल कोनी बाटे खेड़ फिर बुलू खुला जाऊ
1: तो ये बे जसन मुरिया समाज चो बोले सचिव आए बोलून बोल रहा है
0: हाँ।
1: तो ये बे तुम्हें समाज हिसाब ने काय का सुधार कर ला सहा से
0: ये बे का पुराना रीति रिवाज के आमन मन चो ये चो लोग मन खिड़िक भूल को खोजे सोत तो आमी बोलो उसकी जोन पुराना रीति आसे उनकी नहीं भूल को क्योंकि पुराना रीति ने आमन मन के खूब मीठा सास ये बे चो उन सिहान मन असन गुणकारी और ज्ञानकारी लोग रला कि आमन मन चो के असन असन चीज मन बनाऊ दिला से उन मन के बिल्कुल नहीं भूल को और ये बे चो लोग आमी बनल बोल उन नीति नहीं चले आम चो पुराना रीति इतना बढ़िया आसिक होनी रीति चल लू जाली आमन मंचो पीला झीला जीवना स्तर सब अच्छा रहे दे

0: असन आमी हुन मन के समझाती जाऊ से बिया टीका ने हो चाहे मरनी सरनी ने हो चाहे जन्म बले बच्चा हो चाहे हुन सब चीज जसन पुराना रीतिया से हुन रीति आमन मन जी रो बोलते आमन मन समाज ने सांगते जाऊ।
1: तो ये बीच लोग मन करुक धरला से फिर
0: ये बीच लोग थोड़े खेडी का बीच ने खूब गड़बड़ रही जसन की हम जो बिया शादी नहीं बल नहीं अमन मंच लग तो आगत ले बिया शादी तो बेटी ने तो भी थी काम आए बेटी ने तो भी थी काम आए पुराना परंपरा आई हूं हम जो मुरिया लग और हूं थान बेटी ने उन बारी हूं हम जो जोड़ा काय काय धरू ने तो भी थी आए उन सब चीज की ये भी खेडी दूसरा लाइन ने जाऊ खोजला तो हुन लाइन के फिर हम आपस आने कोशिश करूं उसे और खूबे जगह नहीं आई सोत हाँ तो का पाल बलाक ने पूरा कंट्रोल कंट्रोल तो नहीं आई लेकिन कंट्रोल कर तो नहीं आंसू
1: आप लोग बाटले वाट
0: बनाओ चले से
1: तो और जैसन एबे जिला पंचायत चो काम तो चले से चे तो तुम चो और काय काय वाट आसे ये तो समय ने काय करतो रहे कसन करतो रहे
0: ये तो समस्या ने का समय ने तो समय ने आमन मन का है कि आमचो गाँवगढ़ आमचो क्षेत्र ने जो आमचो सामाजिक स्तर ने आमन मन चो जसन की लोग आगे बढ़ो ते चुका आमन मन उत्थान करो तो का प्रयास करूँ उसे और रही बात कि राजनीतिक क्षेत्र ने आम बोले मान के चल कौन फिर नीचा आस्था हो तो काजे लेकिन आए नहीं तो अब हुन मंच ऊपर से बात आई जसन लगलू से सीढ़ी संगठन जो माध्यम ने जोड़लू से जब बोले दे तो हुन ताने तैयार हूं दख तो राय संगठन जो चाहे दे ठीक है नीचे आली होनी बोले ठीक
1: हुन बोले ठीक है नीचे हले आप असनी बोले कार्यकर्ता काम करते रहो तो एबे जसन तुमचो क्षेत्र ने कोनी नगद पढ़ा लिखा पीला मनासोत कोनी अच्छा आगे बढ़ला हुनमन के कहीं सहरा निका जे कहीं करले साहस
0: हम से जोन पीला मन अच्छा नंबर आने सो तारू कोनी कोनी अच्छा जैसे नवोदय विद्यालय जवाहर उत्कर्ष विद्यालय मन है उसन मन ने पास होए सो तो हुनमन के आम के अच्छा प्रोत्साहित कर तो बिचारा अंबर लगाऊ से कि हुनमन के कई बोले भेंट करूँ माता पिता के बोले संग ने भेंट करूँ ते उत्साह बढ़ाऊ पीला मन आगे पढ़ो तर अच्छा नंबर ने पास हूँ आगे बढ़ो तो बोलो
1: और बड़ो कोट दादा ये जसन तुम्हें राजनीतिक हिसाब ने आगे बढ़ते

0: राजनीति में तो मैं एता जान डायरेक्ट कोनी जाऊ के
1: नहीं,
0: क्योंकि लोग सो मन की जीत तो रासे कि तब उन आदमी आगे बढ़न बर उनके एक नेता के रूप में मान दे, क्योंकि हर कोई काम के गांव चो समस्या के जाऊन लड़ो और जो चो काम नहीं हो ऐसे हुन चो काज बल लड़ो और हुन चो काम हो ते भी हुन आदमी के ऑटोमेटिक मांगते जाते कि ये आदमी करु सके और ये जाऊन लड़ुआ है और ये काम के करा हुआ है। असन भावना लगात रहा से ये तो होली और कई सरकार जो योजना बल कोई गलत काम हो ऐसे तो हुन चो काज बल आदमी आवाज उठात रहा से
1: अच्छा
0: और लड़ तो रहा से जसन क्या में लेमसन बल को नी दिन किसान चो धान के नी धरे सोत काय का नी धरे सोत हुन चो काज बल कोची लगे सांग लगे ना तो धान नी धरे सोत नहीं तो आम के तहसीलदार ने तहसील तक काम आ से सब जाऊन होता डंड बल खड़े हो लागे काम तो हो तो बीतिया नहीं हो तो बीतनी हो तो बीत होगा लेकिन हुन सब चीज नहीं बोला आम की करुक पड़े से सोचे हम नेतागिरी करू ना आगे बढ़े बोल तो काम नो लोग जो सेवा कर तो रहा थे तब ऑटोमेटिक हुन काम हुआ और आगे बढ़ तो फिर चांस हुआ ऑटोमेटिक लोग मांग कर दी कि ये ना तू खड़े होना तु अच्छा जाऊन बोलुआ लड़ुआ और समस्या बल तु सुधरा हुआ असन होन बारी ये भी चुपीला मांग बोल हुसनी हो तो रहा
1: तेब तो
0: तेबे तो हुन था ना ऑटोमेटिक जनता मांग करे दी पब्लिक मांग करे दे और ये था ना सना है मैं नेता आए बोलू काकी फिर र टाइप फो टाइप बोल ले बोल
1: नहीं पड़े
0: सब बात के सुनुक पड़े
1: आए आए
0: गहन अध्ययन करुक पड़े से
1: हाँ हाँ हाँ
0: तेबे हुन आदमी के कोनी बोल ये थोड़ी ठीक आए ना बोल दे
1: बोलो ने कोनी राजनीति ने बोले जाऊ सको मानतर हुनके खूबे सोचुन विचारुन और लोग मन चो सेवा कर तो काजे पूरे एवक लागे
0: एवक लागे
1: फिर हुन पाछे फिर हुनके लोग मन पूरे कर दे ने और कहीं बाचलिस तुम चो बाटले सांग तो बीती जाले सांगा
0: और आपन मन चो ये बे आम की युवा साथी मन के मैं यही सांग चाहे से कि ये बे आपन मन जन पुराना पद्धति आसे होन चीज मन के आमन मन के धरुन चल तो रहा से और अब जो पीला मन का आय करे सोत की बाप चु बात के नहीं माने सोत सिहान चु बात के नहीं माने सोत पुराना रीति बात के नहीं माने सोत भाई तुम आगे बढ़ो कोई दिक्कत नहीं आए लेकिन गांव जो चीज के बल मान तो रहा से जैसन की देवी देवता बनाओ से समय ने आमी पूजा पाठ बलि आए गांव चो बाजार मंडी आए तिहार बाहर आए गांव चो रीति रिवाज आए देवी धामी के बलि हम के समय में करुक पड़े से उन लहिन ने करुक पड़े से घर चो बल दखुक पड़े से सियान सजन चो मान सम्मान करुक पड़े से ये चो पीला मन के मैं यही संदेश दे चाहे से बड़े चो आदर कर तो मान सम्मान कर तो बहुत जरूरी आज अब हन मन चो दिशा निर्देश नियाम के चल लो ने ते पर ठीक आस
1: ये नंगत गोठाए काय का जे कि आम के नंगत पढ़ा लिखा हो तो जरूरी आए
0: जरूरी
1: नुआ गोठवन के आमी सीखूं धरूं मानतर जूना पुरखति रुसुम मन के बोले धरून भाती चलते रहे
0: है।
1: ये नंगत गोठ के तुम्ही आम चो रेडियो सुन तो ऐसा पाए लोग क्लास तुम चो काय काय कसन कसन काम चले से और कसन करतो रहे ये नंगत गोठ के तुम्ही सांगलास आले तुमके खूबे खूबे जुहार
0: जुहार तुम केवल जुहार।
2: कार्यक्रम नंजर में आप सुन रहे थे कामदेव बघेल से भरत कुमार गंगादित्य की भेंट वार्ता। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। कार्यक्रम खेल पत्रिका में प्रस्तुत है कबड्डी खिलाड़ी नमिता बघेल से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता।
3: मन सपाय के सेवा जुहार खेल पत्रिका कार्यक्रम ने आज यहाँ में फिर असन गोटो खिलाड़ी नवनी संगे भेंट गात करूँ से एमन खुद तो खिलाड़ियात मानतर संगे संग का है कि कई कसन खेल मन के सिखा तो काम बल करुआ सब ले आगे तुचो नाव सांग।
4: मुचो नाव नमिता बघेल।
3: नमिता बघेल।
4: हाँ नमिता बघेल। अच्छा। मैं बस्तर ले रहती हूँ।
3: हाँ हाँ तो नमिता बघेल ए सांग जसन की बल्ले ने आगे तु ची सांग बल्लेन एबे बल्लेन काय कर सकते
4: एबे एबे तुमच पढ़ाई चले से और संगे संगे मैं पीला मन के सिखाऊं बोले आए कराठा सिखावा जूडो सिखावा और आगे कसन मतलब आत्मरक्षा करते रहे खुद चो खास कर लेकी मन का जे मैं ये सिखाते मतलब आगे सिखाए
3: सिखाए। अच्छा तो एबे पढ़ाई बोले ने काय
4: मैं एबे एमए ने आसे
3: एमए।

0: हाँ एमए करें से
1: काय
0: मैं भी
1: सब्जेक्ट धरले से
0: हिंदी साहित्य ले करें से।
1: हिंदी साहित्य।
0: हाँ
1: तो जैसन की ती बल्ली से पढ़ाई बल कर सीस
0: हाँ
1: और जूडो कराटे
0: कराटे बल
1: सिखाई से
0: सिखाएं
1: जरे।
0: से।
1: तो सबले पहले सांग तू ये जो आये जूडो सुराटे
0: हाँ
1: जूडो कराटे
0: कराटे
1: कहाँ ले
0: हाँ
1: सीख ले।
0: ये मैं स्कूल बेराल सीख ले आमचो थान बल जसन मैं ये भी सिखाएं से उसनी आमचो स्कूल ने बल गोटक मैडम इतरे आमचो कोच हुन सिखाए मोके फिर उसनी उसनी फिर हुन एकेडमी ले जुड़ते गेले मैं। फिर एक टाइम ऐसा नहीं ली कि स्कूल गेम हुआ है आमचो तो हुन लेवल में पार होते गेले और मोचो क्या सिलेक्शन होली स्टेट राज्य स्तरीय खेलने जूडो नीचे तो हुताबल में जीतले गोल्ड मेडल आनले। फिर हुनचे बाद ले गेले मैं दिल्ली नेशनल खेलुक फिर हुताले फिर मचो ये जूडो खेल फील्ड ले शुरुआत होली से।
1: अच्छा हाँ। और ये संग संग और दूसर बल खेल।
0: हाँ और ये जो संग संग में खेलने से बॉक्सिंग खिनिक खिनिक खिनिक जाने और कुश्ती खेलने से और कॉलेज ने मैं कबड्डी खेले और
1: अच्छा
0: कबड्डी
1: कबड्डी।
0: क्रिकेट हाँ
1: हाँ
0: हाँ
1: तो ये तो अच्छा है मानतर सबले पहले सांग की जैसन की जूडो खेल है बोले
0: हाँ
1: ए कराटे।
0: कराटे कराटे
1: हाँ कराटे बोले ने कहा कि गांव चो लोग जोगे नहीं जानो
0: हाँ
1: है कि नहीं।
0: हाँ
1: कबड्डी खो खो के तो जानो
0: हाँ
1: मानतर ये कसन बीती हो ऐसी ये चो मतलब का है खेल तो।
0: कराठा बल्ले जसन आज चो आजकल चो देश दुनिया ने तो लेकिन मन संग कितरो काय काय होए से तो हुनी हिसाब ले देखें तो बल्ले कराठा सबले अच्छा चीज है कि हुन मन खुद खुद के मतलब बचक सकोत जसन छेड़छाड़ होए से और जितरो बल लेकिन मन संग अव्यवहार होए से हुन मन खुद के बचक सकोत खुद लड़ुक सकोत मारुक ए मतलब ए, कराठा सीख ले कौन हाथ ले कसन मारत रहा है कहाँ मारत रहा है ये सब जानकारी मिले से और पाए चो यूज कहाँ करुआत पाए ले कसन मारुआत कौन हिस्सा ने मार ले कसन पावा ये सब चो जानकारी मन दिमाग में पिला
1: अच्छा
0: मन के
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: बड़े लोग के मन मतलब हाई स्कूल।

0: तब हुन हुनचो और एक बेल्ट हुआ है हुन बेल्ट बल्ले आमचो हुन भगवान है बेल्ट हुन
1: बेल्ट।
0: हाँ
1: अच्छा
0: तो हुन जहन हमी पहली दूसरी पढ़वाऊ तो उसन हुनचो कलर हिसाब ले आगे क्लास बढ़ते जावा है हुनचो।
1: अच्छा
0: सबसे पहले व्हाइट बेल्ट हुआ है फिर
1: हाँ
0: पीला हुआ है फिर ऑरेंज हुनचो पेपर होते जावा है हुनचो पेपर देते गेले आगे प्रमोशन जसन हुआ है तो
1: हाँ
0: हुनचो
1: हाँ
0: उसनी आमचो बल हुन क्लास में बढ़ते जावा है
1: बढ़ते जाओ।
0: हाँ फिर हुनचो जे
1: अच्छा
0: सीनियर जूनियर बनाओ हुनचो
1: अच्छा तो ये जसन की बेल्ट भी थी बल्ले से,
0: हाँ
1: जसन की पहली कक्षा दूसरी कक्षा असन है बोले
0: हाँ
1: हुए, तो जसन की ये कसन पढ़ाई हुई से बेल्ट भी थी एक ले पहले।
0: ये जो कराठांची हुआ है जसन करुण दकातरा हुन जो काता बुलवात जुनुनियो बुलवात उनके करुण दकातरा है हुन जो उन अच्छा करे नहीं उनके फिर आगे बढ़ाते जावत
1: अच्छा
0: असन लिखित परीक्षा असन पढ़तो बीती तो नहीं हुए मानतर फिजिकली करुण दकातरा है
1: करण
0: करा
1: दखाते
0: हाँ
1: अतला। अच्छा बोले ने एता जसन की मान लो पहला साल जोन करे से, तो उनके बोले किट्ठा नसन जोन सिख तो बीती है किट्ठा नसन रहे से।
0: सीख तो बीती तो मेन आए पंच शरीर ने कसन मारत रहा है कसन मुट्ठी बांध रहा है और लात कसन मारत रहा है आगे ये शुरू तो ये चीज सिखावत और खुद के कसन बचात रहा है अगर सामने ले कोनी अटैक करे तो कसन बचू हा सुन हुन चीज ले ये सब सिखावत शुरू ने।
1: अच्छा और फिर दूसरा बेलट बिल्टू।
0: दूसरा बेल्ट ने फिर हाथ पाए मजबूत करत रहा है
1: हाँ
0: खिन
1: हाँ
0: होता फिर हाई क्लास एते जावा है पंच फिर खातर वाला है मारतर वाला है आगे लोग के
1: अच्छा
0: तेवे हाथ पाए मजबूत बने से
1: हाँ हाँ
0: और मुरुम ने कराठा मतलब पुशअप मार तोर और पंच मार तोर ये सब हुआ है फिर आगे आगे उसने बढ़ते जावा है और
1: अच्छा हाँ हाँ बोले ने अलग अलग सीख तो जो तरीका मनाए
0: हाँ
1: ये सब आसे।
0: हाँ ये सब आसे
1: अच्छा तो इस संग संग दख बोले ने खान पान चो बोले कहीं असन ज्ञान दे इस
0: नहीं
1: वक्त
0: खान पान चो तो उतरो ज्ञान नहीं देव
1: असन।
0: हाँ
1: अच्छा बोले ने खान पान असनी
0: हाँ
1: साधारण।
0: साधारण है खान पान जैसे नामी आदिवासी लोग खाऊं से
1: हाँ हाँ
0: उसने
1: अच्छा उसने यार
0: हाँ
1: नहीं तो कहीं लोग बोलो तो खेल उल का कहीं डाइट वेट चो खाते हो।
0: नहीं नहीं असन तो कहीं ना मतलब उन खेल तो चिबेरा जैसे हम खेलू जाऊं से कहीं बाहर तो आप लोग वजन के खिनिक संगात रहा है उन खेल तो जितरो वजन ने हम खेलू से वेट हिसाब ले खेला वजन हिसाब ले तो हुन वजन जो हुन पाट नहीं होता है ना कम होता रहा है
1: अच्छा हाँ हाँ तो बोले तु कौन बेल्ट तुक मेरे लिए से भी
0: एबे मैं पर्पल बेल्ट ने आसे अबे
1: पर्पल बेल्ट।
0: हाँ
1: अच्छा बोले कितलो नंबर भी थी बेल्ट आए
0: 4-5 नंबर भी थी
1: 5 नंबर भी
0: हाँ
1: थे। अच्छा एच ऊपर बोले और आसे
0: और आसे था और एच ऊपर फिर ग्रीन बेल्ट आसे फिर ब्राउन बेल्ट आसे फिर ब्लैक बेल्ट आसे
1: अच्छा
0: और 3 बेल्ट और
1: हाँ हाँ
0: बाजलीस
1: तो एच का तु कहीं प्रयास।
0: नहीं प्रयास ते वे करें से फिर धीरे धीरे प्रयास जारी आसे मुझे
1: हाँ तो दक हाँ काय सुनीता काय
0: मनमिता वगैरह
1: नमिता
0: नमिता
1: हाँ नमिता बघेल तो इतो इतलो अच्छा बोले ना गाँव ने रोन बाती सीख लिस मानते दाए संगे संगे पढ़ाई और फिर सिखा तो बोल काम
0: हाँ
1: करे।
0: सीखा तो वाल काम करें
1: अच्छा
0: समझने
1: बोले कहाँ सीखा हुआ से।
0: एबे बस्तर ने सिखाए से एबे तो शुरू नहीं ए साल जो योजना यो है हुन शुरू नहीं हुई होली से योजना अंतर्गत बल्दे सरकारी योजना है गोटोक रानी आत्मरक्षा कन्या प्रशिक्षण हाँ
1: अच्छा
0: बालिका कन्या प्रशिक्षण करुना है तो योजना शुरू होले तो आम के पटाव आथरी स्कूल ने अलग अलग जितरो वाला मियासू तो अलग अलग स्कूल में पठा जावात तो मैं बस्तर क्षेत्र ने मैं क्षेत्र ने मैं पीला मन के सिखावा हाई स्कूल और मिडिल स्कूल जो लेकी मन के सिखावा मैं
1: अच्छा हाँ हाँ हाँ
0: तो
1: तो बोले नेचो बोले सिखा तो भी थी कसन सरकार बांट ले रहे से कि तुम।
0: इस सरकार मतलब जो मामचू मानदे आए हुन सरकार बांट ले ऐसे
1: हाँ
0: और सिखा तो भी थी तो आमी जसन सीखूं से
1: हाँ
0: और आमी आम चलक जो नॉलेज आसे जो जानकारी आसे हुन आमी पूरे चलोक के देऊं से
1: अच्छा हाँ हाँ बोले अबे किट्ठा नसन स्कूल की तुझे सिखा
0: स्कूल
1: था
0: एबे 10-15 ठन स्कूल ने तो होली समझो
1: असन।
0: हाँ
1: अच्छा बोले ये सीख तो काजे बोले कौन टाइम कौन समय नंगत रहे से जाले।
0: ए सिख तो काजे जसन बिहान बल काय तो रह से और बिहान बिहान बल्ले जसन सुबह टाइम ने तो बॉडी काय तो रह से उदल दाए तो उदल दाए बल कर रुक सकूं और शाम के टाइम ने
1: अच्छा
0: और प्रैक्ट हाँ सुबह शाम
1: अच्छा हाँ हाँ तो बोले ने हर समय मतलब एक ही टाइम ने एक ही स्कूल आए कि दूसर बोले
0: नहीं स्कूल मन ने तो सरकार बाटले आदेश ली कि हर स्कूल ने एक एक घंटा सिखा देती है
1: अच्छा
0: तो उन हिसाब ने देख ले एक एक घंटा ने तो सब स्कूल ने काय तो करुक नहीं हुए मानतर अलग अलग दिन ने अलग अलग स्कूल ने असन
1: अच्छा
0: सिखाऊ
1: हाँ हाँ बोले ने हर दिने सब स्कूल ने नहीं अलग
0: हाँ
1: अलग दिन है अलग
0: अलग
1: अलग
0: अलग
1: स्कूल
0: स्कूल
1: ने।
0: ने असन टाइप जो हुआ है मतलब और
1: अच्छा
0: 1 लाख की दीवार 7-5 7-8 ठन स्कूल तो 1 लाख तो

0: करी नहीं हुई थ्रू स्कूल के, तो
1: हाँ हाँ हाँ
0: अलग
1: तो है।
0: अलग दिन ने असली
1: हाँ
0: करते जाना
1: सिखाता
0: है।
1: रहे
0: हाँ
1: जन।
0: सिखाते रहे।
1: हाँ, बोले ने दख तू सीखा इस गांव चो लेखा लेखी मन सीख तो का जे खाली लेखी
0: हाँ
1: मन गया है वे।
0: हाँ ये तो लेकिन मन क्या है, मात्र जो लेका मन बोले ऐसो सीखाम बल सीखाऊ बोले उन मन के मैं नाई नहीं बोले या तुम बल सीखा बोलवाए तुम चो काज बल जरूरी है बोलवाए
1: अच्छा
0: और सिखाए उन मन के बल।
1: हाँ, तो कसन रुचि
0: हाँ
1: असाद
0: रुचि तो धरुआत पीला मन और नया
1: अच्छा।
0: चीज आए और गांव के लोग अधिकतर नहीं जानोते ये चीज के,
1: हाँ
0: तो नया चीज कहीं सीखो को मीरे से बल्ले दख तो लोग बल ज्यादा ऐसो तब सीख तो काज बल हरी खुआत पीला मन
1: हाँ हाँ
0: नया चीज के सीख तो काजे।
1: अच्छा दख तू ही तो अभी सीख ली सारो सिखाई सी बोले थू तू के खुद के कसन लागे से।
0: खुद के तो मके खूबे अच्छा मतलब खुश एकदम खुश लागू है कि मैं इतरो ये लायक बनले कि मैं आगे और लोग मन के सिखाए से,
1: हाँ
0: तो खुद सोच ले हरिक लगवा मैं कहाँ रहे और कहाँ मर ले
1: हाँ
0: असन
1: मर
0: लगू
1: ले
0: है।
1: अच्छा। हाँ, हम तो आए छे
0: हाँ
1: बोले ने कुछ देहे पाए काज बोले एकदम
0: शरीर काज
1: सर
0: वाले एकदम सुस्त एकदम स्वस्थ लगू है एकदम।
1: अच्छा। हाँ, तो धक्का और कबड्डी बोले खेलते नहीं बोले से।
0: हाँ कॉलेज ने खेलते रहे कबड्डी
1: अच्छा तो ऐसे बोल कोनी बाटे बाहरी बोल खेल
0: नहीं
1: ले।
0: बाहरी उन चो बाहरी नहीं गेले से मैं कबड्डी चो जूडो चो बस गेले से जूडो कराठा काजे,
1: अच्छा
0: तो एक हार जाऊ रहे मैं बालोद जाऊ रहे और एक हार दल्ली राज रहा जाऊ रहे स्टेट राज्य स्तरीय होली और बालोद ने फिर गोल्ड मेडल आने में सेलेक्ट होले, फिर एक हार जगदलपुर ने बल हो रहे फिर मोक पटाला दिल्ली नेशनल खेलू गए होता पटौर हो
1: अच्छा तो होता कोई नंबर वगैरह ही ली
0: नहीं होता तो नहीं आनुक
1: नहीं आनुक सकली।
0: सकले।
1: अच्छा राज्य स्तर तक तो ही ले
0: हाँ
1: मंत्र नेशनल ले तो अमर लिस्ट बोले।
0: अमरलेस
1: हाँ, तो ये तो खूब अच्छा है। नमिता बघेल लग तो देश स्तर ने तुझो जो प्रतिभा किया है
0: हाँ
1: अमरालिस। बोले ने एक हार सफलता नहीं तो
0: हाँ मैं
1: दूसरा।
0: चाहे से क्या पर मैं नहीं करुक सकले हुन मचो जो मैं जो उनके सिखाए से हुन मन जाओ तर उता प्रदर्शित
1: प्रदर्शन
0: करो ता
1: करो।
0: आप लोग कला
1: हाँ
0: के।
1: अच्छा हाँ, तो ये कबड्डी बल्ले से कबड्डी ने तुझ कसन रुचि होली कसन कबड्डी।
0: नहीं हुन कॉलेज कॉलेज चो गेम होए आगे कॉलेज करते बेरा तो अलग अलग कॉलेज ले होत लेकिन मन खेलू कुलाए, तो मैं देख ले कसन खेला है मन नहीं जानते रहे असन खेलुआ बोलते, फिर मैं सर के बोलले सर मैं बोल खेलू है बोलते, सर बोला आओ ट्राई करे खार बोलो ठीक है सर बोलले, मैं फिर गेले होता खिनिक हुन चल फिर ले लोग मन के देख ले कसन रेडनेस होत कसन छूनेस होत वापस, तो खिनिक इंटरेस्ट एते गेली मके
1: अच्छा
0: तो हुनील फिर कबड्डी वाल खेलू सीख ले मैं।
1: आसान।
0: हाँ
1: हाँ, लेकिन कबड्डी तो किने डर भी थी
0: और
1: खेल
0: डर भी त्या हाथ पाए टूटता भी त्या कि
1: नहीं तो
0: नहीं
1: बोलने से।
0: अग
1: हाँ
0: नहीं टूटा लो नाल वाल तो
1: आसान
0: नहीं
1: टूटक पड़ू
0: है
1: है
0: तेवत मजबूत हो दे हाथ
1: हाँ
0: पाए।
1: उन बल तो है मांतर दक कबड्डी खेल तो काज बोले किने अच्छा
0: हाँ
1: ले कहीं
0: तंदुरुस्त
1: चीज के
0: रहो कुला
1: ध्यान देव
0: हाँ
1: पड़े से
0: हाँ
1: है कि नहीं।
0: जैसे खेल वेल करते बड़ा ज्यादा खट्टा वट्टा खातुर नु है।
1: अच्छा
0: हाँ खट्टा वट्टा नहीं खाता रहा है मीठा वाल नहीं खाता रहा मतलब बॉडी के खिनिक के बैलेंस करूँ संगात रहा है खेल तो
1: हाँ
0: लायक जो।
1: अच्छा हाँ, तो दक कबड्डी खेल तो ताने किनिक चलाकी होतर बोले जरूरी हुए
0: हाँ
1: से है
0: अब
1: क्या।
0: दिमाग जो खेला है
1: हाँ उन तो बोलने से।
0: कौन बाट ले कसन है सोत कहाँ चलो कसन निकरे सोत को के छीं ले कसन होए दे असन सोचू पड़े से और जाऊ पड़े से
1: हाँ
0: रेड रेड जो निवाए हुन मन के।
1: हाँ हाँ हुन तो है। तो अब तक कोनी असन कबड्डी तो चुका ही प्रतिभा के दक्का तो
0: नहीं
1: कहीं
0: कबड्डी ने चूतरो प्रतिभा नहीं रली मचो
1: नहीं रहले।
0: हाँ
1: अच्छा
0: कॉलेज तक ची रली बस
1: हाँ हाँ बल्ले ने अस नहीं खेलते रहे इस
0: हाँ
1: भी।
0: नहीं खेलते रहे इंजॉय काजे
1: हाँ
0: खुद जो
1: हाँ
0: मनोरंजन काज खेलते रहे।
1: अच्छा तो दक ये भी हिंदी सब्जेक्ट ने तो एम ए करे से बोले से ये मतलब स्नातक तक काय काय सब्जेक्ट विषय रली जाले।
0: स्नातक मचो बीएच रहे बैचलर ऑफ आर्ट्स हुतायल कर ले मैं पीजी कॉलेज ले करते रही तक ग्रेजुएशन होली फिर भी फिर ये साल फिर करें से एमए।
1: वाले एम ए कौन आजकल तो सेमेस्टर
0: नहीं
1: है?
0: प्राइवेट देश में
1: अच्छा प्राइवेट देश है।
0: हाँ
1: अच्छा कौन सेमेस्टर तक खोली जा रहे।
0: ए फर्स्ट ईयर कंप्लीट होली से सेकंड ईयर जो चालू
1: अच्छा
0: हुआ है अभी।
1: हाँ, तो बोले ने दक तू तो खिलाड़ी बोली आज सिखाइसिस बोले बोले ने पढ़ाई लिखाई करुन बाती बोले ने तुझो काय विचार आज जाले
0: पढ़ाई
1: मतलब आगे काय सोच ली सिस।
0: नहीं एवे तो हर चीज ने कंपटीशन तो बोल ली तो मैं सोचे से खुद चो कहीं करें दे असन पढ़ाई पढ़ाई के साथ चल उन संगात रहा है मतलब साथ ने पढ़ाई बल चलते रहो अरे बाटले खर्चा जोन बल कमाई
1: हाँ
0: उमाई है हुन बल होते रहो
1: हाँ
0: असन सोच ले सर कहीं आगे अगर

0: तो नी कमाले तो कहीं खातो काज बोल नी
1: नहीं
0: मिले।
1: मेरे।
0: तो
1: हाँ
0: खेती बाड़ी करतो जरूरी है, हुन बल सीख थोड़ा है, मतलब लाइफ ने हर चीज के सीख रहा जरूरी है, नाम चीज काज काम दीवाए।
1: हाँ, हम तो आज ही
0: हाँ
1: तो असन बोले तुम जो घरे बोले असन कर सो खेती बाड़ी
0: ना,
1: वगैरह।
0: हम अम्बल करूँ, धान वान लगाऊँ, अम्बल जोंदरा उंदरा
1: अच्छा
0: घरे लगाऊँ,
1: हाँ,
0: जाऊँ रोपा रोपा लगा के धान काटा, धान का टुकलाए जाऊँ
1: अच्छा जवा
0: बेड़ानी।
1: बेड़ान। अच्छा तो गाँव चो सब तो काम करो लाए पड़े से
0: हाँ
1: आगे जुगे चाम जो जीवना खेती बाड़ी
0: खेती बाड़ी है।
1: है कि नहीं।
0: हाँ
1: हाँ, तो दक इतलो अच्छा तुई भले ने जोन पढ़तो लिखा लेकिन मन के कराटे सिखाई सीस और खुद चो जोन जीवना का जबल कहीं ना कहीं असन तु सोच ली सीस पढ़ी सीस
0: हाँ
1: तो ये तो अच्छा गोटा है। आम चो जो नौजवान लेखा लिखी मन सुन सो जाल तो चो गोट के सुनन बाती कहीं ना कहीं असन तू चो असन मतलब जीवना काजे चारों दिशा ने कहीं ना कहीं असन सोच लो नाल तो आजकल नहीं होए
0: नहीं होए।
1: है कि नहीं।
0: हाँ
1: आजकल चो जोन जीवना चो जोन तरीका है जीवना चो जोन शैली है बोले खेनिक बदल ली से
0: बदल दी से।
1: है कि नहीं।
0: हाँ
1: पूरा प्रतिभा ज्यादा लागे से
0: हाँ
1: आगे चो संतनो
0: नू है
1: है
0: आगे
1: कि नहीं।
0: चल।
1: हाँ, तो दक नमिता बघेल तो संगीत लो अच्छा अजी गोड बात होली फिर के भी तू अच्छा सिखालीस बल्ले तू चो चेला चेली मन बनुन आगे गेला जाले फिर एवं बाती सांग से तो आजी काजी खूबे खूबे जुहार
0: जुहार सर, सबके जुहार, सिवा
1: जुहार।
0: जुहार।
2: कार्यक्रम खेल पत्रिका में आप सुन रहे थे खिलाड़ी नमिता बघेल से बलवीर सिंह कच्छ की भेंट वार्ता। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं लखेश्वर खुदराम और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत।

डेबरी धूर नुआ मनु के रूख खाए मुर मुरा बसुन दखतो। डेबरी धूर नुआ मनु के रूख खाले बसलो दखुन संगवारी मन संगे हुंच लगे जाऊन बाती हाल चाल के पूछे से, दादा तुई कौन गांव चो आस ना नुआ नुआ दका देसिस? आज ही ले पूरे तो तुके आमचो परगन्ने के भी नहीं दखलू, और काहे का जी तुई मुरमुरा होन बसलीसिस दादा? सांग मैं एलंग नारिया आए ना, एलंग नारिया डेबरी धूर आए, और ये मचो संगवारी मना बिरली नाथ तो काजे निकरलू से, तुई आमची लोकसन तक जान पड़सीस ना, तुके काय तकलीस आए दादा आले सांग? डेबरी दूर चो

भाई डेबरी मचो कहनी के सांग ले ये दाय मैं जीवन काय करूं आए भाई। अच्छा अंग्रेज मन संगे लड़ते लड़ते मरे देना मैं, अंग्रेज मन चो चाल के समझुक नी होए भाई। आम चो राजा के गुचान देवान के राजा बनाला आउर आम चो ऊपरे अत्याचार कर सुद भाई। दादा आज ले तू एकला नी आसना, हम ही बोले तुझे संगे आसू लड़वा लड़वा अंग्रेज मन संगे मिसुन लड़वा गुंडा दूर।

99 पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी लोकगीतों का फोन इन कार्यक्रम लोक रस। प्रस्तुति है पद्मिनी कश्यप की और संयोजक हैं चंद्र ऋषि ठाकुर।

0: फोनिन लोकर सुनतो सपाय गांवकारी दादा दीदी सियान सजन और संग जोहरिया संगवारी मन के जुहार आले सबले आगे फोन कौन करे से सुनू।
1: हेलो फोन इन लग रहा
2: है। हाँ फोन इन लग रहा।

0: जोहार दीदी।
1: जोहार दादा, कहाँ ले बोलसा दादा?
0: मैं कोंडा गाँव जिला ले बोले थे दीदी,
1: अनिल
0: मंडा।
1: काय काम है दादा तुमचो?
0: हाँ दीदी, मैं तो अभी कोरबा में आते हैं, कोरबा ले फोन लगा लेते हैं। हाँ, मैं एकलव्य स्कूल में संगीत शिक्षक है।
1: काय करू है दादा तुम्ही?
0: हाँ दीदी, मैं फिल्म के मतलब म्यूजिक सीखा हुआ है, संगीत। हाँ, एकलव्य स्कूल में। हाँ,
1: अरुण बाटे कोरबा बाट पानी उनी कसन है दादा?
0: पानी उसने आ दीदी, ये बाटे गला है, मतलब इस साल थोड़ा सा देरी हो रही पानी चो। हाँ,
1: बुनाई उनाई कर लस काय?
0: और दीदी घर बात तो कर से बोल से, मतलब मैं कोंडा गाँव चो है तो हम बाटे फोन लगा, मतलब गोट बात होते रहे घर बाट गले तो हमसे करे तो मतलब रोपा लगाते दीदी बुनाई नहीं करे।
1: अच्छा, रोपा लगा हुआ अपने साल लगती वे घर गई
0: ना जन दीदी, ना जन मतलब पानी ये तू थोड़ा सा लेट लेके ली नहीं हम चो करे, ना जन है आज आजकल शुरू कर लेते।
1: तुम तो मन कर लो गीत सांगा दादा।
0: हाँ दीदी, मके लकेश्वर कुदराम से कोनी हो गीत के हल भी बीट सुना दिया से।
1: लकेश्वर कुदराम चो कोनी बले अलवी गीत? हाँ दादा, तुम संगले गोट बात कर लो दादा, खूब अच्छा लागली। तुम चो मन कर लो गीत के
0: दीदी मके
1: हमें
0: अच्छा लगे।
1: सुनाऊं दे?
0: हाँ
1: आले तुम चो मन कर लो गीत।
0: हाँ
1: जोहार
0: जोहार दीदी।
1: दादा।

0: ଲୋକରାଜ।
1: ହଁ ଜୁହାର ଦିଦି।
0: ଜୁହାର ଦାଦା, କାହାଲେ ବସା ଦାଦା?
1: ମୁଁ ରାନୀଗାଁ ନଗରୀ ଜିଲ୍ଲା ଧମତେରୀରେ ଶିଲେଶ କୁମାର ସାହୁ ବୋଲୁଛୁ।
0: ଧମତେରୀରେ ତୁ କାଏ ନାମ ଦାଦା?
1: ଶିଲେଶ କୁମାର ସାହୁ।
0: କାଏ କରୁହାସ ଦାଦା ତୁମେ?
1: ହମନ ଅଭି ମାର ମୌସୀ ମନ ଟୀକାକରଣ କଥନ ଖାଇ ପଶୁଧନ ବିକାଶ ବିଭାଗ ସେ ଜୁଡ଼େ ହୁଁ। ତବେ ଗଲଗୋଟୁ ଏକ ଟଙ୍କି କେ ଟୀକାକରଣ ଚଲତ ହେ ଆଉ ବକରି ମନ ମୁଁ ଚଲତ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟାକ୍ସ ମିଆ ପିପିଆର ସବ ଟୀକାକରଣ ଚଲତ।
0: ଏବେ ତ ବର୍ଷାତ ନେ ଖୁବେ ଚେରି ମେଣି ବୋଲେ ବିମାର ସିମାର ପଡ଼ ରସୁତ ନେ।
1: ହଁ ହଁ ବିମାର ସିମାର ପଡ଼ତ ରଥେ ହଉ ସହି ବାତ ଆଉ ସମୟ ମେ ଟୀକାକରଣ କର ଦେବେ ନା ତ ବଢିଆ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋ ଯାତେ।
0: ହଉ ଅଚ୍ଛା ରସୁତ।
1: ହଁ ଅଚ୍ଛା ରଥେ ସାର।
0: ଯୋ ମନ କରଲୋ ଗୀତ ସାଙ୍ଗା ଦାଦା?
1: ପାଣି ମାରି ଗଲେ ଯାଇ पानी मारे गल जाई रे पापा पानी मारे गल जाई ये गीत सुना दे।
0: पानी मारे गल जाई बीती।
1: हाँ हाँ
0: हाँ दादा। और तुम जो गई और काय काय चले दादा?
1: और खेती किसानी चला थे और रोपा लगे चला थे थारा?
0: हाँ तुम बल रोपा लगाए सर दादा।
1: हाँ और काहे पानी अभी बीच में गिरी से और तुम्हें चला थे और बाकी थारा मन अभी छोटे थे।
0: तुम्हें मन सार लग दादा?
1: हमर चला थे अभी लगा।
0: परिवार का सुना सो दादा?
1: सब बढ़िया थे, अच्छा है सब। और लोग लड़का सब स्कूल जाते सब पढ़ाते।
0: हाँ, दादा तुझे मन कर लो गीत के सुना उसते भी?
1: हाँ आप मन से बात करके बहुत अच्छा लगी।
0: हाँ दादा
1: एक रूप आप मन बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हाँ जुहार दादा।
1: जुहार,
0: जुहार।

0: किया दादा, आम बस्तर ने पानी नहीं आए।
1: तुहा को तो बहुत पानी गिर थे सुने हैं हमन।
0: उतरो नहीं गसरे दादा, किन्नी कम गसरे से। रोपा उपा सार ला दादा।
1: रोपा भी शुरू नहीं हो है, बुआई वाले काम हो गए। अब एक दो दिन के बाद रोपा शुरू हो जाए लगे ला, मतलब थरहत बन गए हो गए। और कहीं सभी आदमी रोपा नहीं रखे ना, बुआई भी करते। अब बुआई है तक ही फंसे है, पानी ज्यादा गिर दीच ना देखर चक्कर में। अब रगी कर ही दो चार दिन लोखर बाद ही मतलब बुआरा हो पा है।
0: तो आए थे दादा पानी को बेओलने, हम चो दान फसल बले नुकसान हो देने।
1: हाँ हाँ, तो आज करके नुकसान नहीं करे, तो लेट लगी भाई, एक दो दिन रगी कर ही ना तो माज है।

0: जी लोकरस।
1: हेलो लोकरस।
0: हाँ जोहार दादा, कहाँ ले बल साथ।
1: हाँ जय जोहार दादा, जय जोहार।
0: जय जोहार।
1: मैं ग्राम मुंडा टोला विकासखंड डौंडी लोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ ने बोला तो डोमेंद्र नेताम।
0: डोमेंद्र नेताम।
1: हाँ
0: हाँ बालोद बाट कसन पानी उनी गसरेस दादा।
1: पानी तो झमाझम हम गिरे, बढ़िया पानी गिरे। हमारे खेती किसानी करी है भाई, मन भर लबालब पानी है।
0: लवालब पानी ने कुवे बसरली ने।
1: हाँ खूब। हाँ बिल्कुल, इंद्र महाराज की मेहरबानी बा, भयंकर
0: हाँ
1: पानी। हाँ लबालाब पानी, तरिया
0: हाँ
1: डबरी सब भर गए हैं।
0: हाँ रोपा लगाए साथ की बुन लास दादा।
1: नहीं हमार तो बोता काम होते है तो बुआई कर दे हैं, रोपा तो नहीं करा हमन। हाँ
0: हाँ
1: हाँ हाँ
0: पिला जिला मन बल कसन आसोत, परिवार कसन आसोत बने से।
1: हाँ सब बड़े हैं, सब बने बने हैं परिवार में, सब कुशल मंगल है।
0: हाँ दादा तुम काय करू हास दादा।
1: मैं वो प्राइवेट काम करता हूँ, वो गल्ला व्यापारी का काम है,
0: हाँ दादा अच्छा बताओ।
1: जेमा हिसाब किताब के काम रहते तो कंप्यूटर के बिल देना रही थे मतलब।
0: हाँ हाँ
1: हाँ वही काम जाम चलते मोरे डोंडी लोहारा में।
0: तुम चुमन कर लोगी तो काया दादा।
1: हाँ वो आप मन से बात करके हम लग गदगद हो, अरबड़ खुशी हुआ थे
0: हाँ
1: आज।
0: दादा आम के वाला छिला
1: हाँ तो
0: गेस
1: आज
0: दादा।
1: के कार्यक्रम में वो वाला गीत सुना दे रहते हो मोला,
0: काय गीत दादा।
1: वो शेख हुसैन और निर्मला इंगले के गाए गीत है। हाँ
0: जुआर दादा तुम चुमन कर लो गीत की सुनाऊं से।
1: हाँ
0: हाँ जुआर।
1: जोहार जोहार।

0: मॉर्निंग लोकरस।
1: हाँ दीदी मोर माया भरे राम राम।
0: राम राम दादा जुहार।
1: जुहार दीदी जुहार। मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था दीदी।
0: बेमेतरा ले?
1: हाँ दीदी।
0: काय गाँव बल्लास दादा तुम चो कसन आसात दादा तुम्ही?
1: हाँ दीदी।
0: तुम्ही कसन आसात?
1: हाँ दीदी मोर 60 साल के हाँ दीदी।
0: हाँ घर परिवार बल्ले नंगत आसोत?
1: हाँ सब घर परिवार बढ़िया है दीदी। अब मोर खेती किसानी के काम चलते।
0: हाँ काय काय लगा ला साथ दादा एबे बरसात ने?
1: हाँ दीदी अभी देखना पानी ज्यादा गिर गिस हवा तो खेत खार मन भर गए हवा।
0: हाँ दादा
1: और
0: तो
1: धान के फसल लेथन दीदी हमन तो धान बुआई चलत है रोपा लगाई चलत हवा दीदी यही काम में लगे हवन।
0: जो मन कर लो गीत सांगा फिर दादा।
1: हाँ दीदी आपे मन सुना दो ना बढ़िया असन बस्तरिया गाना बढ़िया निक लगते दीदी आप मन के गाना। हाँ तो बढ़िया चलत है तो वही ले संबंधित सुना दो दीदी। हाँ दीदी सुना दो
0: मन कर लो गीत की सुना उस।
1: हाँ दीदी
0: जुहार दादा जुहार
1: जुहार दीदी।

0: कोन इन लोग रस
1: दीपक यादव
0: दीपक यादव कहाँ ले बसा दादा
1: मैं जगदलपुर
0: हाँ काय करू हास दादा
1: मैं फारेस्ट नेरू मैं ऑपरेटर
0: फारेस्ट नेरू हास ऑपरेटर आहास हाँ। ने
1: तुम पद्मनी का सेब बोला था ने
0: हाँ दादा मैं पद्मनी का सेब बोले से
1: खुबे दिन ले एते स्टेशन ही लास
0: हाँ दादा खुबे दिन ले आए मजबल खूब दिन हो रही नी गोठे हो रहे फोन इन लोग रस नहीं कर रहे आज ही हाँ। करे से
1: तो खुबे दिन ले तुम चलो बात होली कम से कम छह एक महीना शायद
0: हाँ दादा हाँ तुम छो मन कर लो गीत सांगा फिर दादा
1: गोटो गीता से हम का बोला पुराना गीता है बाढ़ बाढ़ रे मोचो मतलब भारत माई से लाड़े असन को गीता से
0: सारी चिरुआ की गांव बाट बल रुहा दादा
1: पचन पालन बोल जाओ गाया मत घरा से
0: गरा सन बाट रो पाऊ पकसन चले की बुन लास
1: नहीं ये बेचारे से सोमवार नहीं चालू होती है पानी ये बड़े नहीं जा सकते रे काय दो दिन में अच्छा जा सकते
0: आज ते दादा तुम संगोठा खूब अच्छा लागली तुम जो मन कर लो गीत सुनाओ उस ते भी
1: जुआर
2: ए आया मुके झुमा नहीं लागे से गोटो गीत गाइस नहीं
3: गाय से दोंदो

0: हाँ जी
1: हाँ दादा सांगा
0: नमस्ते
1: जुहार दादा जुहार
0: जुहार जुहार अच्छा भाई भी हल्बी में गोठिया हुआ है
1: हाँ गोठिया सकल दादा हल्बी में गोठिया हुआ अच्छा लगा हल्बी ने
0: जी मोचो नाम हरी कृष्ण नाग है मैं जगदलपुर में रहू है
1: हरी कृष्ण नाग
0: जी
1: जगदलपुर में रहुआ
0: जी जी
1: हाँ।
0: और गाना हमेशा सुनवा है युवा वाणी
1: दादा तुम्हें
0: मैं नहीं प्राइवेट गाड़ी चला हुआ है टैक्सी हाँ। रेडियो रहे सुनते रहू है हर समय हाँ। चला
1: अच्छा लगा है हम जो कार्यक्रम मन दादा
0: हाँ बहुत अच्छा लगा और जो जो बहुत सारे नाम बता अपने वैसे वार्ता और भेंट वार्ता भी कभी कभी हुआ है हम सब हाँ हल्दी गीत हम तो गाँव बोल सुनवा है 7 बजे
1: तुम जो मन कर लो गीत सांगा फिर दादा
0: अपन जो पसंद चुको जो मेघनाथ पट्टनायक तो सुनाम दिया हाँ बैला डीला ठीक धन्यवाद
1: जोहार दादा तुम जो मन करो
0: जोहार।

दादा दिदीमान कार्यक्रम फोन इन लोकरस रिकॉर्डिंग रोजे लकिनवार दिने 3 बजले दरुन 3:30 बजे तक हो से तुम्ही वाले आप लो मन कर लो गीत सुनु चा साथ आमचो फोन नंबर आए 07707822226 और गोटोक नंबर है 07708222106 आले हदाय मके दिया विदा जुहार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत के राजदूत मुआन पुई साईवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे

0: final beating British wildcard Arthur Ferry in the semi-final this evening. The second-seeded Zverev produced a clinical performance to defeat Ferry in straight sets 7-6, 6-2, 6-4. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलो हर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सुबह 5:55 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।